मीडियम व्यू 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:54.53 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली

0: पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से दो दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से हॉर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। जय गणेश, जय विघ्नहर्ता। पूज्य श्री गणपति बप्पा के श्री चरणों में श्रद्धा और भक्ति के पुष्प अर्पित करें और उनके मंगलमय आशीर्वाद का वरण करें। प्रस्तुत है गणपति की महिमा और सेवा को समर्पित एक मधुर भक्ति।

भक्ति का सबसे सुंदर रूप है पूर्ण समर्पण, जहां भक्त अपने आराध्य से केवल एक ही प्रार्थना करता है, मुझे अपनी शरण में रखिए। इसी भाव को बड़े ही मार्मिक ढंग से व्यक्त करता है अगला भजन। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं ये भावपूर्ण प्रस्तुति और प्रभु की भक्ति में मन को एकाग्र करते हैं।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242। सुनो ना।
0: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
0: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
0: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
0: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
0: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
0: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4242।
1: ओ 8700001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001-4242 पर।
2: जीवन की हर सांस और हर सुख दुख में एक ही सत्य है, दाता तो केवल प्रभु है। जब मन पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर की शरण में जाता है तो चिंता स्वयं दूर हो जाती है।

जब वृंदावन की गलियों में कान्हा की मधुर मुरली गूंजती है तो हर हृदय प्रेम और भक्ति से सराबोर हो उठता है। उस दिव्य स्वर में ऐसी मोहिनी है कि मन स्वतः ही श्री कृष्ण के चरणों की ओर खिंचा चला जाता है। आइए इसी मधुर अनुभूति के साथ सुनते हैं ये भक्ति गीत।

0: इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। विचार बिंदु कार्यक्रम में लीजिए सुनिए रोमैया रोला के विचार।
1: मैंने अपना समस्त जीवन मानव जाति में मेल साधन के लिए समर्पित कर दिया है। यूरोप की विभिन्न जातियों में, विशेषतः यूरोप की दो श्रेष्ठ जातियों में, जो कि भाई भाई होते हुए भी परस्पर शत्रु हैं, मेल कराने के लिए मैंने भरसक चेष्टा की है। इसी प्रकार मैंने पूर्व और पश्चिम में समझौते के लिए भी पूरी कोशिश की है। हमारे युग में आत्मा के इन दो अर्धांशों के बीच एक विचित्र वाह्यात भेद खड़ा कर दिया गया है और ये मान लिया गया है कि इनमें मेल असंभव है। इसका कारण केवल हमारी दृष्टि की संकीर्णता है, जो कि उन दोनों पक्षों में जो इन आदर्शों के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं समान रूप से विद्यमान है। एक तरफ वे लोग जो अपने को धार्मिक कहते हैं, अपने आप को अपने धर्म मंदिर की चार दीवारी के अंदर कैद किए रहते हैं और न केवल उससे बाहर आने से ही इनकार करते हैं, बल्कि यदि उनका वश चले तो वे उस चार दीवारी से बाहर रहने वालों को जीवित रहने के अधिकार से ही वंचित कर दें। दूसरी तरफ तर्कवादी स्वतंत्र विचारक लोग, जिनके अंदर किसी प्रकार की धार्मिक भावना का एक प्रकार से सर्वथा अभाव है, धार्मिक आत्माओं के विरुद्ध लड़ना ही अपने जीवन का एक मुख्य व पवित्र लक्ष्य वे समझते हैं और उन्हें जीवित नहीं रहने देना चाहते। इसका परिणाम मनुष्य के पक्ष में धर्म को बकायदा नष्ट करने का निरर्थक तमाशा होता है। वे ये नहीं देख पाते कि वे उस वस्तु पर आक्रमण कर रहे हैं जिसे कि वे समझ ही नहीं पाते। उन ऐतिहासिक व तथाकथित ऐतिहासिक पुस्तकों के आधार पर, जो कि बहुत काल गुजर जाने के कारण सर्वथा निर्वीर हो चुकी हैं और जिनके ऊपर काल की काई जम चुकी है, धर्म की आलोचना करना उसी प्रकार निरर्थक है जिस प्रकार कि उन शारीरिक अवयवों के छेदन से जिनके द्वारा मानसिक क्रियाएं प्रवाहित होती हैं आंतरिक मानसिक तथ्यों की व्याख्या असंभव है। मेरा ख्याल है कि जिस प्रकार प्राचीन समय में प्रायः सभी धर्मों ने जादू शक्ति तथा उसको अभिव्यक्त करने वाले शब्द अक्षर व वर्णों को एक समझकर एक प्रकार की भूल की है, उसी प्रकार आजकल के युक्तिवादियों ने विचार शक्ति तथा उसकी अभिव्यक्ति में भेद न करके एक भ्रम को जन्म दिया है। नदियों के देश में मेरा जन्म हुआ है। मैं उन्हें जीवित प्राणियों के समान ही प्यार करता हूं और मेरे पूर्वज इन नदियों को सुरा व

0: बुद्ध की अंजलि क्यों प्रदान करते थे, इसे मैं अच्छी तरह समझता हूं। और सब नदियों में पवित्रतम नदी वो है जो कि आत्मा के अंतरतम प्रदेश से, आत्मा की चट्टानों, बालू व हिमशैलों से अनंत काल से प्रवाहित हो रही है। उसी में वो आदिमतम शक्ति निहित है और उसे ही मैं धर्म कहता हूं। सब पदार्थ इसी आत्मा की स्रोतस्वनि के अंतर्गत हैं। ये आत्मा की स्रोतस्वनि हमारी सत्ता के गंभीर अगाध रस भंडार से निस्सृत होकर अनिवार्य ढलानों को पार करती हुई उसी चिन्मय, अनुभूत, नियंत्रित व समाधिमय महासत्ता के समुद्र में विलीन हो जाती है। और जिस प्रकार नदियों के शून्य जल भंडार को पूर्ण करने के लिए समुद्र का जल घनीभूत होकर वाष्प बनकर मेघों के रूप में आकाश में एकत्रित हो जाता है, सृष्टि का ये अविराम चक्र भी ठीक इसी प्रकार घूमता रहता है।
1: विचार बिंदु में आपने सुना रोमान रोला के विचार। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। स्वास्थ्य चर्चा में लीजिए सुनिए लू लगने का आयुर्वेदिक उपचार विषय पर डॉक्टर अमित सिंह की वार्ता।
2: लू लगने का बेसिकली कारण अगर आप देखते हैं तो गर्मी के मौसम, जो ये गर्म मौसम हो रहा है, इसमें अत्यधिक तापमान और गर्म हवाओं के कारण शरीर का तापमान सामान्य से अत्यधिक बढ़ जाता है, हवा रुक्ष हो जाती है, इसके वजह से शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। अगर हम समय पर इसकी सावधानी न बरतें तो यह स्थिति अत्यधिक भयावह हो जाती है, जिसके वजह से हीट स्ट्रोक का रूप ले सकती है, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। आज के डेट में अभी आप देख रहे हैं टेम्परेचर हमारा 46-47 से वो अब जा रहा है। लोग बाहर काम करते हैं, धूप में काम करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों की सावधानी नहीं रख पाते हैं। उससे बचाव बहुत ज़रूरी है। अगर आप बचाव नहीं करेंगे तो लोग बीमार होते जाएंगे और लू की वजह से शरीर में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लूड का लॉस होता है। अगर हमें लू से बचना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पर्याप्त जल हमें लेते रहना है, इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करते रहना है, शरीर से इलेक्ट्रोलाइट्स कम ना होने पाएँ। इसलिए बेसिकली ज़रूरी है कि आप इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहें, जल का प्रयोग करते रहें। दिन भर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। अगर आप आवश्यकता के अनुसार मिनिमम 2 से 3 लीटर तक पानी पी सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार पानी आप ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती पानी पिएं, लेकिन पानी हमें बार बार पीना है, शरीर में जल की कमी नहीं होनी चाहिए। ORS का घोल, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और फलों का रस का सेवन भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह शहर में छाछ या नारियल पानी बेचने वाले, गन्ने का जूस बेचने वाले आपको मिल जाएंगे। तो लोग जो घर में नहीं हैं, बाहर हैं, उनको लग रहा है कि कैसे हम पानी पिएंगे या किस प्रकार की चीज़ें हमें, इस प्रकार की तरल चीज़ें मिल सकती हैं, आराम से आपको उपलब्ध हैं। ORS का पानी, नींबू पानी बहुत अच्छा होता है। ORS का घोल आप अपने पास रखिए और उसका प्रयोग करिए। हमें बेसिकली गर्म चीज़ों से बचना है, जैसे कि चाय कॉफ़ी हो गई है, शराब, इन चीज़ों से बचना है। ये सारी चीज़ें शरीर में पानी की कमी पैदा करती हैं। अगर आपके शरीर में पानी की कम होगा तो लू लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। धूप से बचाव करना बहुत ज़रूरी है। आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक अपने घर पे ही रहें या छांव में रहें, अपने कार्यस्थल पे रहें, बाहर ना निकलें। अगर आप अनावश्यक रूप से बाहर निकलते हैं तो आपको लू लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बाहर जाते समय कुछ आवश्यक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अगर बहुत इमरजेंसी हो रही है तो आप बाहर जा रहे हैं तो उस समय छाते का प्रयोग कर सकते हैं, आप टोपी या गमछे का प्रयोग कर सकते हैं, हल्के रंग के ढीले ढाले कपड़े पहन सकते हैं, चटक रंग वाले कपड़े ना पहने। भोजन संबंधी सावधानियां भी हमें रखनी पड़ेंगी। हल्का भोजन लीजिए जो आसानी से पच जाए, ऐसे भोजन का प्रयोग करना जरूरी होता है। मौसमी फलों का प्रयोग, जो ताजे मौसमी फल आते हैं, जैसे तरबूज हो गया, खरबूज, खीरा है, ककड़ी है, इन चीज़ों का सेवन आप करते रहें। अत्यधिक मसालेदार भोजन, तला भुना भोजन एवं भारी भोजन कम प्रयोग करें या ना ही करें तो बेहतर होगा। कार्यस्थल पे, जहाँ पे आपका कार्य

0: है वहाँ पे आपको सावधानी रखनी बहुत आवश्यक है। लंबे समय तक धूप में कार्य करने वालों को बीच बीच में विश्राम करना आवश्यक हो गया है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है कि अब सुबह 12 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मजदूरों को आराम दिया जाए, धूप में काम ना कराया जाए। तो लू से बचाव के लिए सरकार भी कोशिश कर रही है। तो हम भी चाहते हैं कि आप धूप में ना निकलें। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, निकलना पड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना बचाव करना पड़ेगा। अपने आप को ढक के, कवर करके, अपने पानी वगैरह पी के, लिक्विड चीज़ों को लेके निकलिए। बेसिकली अगर हम ऋतुचर्या की बात करें तो जो ग्रीष्म ऋतु होता है, इस ऋतु में पित्त दोष बढ़ता है, शरीर में एसिड बढ़ने लगता है, पित्त की बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगता है। तो शरीर में रुक्षता, या हम लोग कह सकते हैं ड्राइनेस डेवलप होती है। इसलिए हम अगर शीतल जल का प्रयोग करें, मधुर एवं द्रव पदार्थों का सेवन इसी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में हितकारी माना गया है।
1: इसी के साथ ही स्वास्थ्य चर्चा का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: कृषि जगत कार्यक्रम में लीजिए सुनिए खरीफ फसलों के लिए आवश्यक तैयारी, इस विषय पर बातचीत सुनिए।
1: देखा हो किसान भैया बहनी, जायद का फसल लगभग तैयार बा, बाजार में उपलब्ध बा, और अब किसान भैया बहनी लोग खरीफ के फसल का तैयारी करही, माटी की तैयारी करही, खरीफ में जौन जौन फसल बोवा जाता उकर बीज शोधन कार्य करही और कुछ निराई गुड़ाई जुताई जौन भी करही, तो यह कुलहीन के जानकारी के विशेषज्ञ खरीफ फसलों की आवश्यक तैयारी यह विषय पे आप सबके बीच में डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, आप कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं, कौशाम्बी में आप आए हैं, आप खेती बाड़ी एहन कुलिन के बढ़िया जानकार हैं, तो भैया आपको बहुत बहुत स्वागत बा, और आपसे ही जाना चाहब कि खरीफ का कौन कौन मुख्य फसल बा और एकर बुआई कौन समय हो था।
2: देखिए, खरीफ की फसल से जहां तक हमारा तात्पर्य है वो जून और जुलाई में उसकी बुआई की जाती है और अक्टूबर के आसपास हम उसकी कटाई कर लेते हैं। इन फसलों में जो हमारी खरीफ की मुख्य फसलें हैं वो हैं कपास, मूंगफली, धान, बाजरा, मक्का, शकरकंद, उर्द, मूंग, लोबिया, ज्वार, अरहर और ढेंचा। ये सब हमारी मुख्य अनाज वाली फसलें हैं। इसके साथ साथ खरीफ में हमारी जो मुख्य फसलें हैं वो हैं भिंडी, तिलहन में है तिल है, और इसके साथ साथ ग्वार है, सनई है, ये हमारी खरीफ की मुख्य फसलें हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं कि खरीफ का कौन कौन फसल होता। अच्छा ये बताएं कि जो खरीफ में मुख्य फसल धान होता
2: जी,
1: तो धान के बुआई के लिए उकर खेत की तैयारी कैसे किया जाए कि किसान भाई लोगन के अच्छी उपज मिले, अच्छी पैदावार मिले, उकर अच्छा लाभ उठाए पाए।
2: देखिए, धान की जो हमारी खरीफ की मुख्य फसल है उसकी तैयारी के लिए पहले इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जब हमारी जो फसलें कट जाती हैं और खेत हमारा खाली रहता है,
1: अच्छा,
2: तो उनको बढ़िया से खूब जोत कर और छोड़ दें। उसमें उस समय जब हमारा तापमान जब बहुत उच्च रहता है उस समय उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं वो जब हमारी भूमि जुताई अच्छी हो जाती है, खुल जाती है, तो वो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, और उसके बाद हम उसकी अच्छे से जुताई कर दें। जुताई करने के बाद खरीफ

की तैयारी से पहले जो हमने ढांचा बोया हुआ है, ढांचे की पलटाई हमको कर देनी चाहिए और ढांचा की जो हमारी 30 से 35 दिन की फसल हो गई है उसको हम पाटा लगाकर गिरा दें और गिराने के बाद उसको पानी लगाकर सड़ा दें। जब वो हमारी खेत में ढांचे की फसल सड़ जाएगी तो हरी खाद पर्याप्त मात्रा में हमारे खेत में मिलेगी। इसके बाद धान की तैयारी के लिए गोबर की कंपोस्ट खाद का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन क्यारियों में धान की फसल की बुआई करने से पहले हमको गोबर की पर्याप्त खाद उस खेत में अच्छी तरीके से डालकर

0: लाभ होता कि ओकर खरपतवार नष्ट हो जाही। ओकरे अलावा जौन जैविक विधि से खाद तैयार किया जाता वो
1: जी
0: खेत में कैसे डाला जाए जौन से कि खेत बढ़िया हो। अच्छा एक बात और बताऊँ कि धान का जौन बीज होता ओकर रासायनिक बीज उपचार कैसे किया जाए कि किसान भाइयों को लाभ उठाए पाए।
1: देखिए, धान की नर्सरी डालने से पहले हमको धान के बीज का शोधन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हमने धान का बीज का शोधन कर दिया तो आगे जो धान की फसल में रोग बीमारियां लगने वाली हैं उनसे हम बहुत हद तक बचाव कर सकते हैं, और अनावश्यक रूप से जो हमारा फसल पर रोग के उसमें व्यय होता है उस पर भी हम बहुत हद तक लगाम लगा सकते हैं। धान का जैविक, अगर हम जैव तरीके से बीज का उपचार करते हैं तो धान में जैविक बीज उपचार के लिए हमको जो है एजोस्पिरिलम और एजेटोबैक्टर, ये जो दो माध्यम हैं इनसे हम बीज का शोधन जैविक विधि से कर सकते हैं, और इसका घोल बनाकर हम अपने बीज, जहां हमने बीज खोला है, ढेर बनाया है, उस पर इसको हल्के नमी के साथ छिड़क दें, और छिड़कने के बाद ढेर लगाकर उसको बोरे, जूट के बोरे से ढक दें। ढकने के बाद उसको जब हम नर्सरी डालने जा रहे हैं तब हम उसको 36 घंटे बाद उस नर्सरी को डालकर अपना धान का बीज का अंकुरण हमारा अच्छा होगा। यदि हम रासायनिक विधि से अगर उसका उपचार कर रहे हैं तो कार्बेंडाजिम नामक दवा है जो हमारी 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से लगती है, उससे हम बीज का शोधन करके रासायनिक विधि से उपचार करके अपनी धान की फसल को अच्छे से जमाव के लिए, अच्छे से अंकुरण के लिए शोधित कर सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप बताएं कि धान के बीज का शोधन कैसे किया जाए, ओकर उपचार कैसे किया जाए और रासायनिक विधि से कैसे किया जाए कि जिकरे माध्यम से किसान भाई लोग जब नर्सरी डालें तो उनकर अच्छी उपज मिले। अच्छा ये बताएं डॉक्टर साहब कि नर्सरी कौने तरीके से करें, जैसे कहा जाता है कि बेहन कौने तरीके से डालें धान का कि धान का उपज बढ़िया हो, पैदावार बढ़िया हो और किसान भाई इनके बढ़िया फायदा हो।
1: देखिए, धान की नर्सरी डालने के लिए हमारे पास एक तो बेड विधि है, और बेड विधि से अगर हम नर्सरी को तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो भी बीज हमने डाला है नर्सरी में वो बहुत अच्छी तरीके से उसका जमाव होगा, बहुत अच्छी तरीके से अंकुरण होगा। धान की नर्सरी के लिए पौधशाला में क्यारी को ऐसा तैयार करना चाहिए कि हमारे जो गीली जो नर्सरी है वो सीड बेड के चारों ओर 30 सेंटीमीटर चौड़े चैनलों के साथ हमको 2.5 मीटर चौड़ाई की पट्टी बना लेनी चाहिए, और बनाने के बाद भूमि की ढाल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ढाल के अनुसार लंबाई अगर हम रखते हैं तो हमारा जो अनावश्यक रूप से जो पानी है वो हमारा बह के निकल जाएगा और हमारी नर्सरी प्रभावित नहीं होगी। दूसरा तरीका यह है कि जब हमने बीज को लिया और उसमें स्वच्छ पानी भरा क्यारी में, क्यारी में स्वच्छ पानी भरने के बाद अपना बीज जो हमने अंकुरित है उसको छिड़क दिया, छिड़कने के बाद उस बीज का जमाव अच्छी प्रकार से होगा, लेकिन वहां पर आपको इस बढ़ते हुए तापमान में विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि प्रातः काल हम उस पानी को काट कर नर्सरी से निकाल दें और सायंकाल पुनः स्वच्छ और ठंडा पानी भर दें, जिससे कि हमारे जो पौधों का अंकुरण है वो प्रभावित ना हो और जमाव अच्छा हो।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप बताएं कि कौन तरीके से नर्सरी डाला जाए कि जैसे कि किसान भाई इनके बढ़िया खेती हो, बढ़िया उपज हो। ये बताएं कि कौन कौन किस्म का धान का बीज लगावा जाए, नर्सरी तैयार किया जाए कि जिसका पैदावार भी बढ़िया हो और पानी का भी पर्याप्त मात्रा या जैसन भी किसान भाई समझें वो उपयोग कर पावें। आप थोड़ा अपने तरीके से बताएं।
1: धान की देखिए मुख्य प्रजातियां हैं वो है नाटी मंसूरी, इसके साथ साथ पूसा बासमती 1, पूसा बासमती 2, सियाट्स 1, सियाट्स 2, और इसके साथ साथ हमारी जो कुछ रासायनिक वो जो ऊसर अवरोधी प्रजातियां हैं वो CSR 56 है, CSR 36 है, CSR 46 है। इसके साथ साथ आपकी जो CSR 60, ये सुगंधित वैरायटी है, ऊसर में हम सुगंधित वैरायटी को भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो सरबती वैरायटी है ये आजकल बहुत पॉपुलर है और सुगंधित धान में ये बहुत अच्छी प्रजाति है, इसको जो हम लगाकर धान की अच्छी पैदावार ले सकते हैं।
0: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप धान के बारे में मुख्य रूप से बताएं। ये बताओ कि जो खरीफ का और फसल बा जैसे मूंगफली भ, बाजरा भ, उर्द मूंग भ, तो इन्हन का कौन तरीके से बुआई किया जाए, किसान भाई लोग करें कि उनके बढ़िया पैदावार मिले।
1: देखिए, खरीफ में हम उर्द मूंग की फसल भी ले सकते हैं, जायद में हमने भी ली है, लेकिन अगर खरीफ में उर्द मूंग की बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो आजकल मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो धीरे धीरे प्रभावित हो रही है उसको भी

0: में मूंग और उर्द और इसके साथ साथ लोबिया, यदि हम इनकी बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से हमें दलहनी फसलों के साथ साथ हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी वो बढ़ाएगी और इनकी बुआई करके हम आर्थिक रूप से सशक्त भी हो सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आप हम किसान भाई के बीच में आएन और खरीफ फसल के आवश्यक तैयारी के विषय पे बढ़िया जानकारी दें। आप धान के बारे में विशेष रूप से बताएं कि कैसे का तैयारी किया जाए, खेत का तैयारी कैसे किया जाए और एक नर्सरी कैसे बनावा जाए कि किसान भाई की बढ़िया उपज मिले। आशा बा कि सब किसान भैया बहनी आपका ये बात अच्छे से सुने हुए ही और अपने खेती किसानी में एक एक गुण ही और उसका लाभ उठे ही। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप कृषि जगत कार्यक्रम में खरीफ फसलों के लिए आवश्यक तैयारी विषय पर नीलकांत त्रिपाठी से की गई बातचीत सुन रहे थे। इसी के साथ ही कृषि जगत का कार्यक्रम समाप्त।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कार्यक्रम विवरण में सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आज रात 9:30 पर चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर आप विदुषी अनीता सेन का उप शास्त्रीय गायन सुनेंगे। सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कलाकार हैं एस के घोष। 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज और 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज। प्रायोजित कार्यक्रम होगा 10:30 पर NCERT। 11:00 एक ही कलाकार कार्यक्रम होगा। दिन में 12:30 पर फोन इन कार्यक्रम में आप अपने मन पसंद के गीत सुनेंगे। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में प्रस्तुति होगी मधु कुमार की। दिन में 1:15 पर बहने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनेंगी। दोपहर 2:30 पर लोकगीत सुनिएगा। कलाकार होंगे राम जतन प्रजापति, प्रियंका चौहान और विष्णु राजा। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:15 पर युवजन युवाणी कार्यक्रम सुन सकते हैं। 6:30 पर किसान भाई पंचायत घर कार्यक्रम में लोकगीत सुनेंगे मुशर्रफ अली और साथियों से और नीति वचन रजनीकांत चौबे से। शाम 7:31 पर बोलते नगमे कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। रात 8:00 चित्रपट संगीत और 8:30 पर सबरस कार्यक्रम होगा। ये थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

0: ताम विरुध्य विहिताक्रमणान् प्रति भारतस्य प्रतिज्ञा पुनः प्रतिपादिता। असौ शान्तेः स्थैर्यस्य च पुनः स्थापनार्थं चिन्तां न्यूनीकर्तुं संवादं पारस्परिक सहभागितांच दृढयितुं पुनरपि आह्वानम् अकरोत्। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्यारभ्य बुल्गेरिया फिनलैंड देशयो द्विदिवसीय आधिकारिक यात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयेनोक्तं यत् डॉ जयशंकरः बुल्गेरिया देशस्य स्वीय यात्रावधौ तत्रत्य नेतृत्वेन सह मेलनं करिष्यति तथा स्व समकक्षेण सह चर्चां विधास्यति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ।

देवाधिदेव महादेव से राम अवतार की पूरी कथा सुनकर पार्वती के मन का संशय सर्वथा मिट गया, किंतु शिव की इस उक्ति ने कि यह अनुपम कथा काकभूषुंडी ने गरुड़ को सुनाई, उनके मन में सहज जिज्ञासा जगा दी। एक कौवा ऐसी भक्ति कैसे पा गया? देवाधिदेव ने तब वो कथा सुनाई कि पवित्र और पुण्य आत्मा काकभूषुंडी को यह सदगति और ऐसा दुर्लभ सुयोग और सुअवसर कैसे प्राप्त हुआ।

अभी आप श्री रामचरितमानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। संगीत था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्मों से भजन।

ये था लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म का गीत। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, गीतकार आनंद बख्शी। अगला गीत सुनिए नरसी भगत फिल्म से, स्वर हैं हेमंत कुमार और सुधा के, संगीत से सजाया है रवि ने और शब्द हैं जी.एस. नेपाली के।

0: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से रिले होगा।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कल 12 वर्ष पूरे कर लिए। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के बीते 12 वर्ष विश्वास, विकास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं।
2: श्री मोदी ने कहा कि यह उनके अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक आज देश को दुनिया भर में एक नई पहचान मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए सेवा, सुशासन और समृद्धि के इसी पंथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
1: श्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई प्रमुख लोगों ने बधाई दी। एक रिपोर्ट।
3: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्र सेवा, सुशासन और जन कल्याण को समर्पित इस 12 वर्षीय परिवर्तनकारी नेतृत्व ने अंत्योदय की भावना को साकार करते हुए भारत को आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और नई ऊंचाइयों पर प्रतिष्ठित किया है। श्री योगी ने कहा के कालखंड पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील शासन के माध्यम से जन आकांक्षाओं की पूर्ति का एक प्रेरक अध्याय है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। केंद्र में एनडीए सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
4: 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की।

0: जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के संयुक्त सचिव जय प्रकाश शिवहरे ने कल लखनऊ में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने जन विश्वास के तीसरे चरण के लिए पहल शुरू कर दी है।
2: भारत सरकार ने इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के जिस तरह के कदम लिए हैं, खासकर जन विश्वास एक और जन विश्वास दो के द्वारा बहुत सारे एक्ट उन प्रावधानों को हटाया गया और अब 12 वर्ष के जब पूरे हुए हैं तो भारत सरकार ने जन विश्वास के लिए पहल शुरू की और अब जो प्रोसीजर पार्ट फोकस करके किस तरह के चेंजेस किए जाने चाहिए एक बिग टाइम भी लिया जा रहा है।
1: रक्षा मंत्रालय ने प्रदेश के सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की इस पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में प्रदेश में प्रस्तावित सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना के प्रगति की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
3: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: एक अन्य बैठक में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और पारिश्रमिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और प्रभावी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में डिजिटल नवाचार के अभियान को गति देने के लिए कल लखनऊ में प्रोजेक्ट गंगा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभिनव पहल डिजिटल इंडिया के उस संकल्प को आगे बढ़ाती है जो विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का सशक्त आधार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को प्रस्तावित नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत भी की।
4: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पे एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष रहे पूर्व सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व समाजवादी चिंतक स्वर्गीय गौरी शंकर राय की आज

0: 102वीं जन्म जयंती है। इस अवसर पर बलिया जिले के करनई स्थित गौरी शंकर राय कन्या महाविद्यालय में श्रद्धांजलि सभा और गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूरे किए 12 वर्ष। प्रधानमंत्री ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल क्रांति तक भारत को दुनिया भर में मिली नई पहचान। रक्षा मंत्रालय ने सीतापुर जिले में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को दी मंजूरी। 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर होगी स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय में की नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उपशास्त्रीय गायन। विदुषी अनीता सेन से सुनिए राग भैरवी में ठुमरी और दादरा।

अभी आप विदुषी अनीता सेन से ठुमरी भैरवी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत किया पंकज श्रीवास्तव ने। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए देशगान।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। श्रोताओं, आज हम आपको जानकारी दे दें कुछ कार्यक्रमों की। आज रात 9:30 पर चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से रिले होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर आप विदुषी अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन सुनेंगे। सुबह 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, आज का विषय है विश्व नेत्रदान दिवस।

सुबह 9:50 पर सुगम संगीत के कलाकार हैं एसके घोष, 10:05 पर वॉइस ऑफ प्रयागराज। प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:30 पर। दिन में 12:30 पर फोन इन कार्यक्रम में आप सुनेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम, प्रस्तुति होगी मधु कुमार की।

0: प्रसारण दिल्ली केंद्र से रिले होगा।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेत्रित्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का

0: प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
4: मेन ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च

0: रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं, आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
4: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
5: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,00,000 रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की यकसर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वज़ीर आज़म मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। और क्रिकेट में दम्बोला में 3 मुल्कों की सीरीज के पहले मैच में ऋतुराज गायकवाड़ की सेंचुरी ने इंडिया ए की श्रीलंका ए को 8 विकेट से हराने में मदद की। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भारत के ऐसे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जो इस ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम देते रहे हैं। जनाब मोदी ने 26 मई 2014 को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है जिन्होंने 13 मई 1952 को एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया था और 27 मई 1964 तक इस ओहदे पर रहते हुए खिदमात अंजाम दी। पंडित नेहरू की एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात की मुद्दत 4,398 दिन रही। 26 मई 2014 से आज यानी 10 जून 2026 तक वज़ीर-ए-आज़म मोदी की लगातार मुद्दत-ए-कार 4,399 दिन हो गई है। इस तरह वो भारत की तारीख में एक ऐसे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जो अपने ओहदे पर सबसे तवील अरसे तक रहते हुए खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अगर भारत में जहां 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा लोगों की आबादी है और जहां जबान, सकाफत, मजहब और जोग्राफिये में गैर मामूली तनवु पाया जाता है, हुक्मरानी के पैमाने और पेचीदगी पर नजर डाली जाए तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये एक काबिले जिक्र हुसूलियाबी है। एक ऐसे वक्त जब बहुत से मुल्कों में सियासी उथल पुथल, हुकूमत में बार बार तब्दीलियां और सियासी गैर यकीनी पाई जाती है, भारत में क़यादत और हुक्मरानी में तसलसल पाया जाता है। दुनिया की इस सबसे बड़ी जमहूरियत में आवाम की तरफ से लगातार 3 बार हिमायत दिए जाने से इस पर आवाम के एतमाद का इजहार होता है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज़ादाना तौर पर कराए गए आलमी जायजों में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दुनिया के मकबूल तरीन जमहूरी रहनुमाओं में लगातार शुमार किया जाता रहा है। उन्हें 30 से ज्यादा मुल्कों के सबसे ज्यादा शहरी एजाजात से भी नवाजा गया है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का एक मामूली समाजी और इक्तसादी पसमंजर से उठकर किसी मुंतखब आला तरीन ओहदे पर फाइज हो जाना, जबकि ख़ानदानी तौर पर उनका कोई सियासी पसमंजर भी नहीं है, किसी करिश्मे से कम नहीं, और ये भारत जैसी किसी बड़ी जमहूरियत में ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मुद्दत-ए-कार के दौरान तकरीबन 25 करोड़ भारतीय अफराद गुर्बत के दायरे से बाहर निकले और लोगों ने डिजिटल सरकारी बुनियादी ढांचे की तौसी, बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे की तरक्की, फलाही खिदमात में बेहतरी और एक वसी बुनियाद वाली समाजी और इक्तसादी तरक्की का नज़ारा किया। इस अरसे में भारत ने दुनिया की तेज तरीन तरक्की वाली बड़ी मईशत के तौर पर इस्तेहकाम हासिल किया, सरकर्दा मईशतों के साथ बड़े तजारती समझौते किए और वो आलमी मामलात पर मजीद मौसर आवाज़ बनकर उभरा, जिसमें तरक्की, टेक्नोलॉजी, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और आलमी जुनूब की तरजीहात भी शामिल हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
1: आलमी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी को भारत का सबसे तवील अरसे तक एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी, आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत

मुख्तस किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस रकम के अलावा रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 95,692 करोड़ रुपए की एक उबूरी रकम जारी की गई है। इसके साथ ही कुल रकम 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगी। जनाब चौहान ने ये बात रियासती देही तरक्की के वजीरों की एक वर्चुअल मीटिंग की सदारत के बाद कही। ये मीटिंग विकसित भारत जीरामजी पर अमल दरामद के बारे में थी। मुल्क में इस कानून का इतलाक अगले महीने की 1 तारीख से होगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।

0: भारत में वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर जबरदस्त तब्दीली रोनुमा हुई है। इस दौरान हुकूमत ने गरीबों के फलाह बहबूद और उन्हें बाइख्तियार बनाने, किसानों, खवातीन और नौजवानों के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी की खबरों के शोभा अहम शोबों में पिछले साल में हुकूमत की कोशिशों पर एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए हुकूमत के जरिए किए गए इकदामात पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के नौजवानों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज की है। भारत की अगले मरहले की असलाहत अब रिफॉर्म एक्सप्रेस में तब्दील हो गई है और नौजवानों की ताकत इसके मरकज में है। भारत के नौजवान विकसित भारत की तामीर और तमाम शोबों में मुल्क के मुस्तकबिल को संवारने में मरकजी हैसियत रखते हैं। 12 करोड़ से ज़्यादा नए एंटरप्रेन्योर ने पीएम मुद्रा योजना कर्ज हासिल किए हैं, जिसे नौजवानों के ख्वाबों को परवाज़ मिली है। हुकूमत नौजवानों को बाख्तियार बना रही है ताकि रोज़गार और खुद इन्हेसारी को आगे बढ़ाया जा सके और नौजवान रोज़गार पैदा करने वाले बन सकें, न कि रोज़गार हासिल करने वाले। छत्तीसगढ़ के रायपुर की एक खातून एंटरप्रेन्योर ईशा पटेल ने घर पर खाने बनाने से एक कामयाब कैफे कारोबार कायम करने तक के अपने शानदार सफर को शेयर किया। 60 लाख से ज़्यादा नौजवान ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से फ़ायदा उठाया है। 1.6 करोड़ से ज़्यादा नौजवानों को पीएम कौशल विकास योजना के तहत तरबियत दी गई है। सकलैंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले अमरीकी फौज के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को ओमान के साहिल से कुछ दूर गर्क करने के जवाब में किए गए हैं। अमरीकी अफसरान ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर ईरान के एक ड्रोन ने गिराया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरेक मिनाब, बंदर आबास और किशम जजीरे में धमाके की आवाजें सुनी गईं। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगिरी डम्बुला में बैन अलाक्वामी स्टेडियम में तीन मुल्कों की ए टीमों की सीरीज के इफ्तिताही मैच में भारत ने श्रीलंका की टीम को 8 रन से हरा दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब की शह सुर्खी है, मोदी की क्यादत में एनडीए हुकूमत के 12 साल मुकम्मल। पार्टी सदर नितिन नवीन ने कहा, भारत पहले मायूसी में डूबा हुआ था, आज एतमाद से भरा हुआ है। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के हवाले से सुर्खी लगाई है, हुकूमत के गुज़श्ता 12 साल एतमाद, तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए वक्फ। राज्यसभा इंतखाबात से कबल कांग्रेस को बड़ा झटका, मीनाक्षी नटराजन की मध्य प्रदेश से नामजदगी मंसूख, कांग्रेस का अदालत जाने का फैसला। इसे भी अखबार ने अहमियत दी है। अखबार इंकलाब की एक और सुर्खी है, लद्दाख में जोजिला टनल तैयार, 2 घंटे का सफर 30 मिनट में होगा मुकम्मल। अखबारात ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस बयान को नुमाया किया है कि नीट इम्तिहान पूरी शफाफियत और सिक्योरिटी के साथ कराने के लिए की गई वसी तैयारियां।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत के ऐसे मुंतखब वजीर आजम बन गए हैं जो इस ओहदे पर तवील तरीन अरसे तक खिदमात अंजाम देते रहे हैं। आलमी रहनुमाओं ने जनाब मोदी की अक्सर तब्दीली लाने वाली हुक्मरानी और आलमी जुनूब के लिए उनकी वकालत की सताइश की है। वजीर आजम मोदी की हुसूलियाबियों और उनकी हुकूमत के 12 साल पूरे होने पर जश्न मनाने के लिए आज नई दिल्ली में एनडीए की मीटिंग होगी। मरकज ने देही तरक्की को आगे बढ़ाने के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विकसित भारत जी राम जी के तहत नया फ्रेमवर्क 1 जुलाई से शुरू होगा। अमरीकी फौज ने ईरान पर हमले किए हैं। ये हमले ओमान के साहिल से कुछ दूर अमरीकी फौज के अपाचे हेलीकॉप्टर को गर्क किए जाने के जवाब में किए गए हैं। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार प्रयागराज।

नेत्रदान दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी आँखें किसी और की दुनिया में उजाला भर सकती हैं। सच ही कहा गया है, मरकर भी किसी के काम आ जाए तो जीवन सफल हो जाता है। आँखें केवल देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि सपनों की उड़ान है। जिसने कभी रंग नहीं देखे, उसके लिए एक फूल रंग, माँ का चेहरा और आसमान की नीलाई किसी चमत्कार से कम नहीं। नेत्रदान वही चमत्कार कर सकता है।

0: विजय, परिज्ञा, अक्षिता, जयंत और सोमा ने इन्होंने अपना विचार भेजा है। चले जाएं हम भले ही इस दुनिया से, पर हमारी आंखों में किसी का जहान रहे। नेत्रदान का नेक संकल्प मानव सेवा की सबसे उत्तम पहचान रहे। भाई वाह, बहुत ही खूबसूरत विचार हैं आपके। आइए सुने संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
5: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
6: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रोताओं, एक संदेश और आया है सिविल लाइन से। सीमा, लता, पुनीता और सौरभ ने भेजा है। इनका विचार है, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ते कदमों का नाम है नेत्रदान। अपनी आंखों को अमर कर दीजिए, देकर किसी को दृष्टि का वरदान। वाह वाह, बहुत खूब। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आपके नेत्र किसी की अंधेरी दुनिया को रोशन कर सकते हैं तो इसमें इससे बड़ा उपहार और क्या होगा। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, दीपक अपना प्रकाश खोकर भी दूसरों को रोशनी देता है। नेत्रदान के प्रति जागरूक बने। आंखें सिर्फ देखने का साधन नहीं बल्कि आत्मा का दर्पण होती हैं। साथियों, आज भारत में दृष्टि बाधित लोगों की संख्या दुनिया में सबसे अधिक है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महादान की जो किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। कहते हैं, नेत्रदान रोशनी की असली कीमत वही जानता है जिसने कभी अंधेरा देखा हो। हमारी आंखों की रोशनी किसी और की जिंदगी का नया सवेरा बन सकती है। आंखें बंद हो तो बस एक जीवन रुकता है, पर नेत्रदान हो जाए तो जीवन जगमगा उठता है।

श्रोताओं, हमारी आंखें हमारे जीवन के बाद भी किसी और की दुनिया रोशन कर सकती हैं, ये तो आपको पता है। आइए क्यों ना आज ही संकल्प लें कि हम नेत्रदान के प्रति जागरूक रहेंगे और अपने परिवार को अपनी इच्छा बता दें। हो सकता है आपके इस एक निर्णय से किसी की अंधेरी दुनिया में फिर से उजाला लौट आए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस पर डालते हैं एक नज़र। सबसे पहले स्वयं नेत्रदान का संकल्प लें, फिर अपनी इच्छा के बारे में पहले से बता दें, क्योंकि मृत्यु के बाद उनकी सहमति महत्वपूर्ण होती है। अपने नज़दीकी नेत्र बैंक, आई बैंक या अधिकृत अस्पताल से संपर्क करके पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मृत्यु के 4 से 6 घंटे के भीतर नेत्र बैंक को सूचना देना आवश्यक होता है, ताकि कार्निया सुरक्षित रूप से प्राप्त किया जा सके। नेत्र निकालने की प्रक्रिया सम्मानपूर्वक की जाती है और इससे चेहरे की सुंदरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नेत्र दान करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी पहल किसी के पूरे जीवन में उजाला भर सकती है। जाते जाते एक रोशनी छोड़ जाए, किसी की दुनिया में नई सुबह लाए, इसी संदेश के साथ विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ममता को दीजिए इजाजत। नमस्कार प्रयागराज।

0: पापा लाइए 3,000।
1: क्यों भाई?
0: मेरी पॉकेट मनी।
1: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
0: अरे पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
1: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
0: अपना मोबाइल लाओ,
1: ले ले।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: सुनो ना।
5: हाँ?
4: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
5: तो रोका किसने है? हाँ?
4: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
5: मुझसे।
4: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
5: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
4: पर उससे मेरा क्या फायदा?
5: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
4: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
5: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
4: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
6: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

Hey, hey.

सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक के स्वर में ये था ताल फिल्म का गीत। संगीत तैयार किया था एआर रहमान ने और शब्द थे आनंद बख्शी के। अगला गीत सुनिए अनाड़ी फिल्म से, आवाज है साधना सरगम की, संगीत आनंद मिलन का और गीत समीर के।

0: जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं साधना सरगम की आवाज में अनाड़ी फिल्म का गीत। संगीत है आनंद मिलन का और गीत समीर के।

0: इस गाने के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से रिले होगा।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मथुरा और प्रतापगढ़ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मथुरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मोहम्मद उमर कुरैशी का।
2: जनपद मथुरा के प्रभारी एवं प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न जन कल्याणकारी एवं जन जागरूकता कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक

0: संपन्न हुई। यह बैठक वृंदावन स्थित गीता सो संस्थान में आयोजित की गई। बैठक में 5 जून 2026 से 21 जून 2026 तक चलने वाले समय के जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान के सफल संचालन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा की गई तैयारियों एवं कार्य योजनाओं की समीक्षा की गई। प्रभारी मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं, उपलब्धियों तथा जन सामान्य के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों का व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इस अवसर पर मंत्री संदीप सिंह ने गीता सो संस्थान परिसर में वृक्षारोपण भी किया। उन्होंने कहा कि सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान के मूल भाव के अनुरूप सादगी, अनुशासन, ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण तथा जन भागीदारी को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर 5 जून 2026 को जनपद मथुरा में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। इस अवसर पर जनपद में लगभग 6,17,000 पौधे लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मथुरा के वन प्रभाग के प्रभागी वन अधिकारी DFO BS पटेल ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण एवं हरित आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों, शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों तथा सामाजिक संगठनों के सहयोग से जनपद भर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मथुरा में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत 25 प्रमुख धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ब्रज की पवित्रता और पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। यहां धार्मिक कुंडों और तालाबों को प्रदूषण से बचाने के लिए 406 ग्राम पंचायतों के तालाबों और 25 धार्मिक कुंडों के संरक्षण का विशेष अभियान चलाया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल के अनुसार जल को दूषित होने से बचाने के लिए स्थानीय निकायों द्वारा कई ठोस कदम उठाए गए हैं। मथुरा में विश्व पर्यावरण दिवस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान दुवासु परिसर में वृक्षारोपण किया गया। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत हुए कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और प्रभागीय वन अधिकारी DFO वेंकट श्रीकर पटेल शामिल हुए। यहाँ कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने पेल, जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश ने आम और DFO वेंकट श्रीकर पटेल ने शहतूत का पौधा लगाया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और अधिक से अधिक लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना था। पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान दुवासु के कुलपति डॉक्टर अभिजीत मित्र ने बताया कि
1: करीब 384 पौध को लगाया गया। अब हर बच्चे ने, हर फैकल्टी ने अपना माँ के नाम में पौध लगाया है और आगे वाला अगले साल तक उसका देखभाल करेगा।
0: मथुरा चटपट के राया निवासी युवा नेता और सामाजिक नीतीश पाठक ने प्रयागराज में आयोजित युवा संसद में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्हें इस आयोजन में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, जिससे उन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। युवा संसद सत्र के दौरान नीतीश पाठक ने एक संसद सदस्य की भूमिका निभाते हुए नारी शक्ति बंधन अधिनियम पर अपने विचार प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किए। अपने संबोधन में उन्होंने नारी को माँ सरस्वती का स्वरूप बताया। पाठक ने कहा कि महिलाओं का सम्मान और सशक्तिकरण राष्ट्र की प्रगति का आधार है। मथुरा जिला न्यायालय परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विकास कुमार की अध्यक्षता में जनपद न्यायालय परिसर में समस्त न्यायिक अधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ जनपद न्यायाधीश और अन्य न्यायाधिकारी गण द्वारा जनपद न्यायालय परिसर मथुरा में वृक्षारोपण किया गया। जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण की अनिता सिंह द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वृक्षों की उपयोगिता के संबंध में बताया गया तथा सभी से अपील की गई कि साफ सफाई का ध्यान रखते हुए पर्यावरण को संरक्षित रखने हेतु अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं और उनका संरक्षण करें।
2: मथुरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं प्रतापगढ़ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजितेश त्रिपाठी का।
3: जिले में इस महीने की शुरुआत जनपद वासियों को समय रहते मौसम संबंधी सटीक जानकारी उपलब्ध कराने तथा आपदा प्रबंधन व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से जिला

0: प्रशासन द्वारा महत्वपूर्ण पहल के साथ हुई। जिलाधिकारी अभिषेक पांडे के निर्देशन में जनपद में 5 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन और 34 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन स्थापित किए गए। जिलाधिकारी ने बताया कि इन आधुनिक स्टेशनों के माध्यम से तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा की गति, दिशा, वायु दाब जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां वास्तविक समय में प्राप्त की जा रही हैं। इससे मौसम की सतत निगरानी संभव हो सकेगी तथा किसी भी संभावित प्राकृतिक आपदा या मौसम परिवर्तन की स्थिति में प्रशासन समय रहते आवश्यक कदम उठा सकेगा। जनपद में स्थापित 5 ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन तहसील सदर कुंडा लालगंज पट्टी एवं रानीगंज में संचालित हैं, जबकि 34 ऑटोमेटिक रेन गेज स्टेशन विभिन्न विकास खंडों एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाए गए हैं। जिलाधिकारी ने जनसामान्य से अपील करते हुए कहा कि मौसम संबंधी अद्यतन जानकारी नियमित रूप से प्राप्त करें तथा आपदा अथवा खराब मौसम की स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करें। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल अधिकारी सूचना पर भरोसा करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि मौसम एवं वर्षा से संबंधित रियल टाइम डेटा उत्तर प्रदेश शासन की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आमजन भी सीधे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिले में इस महीने 15 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाली योग सप्ताह की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस संबंध में परियोजना निर्देशक DRDA दयाराम यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुमन कुशवाहा ने बताया कि दिनांक 15 जून से 21 जून तक जनपद में योग सप्ताह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने योग सप्ताह कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की। परियोजना निदेशक ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी योग्या अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित कराएं। तहसील, ब्लॉक एवं जिला स्तर पर योग्या अभ्यास कराए जाने की समुचित व्यवस्था योगा संस्थाओं के साथ बैठक कर ली जाए, जिससे योग सप्ताह के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराया जा सके। उन्होंने कहा कि 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पुलिस लाइन में भव्य रूप से मनाया जाएगा, जिसमें प्रभारी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं, समाज सेवी, व्यापारी व जनपद के अन्य गणमान्य नागरिक व पत्रकार बंधुओं का सामूहिक योग्या अभ्यास कराया जाएगा। केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान में बैठे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यह बात भारत सरकार के प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना केंद्रीय सलाहकार समिति के सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने समीक्षा बैठक के दौरान की। जनपद में संचालित केंद्र एवं प्रदेश सरकार की विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। सदस्य धीरेन्द्र वाल्मीकि ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन, पात्र लाभार्थियों को मिल रहे लाभ तथा लंबित कार्यों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करें, ताकि गरीब, दलित, पिछड़े एवं वंचित लोगों को समय पर लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक लाभ गांव और शहर के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसके लिए अधिकारियों को पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य करना होगा। बैठक के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा जनपद में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी संतोष कुमार सिंह, संबंधित विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पंचायत पहुता में इस महीने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 11वीं वाहिनी द्वारा आपदा प्रबंधन एवं बचाव को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीणों को प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूक करना तथा आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के उपायों की जानकारी देना रहा। इसी क्रम में आपदा प्रबंधन के उप निरीक्षक प्रभात सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी आपदा के दौरान सबसे पहले स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए तथा जरूरत पड़ने पर तुरंत प्रशासन एवं राहत एजेंसियों से संपर्क करना चाहिए। उन्होंने लोगों को प्राथमिक उपचार, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के तरीके तथा आपातकालीन सहायता नंबरों की जानकारी भी। कार्यक्रम में CPR देने की प्रक्रिया का डेमो करके दिखाया गया। कार्यक्रम के दौरान NDRF की टीम ने आकाशीय बिजली, डूबने से बचने आदि प्रबंध आपदा से बचाव के व्यवहारिक उपायों का प्रदर्शन भी किया, जिसे ग्रामीणों ने काफी रुचि के साथ देखा और जानकारी प्राप्त की।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं, आइए सुनते हैं देश का अंत।

0: इसी के साथ देशगान समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से सुनेंगे।
1: उर्दू कार्यक्रम पेशकश आकाशवाणी के गोरखपुर मरकज की है।
2: सामईन आदाब, उर्दू प्रोग्राम के साथ हाजिर है आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद फर्रुख जमाल। आज के प्रोग्राम में आप समात फरमाएंगे जनाब कलीम सिफात इस्लाही से उनका एक मकाला, बाहमी इत्तेहाद के फरोग में उर्दू ज़बान का किरदार, और कलाम शायर के तहत आज के शायर हैं जनाब अब्दुस्सलाम सलाम फैज़ी। लेकिन सामईन, आज 10 जून है और आज का दिन मंसूब है

जाम बहुत हुआ और रहने दो और इम्तिहान सब्र का मेरे अब न लो, रहने दो और इम्तिहान सब्र का मेरे अब न लो, बेहतर है अपनी राह लो देखो मियां बहुत हुआ, बेहतर है अपनी राह लो देखो मियां बहुत हुआ, अब के जुनूने शौक में जी का ज़ियां बहुत हुआ। और शेर समाज फरमाए कि लेकिन मैं अपने आप को देता रहा अज़ियतें, लेकिन मैं अपने आप को देता रहा अज़ियतें, यूं तो अदा फरीज़े हमसायेगा बहुत हुआ, यूं तो अदा फरीज़े हमसायेगा बहुत हुआ, और बुग़्ज़ो अनाद की हदें पार तो कब की हो चुकी।

ना मेहरबान बहुत हुआ। मकते का शेर समाप्त फरमाए कि अब तो समेट लो सलाम अपनी बिसाते आरजू, अब तो समेट लो सलाम अपनी बिसाते आरजू, इश्को हवस की राह में कारे जहां बहुत हुआ, इश्को हवस की राह में

0: राह में कारे जहां बहुत हुआ, इश्को हवस की राह में कारे जहां बहुत हुआ, अब के जुनूने शौक में जी का ज़ियां बहुत हुआ, रक्से शरर तो कम हुआ फिर भी धुआं बहुत हुआ। दूसरी गजल का मतलब समाप्त फरमाए। अर्ज क्या है कि बज़्म में यारा में है सब तंग नजर सोच के चल, बज़्म में यारा में है सब तंग नजर सोच के चल, कौन देता है यहाँ दादे हुनर सोच के चल, कौन देता है यहाँ दादे हुनर सोच के चल, हमने हर शाख पे देखे हैं चमकते खंजर, हमने हर शाख पे देखे हैं चमकते खंजर, तू भी ऐ मौजे हवा, तू भी ऐ मौजे हवा समते शजर सोच के चल, तू भी ऐ मौजे हवा समते शजर सोच के चल, और अपनी पहचान भी खो देते हैं चेहरे के नकूश, अपनी पहचान भी खो देते हैं चेहरे के नकूश, खाक उड़ती है सरे राह गुजर सोच के चल, खाक उड़ती है सरे राह गुजर सोच के चल, और मुझको जाना है बहुत आगे जवाले शब से, मुझको जाना है बहुत आगे जवाले शब से, मेरे हम राह शबे माह उधर सोच के चल, मेरे हम राह शबे माह उधर सोच के चल, और फलसफे वक्त के गुमराह न कर दे तुझको, फलसफे वक्त के गुमराह न कर दे तुझको, सबकी बातों पे यहाँ कान न धर सोच के चल, सबकी बातों पे यहाँ कान न धर सोच के चल। और ये शेर भी समाप्त फरमाए कि फिर कभी लौट न पाएगा हकीकत की तरफ, फिर कभी लौट न पाएगा हकीकत की तरफ, दूर ले जाएगी ख्वाबों की डगर सोच के चल, दूर ले जाएगी ख्वाबों की डगर सोच के चल, और डस न ले तुझको सुलगते हुए लम्हों की तपिश, डस न ले तुझको सुलगते हुए लम्हों की तपिश, जानिबे दस्त जरा दी दे तर सोच के चल, जानिबे दस्त जरा दी दे तर सोच के चल।
1: जनाब सलाम फैजी के नशार के साथ ही सामईन आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। हमें इजाज़त दीजिए। मुआविन तमाम मोहम्मद फर्रुख जमाल, पेशकश थे जनाब नूर मोहम्मद की। आज का उर्दू प्रोग्राम आपकी समातों के लिए आकाशवाणी गोरखपुर मरकज़ पर तैयार किया गया था।
2: आकाशवाणी गोरखपुर मरकज पर तैयार आज का उर्दू कार्यक्रम नश्र किया जा रहा था आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से। 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं 747 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज सुनेंगे ममता श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव के स्वर में अवधि युगल लोकगीत। सबसे पहले ममता श्रीवास्तव और संगीता श्रीवास्तव के स्वर में प्रस्तुत है देवी गीत।

0: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
1: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करे, ट्रेन को जाने दे और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करे, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करे। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
2: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है, प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के हमारे कलाकार हैं SK घोष। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: इसी के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा मंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी

0: देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित लेख में कहा कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। उन्होंने भारतीय भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर गर्व को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह उपलब्धि भारतीय लोकतंत्र और जनता के विश्वास की शक्ति का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आत्मविश्वास, सुशासन और विकास पर आधारित एक नई पहचान दी है। एक दैनिक समाचार पत्र में लेख में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश के विकास, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और वैश्विक प्रतिष्ठा में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वतंत्र भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, विकासशील देशों के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 95,692 करोड़ रुपए का अंतरिम आवंटन जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और श्रमिकों को बिना किसी रुकावट के रोजगार प्रदान करना है। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीकी सेना ने ईरान पर हमले किए हैं। अमरीकी अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था और दोनों पायलटों को बचा लिया गया था। अमरीकी हमलों के बाद ईरान के शहरों सिरिक, मीनाब, बंदर अब्बास और केशन द्वीप पर धमाकों की आवाजें सुनाई दी जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सटे हुए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान द्वारा अमरीकी हेलीकॉप्टर को गिराए जाने पर अमरीका की प्रतिक्रिया बहुत मजबूत और शक्तिशाली है। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रनों से हरा दिया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम वॉइस ऑफ प्रयागराज।

सभी सुनने वाले श्रोताओं को ममता का नमस्कार। आज बात करेंगे विकसित होते प्रयागराज के बारे में, जो नई सड़कों, सुंदर चौराहों, नए मोहल्लों के चौड़े फुटपाथों और नए चकाचौंध बाजारों वाला शहर बन चुका है। लेकिन इन नई चीजों, नई सुविधाओं या विकास को पाने में हमने क्या खोया है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। मुझे याद आ रहा है जावेद अख्तर साहब का एक

एक शेर है, कभी जो ख्वाब था वो पा लिया है, मगर जो खो गई वो चीज क्या थी। क्या खूब कहा है। श्रोताओं, विकास हर शहर की आवश्यकता है। नई सड़कें, चौड़ी गलियां, आधुनिक पुल, फ्लाईओवर और बेहतर यातायात व्यवस्था नागरिकों को सुविधा प्रदान करती है। देखा जाए तो पिछले कई वर्षों में विकास परियोजनाओं पर तेजी से काम हुआ है। कई स्थानों पर पुरानी बस्तियों को हटाकर चौड़ी सड़कें बनाई गई, नए फुटपाथ बने, इंटरलॉकिंग कराई गई और शहर को आधुनिक रूप देने का प्रयास हुआ। बातें और भी हैं, पहले सुनते हैं ये गीत।

साथियों, प्रयागराज केवल एक शहर नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और इतिहास की एक पहचान है। अब सोचिए, यदि सड़कें चौड़ी हो, यातायात सुगम हो,

बाजार व्यवस्थित हो लेकिन लोगों को सम्मानजनक पुनर्वास भी मिले तो विकास और मानवीय संवेदना का संतुलन अपने आप बन सकता है। आज जरूरत है लोगों को जागरूक करने की। हम कोई भी त्योहार मनाएं या घर में छोटे छोटे फंक्शन करें तो उस अवसर पर एक पौधा उस दिन जरूर लगाएं। सोचिए, यदि एक घर से शुरुआत एक पौधे की होगी तो हर घर में एक पौधा अवश्य लगेगा। फिर हर तरफ हरियाली होगी और वातावरण हरा भरा रहेगा।

साथियों, शहर का विस्तार होना स्वाभाविक है। बढ़ती आबादी के साथ बेहतर यातायात और मजबूत आधारभूत ढांचे की आवश्यकता बढ़ती है, लेकिन पर्यावरण का संतुलन बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। कई परियोजनाओं में पेड़ों की कटाई भी हुई। पेड़ केवल हरियाली नहीं बल्कि

स्वच्छ हवा, छाया और पर्यावरण का आधार है। इसलिए जितने पेड़ काटे जाएं, उससे अधिक संख्या में नए पौधे लगाना चाहिए और उनकी देखभाल करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। एक पेड़ माँ के नाम। माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है, किचन गार्डनिंग जैसे आप अपने किचन में भी छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा सकते हैं और छत पर गमलों में हरे भरे पेड़ लगाएंगे तो हमें ताजी हवा मिलती रहेगी और हम सबको इस कामों की कोशिश करनी पड़ेगी।

श्रोताओं, आज उत्तर प्रदेश में गर्मी या गर्म जिलों की सूची में समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। प्रयागराज में भी गर्मी का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। पेड़ों की कटाई, पुरानी इमारतें, फुटपाथ मार्केट पारंपरिक से बदलकर उसका व्यवसायीकरण हो गया है, जिसकी वजह से शहर का जल स्तर काफी नीचे चला गया है। वहीं देखा जाए तो विकास के नाम पे आरसीसी की जरूरी सड़कें बनी, फुटपाथ इंटरलॉकिंग में बदल गए, चौराहों का सौंदर्यीकरण भी हुआ। शहर बड़ा हो रहा है, जिससे हमें यातायात में सुविधाएं भी मिल रही हैं। इसी के साथ बातें और करेंगे, पर सुन लेते हैं एक और गीत।

दोस्तों, विकास भी जरूरी है और लोगों की भावनाओं का सम्मान भी। विकास तब सुंदर लगता है जब उसमें संवेदनशीलता, न्याय और मानवीयता भी शामिल हो। आज देखिए, गौरैया चिड़िया, चील, कौआ आदि पक्षी दिन पर दिन खत्म होते जा रहे हैं। हमें पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान देना होगा। विकास और विस्थापन, ये दो ऐसे शब्द हैं जो आज हर शहर की कहानी बन चुके हैं। सच्चा विकास वही है जो शहर को आधुनिक बनाए, लेकिन उसकी हरियाली, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं को भी सुरक्षित रखे। इन्हीं विचारों के साथ विशेष अंक प्रयागराज में विस्थापन बनाम विकास की को यही विराम देते हैं। मैं आपके मित्र ममता आप सबसे अनुमति चाहती हूँ और सुनते रहिए हमारा एक प्यारा सा गीत।

इस गाने के साथ ही वॉइस ऑफ प्रयागराज कार्यक्रम समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलव दास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।

0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
1: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
0: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी, असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
1: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
0: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
1: जी।
0: तो आज
1: अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
0: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
1: जी।
0: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश, अफ्रीका।
1: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
0: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
1: जी।
0: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
1: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
1: जी।
0: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज कैसे हुई थी।
1: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथियोपिया के एक गांव में कुछ चरवाए पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजीत जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ
1: जी।
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया
1: जी।
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की
1: जी।
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है,
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथियोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथियोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि ये समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती
1: जी।
0: हैं। फिर क्या होता है विमलेश जी?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी।
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं
1: जी।
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है
0: जो थोड़ी हल्की होती है। ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है
1: जी।
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है
1: जी।
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है
1: जी। हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।

0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओं, चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है भारत तू है हमको प्यारा।
0: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी,
2: वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
1: अरे
2: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
1: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर, चोट मत खा जाना।
2: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
1: हाँ?
2: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
1: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
2: क्लिक। लक्ष्मी, इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
1: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मूलायार पर बांध बनाया गया।
2: अच्छा।
1: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
2: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
1: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं।

0: और ये मेरी दोस्त सुनीता। नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
2: हाँ
1: जी, हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं। आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा
0: जी।
1: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ
0: जी।
2: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
1: देखिए, 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
2: अच्छा कमल जी,
1: जी
2: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
1: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
2: ओह,

ये जगह उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहाँ खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहाँ के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहाँ प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।

0: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
1: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
2: जी।
0: अच्छा,
1: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है। ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
2: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
0: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
1: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
2: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
0: अच्छा।
2: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
0: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
1: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
2: गुड मॉर्निंग।
3: गुड मॉर्निंग।
1: गुड मॉर्निंग।
2: आइए आइए, स्वागत है आपका।
1: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यही लॉन में बैठते हैं।
0: जी
1: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
2: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
1: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल की रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में मैं दिल्ली चली आई।
1: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ, जैसा कि पिताजी कहते हैं, उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है।
1: मतलब
0: ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
2: अच्छा, अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
1: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुंचती है।
2: वांडी पेरियार?
1: हाँ, ये केरल का एक जाना माना व्यापार केंद्र है, जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
2: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
1: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकडी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
2: जी,
1: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
2: अच्छा।
1: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
2: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
0: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
1: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
2: अच्छा।
1: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलयार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है, और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथाथन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
0: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
1: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य

संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलड़ी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
2: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
1: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
1: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
2: तो करो ना सुनीता।
1: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
0: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
5: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।
6: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे, उमंग। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही कलाकार।

असल जिंदगी के जन नायक सुनील दत्त साहब की। सुनील जी का अभिनय जितना संजीदा था, उनकी फिल्मों का संगीत उतना ही रूहानी। आइए इस आधे घंटे की सफर की शुरुआत करते हैं उनकी फिल्म हमराज के सदाबहार तराने के साथ, जो आज भी हर प्रेमी दिल की धड़कन है।

श्रोताओं नमस्कार। आज हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिनकी यादों के सुरों को पिरो रहे हैं, जिनकी आंखों में शरारत थी, आवाज में ठहराव था और जिनके किरदार देश की मिट्टी से जुड़े थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के मदर इंडिया के बिरजू, पड़ोसन के सीधे साधे भोला और

श्रोताओं, सुनील दत्त सिर्फ गंभीर या रोमांटिक भूमिकाओं तक सीमित नहीं थे। याद कीजिए साल 1968, जब उन्होंने सिर पर चोटी बांधकर धोती कुर्ता पहनकर एक ऐसा किरदार निभाया कि पूरी दुनिया हंसते हंसते लोटपोट हो गई। जी हाँ, फिल्म थी पड़ोसन और उनका भोला का किरदार। मन्ना डे और किशोर कुमार की जुगलबंदी और पर्दे पर सुनील दत्त और महमूद का मुकाबला। चलिए थोड़ा सा मूड बदलते हैं

0: जो आवाज लगाई चोटी कर दूंगा।
1: जा रे कारे कागा का।

चतुर नार करके सिंगार एक चतुर नार बड़ी होशियार मेरे मन के द्वार ये घुसत जात अपने ही जाल में फंसत जात हम मरत

श्रोताओं, वर्ष 1957 में आई मदर इंडिया फिल्म केवल एक फिल्म नहीं थी बल्कि भारतीय सिनेमा का इतिहास थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी आग से सुनील दत्त ने अभिनेत्री नरगिस को बचाया। ये घटना धीरे धीरे प्रेम में बदली और फिर विवाह में।

श्रोताओं, एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप आज अभिनेता सुनील दत्त पर फिल्माई गाने सुन रहे हैं।

श्रोताओं, सुनील दत्त का वास्तविक जीवन भी किसी नायक से कम नहीं था। देश के प्रति उनका प्रेम और समाज सेवा जग जाहिर थी। पर्दे पर भी उन्होंने मुझे जीने दो और रेशमा और शेरा जैसी फिल्मों में समाज के कड़वे सच को सामने रखा। फिल्म लीडर या प्राण जाए पर वचन न जाए के माध्यम से उन्होंने हमेशा ऊंचे आदर्शों को पेश किया। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, आज के इस विशेष अंक में हमने जाना उस कलाकार को जिसने अभिनय के साथ साथ इंसानियत की मिसाल भी पेश की। सुनील दत्त का जीवन हमें सिखाता है कि सफलता के साथ संवेदनशीलता और सेवा का भाव भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

लगे रहो मुन्ना भाई। लीजिए इस फिल्म में सुनिए सोनू निगम और श्रेया घोषाल को। गीत स्वानंद किरकिरे का है और संगीत शांतनु मोइत्रा का।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में सुनिए अमिताभ भट्टाचार्य की रचना। फिल्म का नाम है छिछोरे और आवाज़ अरिजीत सिंह की।

इसी के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

हमें ये नहीं भूलना है कि हम पहले इंसान हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। आइए सांप्रदायिक सद्भाव का प्रण लें।

0: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजने को हैं, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे, कृपया कुछ पल प्रतीक्षा
1: साथ। मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्यता और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के

0: गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइप वाली प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन झूठी खबरों का खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोट को बंद करके उनकी जगह प्लास्टिक नोट का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में डॉ जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस दौरान क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र में वैश्विक संसाधनों के लिए नियम आधारित व्यवस्था बनाए रखने पर विचार विमर्श हुआ। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का अनुमान लगाया है। कोंकण, गोवा और ओडिशा के कुछ हिस्सों में दिन में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has become the longest continuously serving democratically elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26th of May in 2014. He surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on the 13th of May in 1952 and served until 27th of May in 64. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 days. Now Prime Minister Modi's continuous tenure is 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. BJP National President Nitin Naveen has said that Prime Minister Narendra Modi has written a new history across the entire country. Talking to reporters after offering prayers at a temple in New Delhi, he said that under this remarkable leadership, 25 crore families have been lifted out of poverty. Mr. Naveen said, over the past 12 years, the Prime Minister has worked for the welfare and development of every section of society, with a particular focus on women's empowerment. Union ministers including Amit Shah, Dr. S. Jayashankar, Piyush Goyal, Nirmala Sitharaman and Shivraj Singh Chauhan, among others, have wished Prime Minister Narendra Modi on becoming the longest continuous serving elected Prime Minister of India. In a social media post, Home Minister Amit Shah said that these 12 years of Prime Minister Modi have been about restoring India's pride, cultural renaissance and freeing the nation from the mentality of servitude. Dr. Jayashankar noted that this achievement reflects the enduring trust and confidence that the people of India placed in PM Modi's leadership, vision and commitment to national development. Ms. Sitharaman added that during this period, the NDA government under PM Modi has delivered bold reforms and has implemented several initiatives with unprecedented pace and scale. She emphasized that Prime Minister Modi provided decisive and strong leadership through a series of challenging times.

0: claims that the nation has faced. A meeting of the National Democratic Alliance will be held in New Delhi today to celebrate its government's completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. Our correspondent has more details on the meeting.
1: All constituents of the alliance beside the top leadership of the BJP, including Prime Minister Modi, are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories, besides the leaders of all alliance constituents. The meeting will focus on reviewing various national development programs, infrastructure programs, and the Modi government's vision to transform the nation into a developed country by 2047. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
0: The government has refuted several social media posts falsely claiming that the Reserve Bank of India will withdraw paper currency notes and replace them with plastic currency notes from the 30th of this month. PIB clarified that according to the RBI, there are no plans to withdraw paper currency notes or replace them with plastic currency notes by the end of this month. PIB further advised citizens to rely only on authentic information available on the official RBI website. NASA has announced names of three US astronauts and one Italian astronaut as the crew for its next Artemis 3, a spacecraft docking demonstration mission scheduled for late next year that will test lunar landers from SpaceX and Blue Origin in orbit for the first time. U.S. astronauts Andre Douglas, Frank Rubio and Randy Bresnik and Italian astronaut Luca Parmitano of the European Space Agency will be the crew of Artemis 3. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.7% up in the forenoon session today. The Sensex gained 597 points to reach 74,516, while the Nifty advanced 157 points to 23,400 when reports last came in. In men's cricket, India A defeated Sri Lanka A by 8 runs in the close contest in the opening clash of Tri-Nation A series at the Rangira Dambulla International Stadium in Sri Lanka yesterday. Ruturaj Gaikwad was adjudged player of the match for his ton. India A will next face Afghanistan A tomorrow at the same venue. And that is the end of this news bulletin.
2: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। चर्चा का विषय है, ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात में 9:30 पर। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात में 10:30 पर सुनिएगा विदुषी अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन और दिन में 12:15 पर आप सुनेंगे पंडित अनुपम राय का तबला वादन। शाम 7:31 पर सुनिएगा प्रोग्राम बोलते नगमे। श्रोताओं के फोन कॉल्स पर आधारित फिल्म संगीत का प्रोग्राम हेलो फरमाइश होगा दिन में 12:30 पर। बहने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर निखार के अंतर्गत होलोग्राफिक आईलाइनर के बारे में जानेंगी और मेरा हुनर मेरा व्यवसाय में लिखने की कला को बनाए आमदनी का जरिया ये जानेंगी। दिन में 2:30 पर पहले सुनिएगा राम जतन प्रजापति के गाय लोकगीत, उसके बाद आप प्रियंका चौहान के गाय लोकगीत सुनेंगे और कार्यक्रम के अंत में विष्णु राजा के गाय लोकगीत प्रसारित किए जाएंगे। ग्रामीण भाई पंचायत घर कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6:30 पर। इस कार्यक्रम में पहले मुशर्रफ अली और साथियों के गाय लोकगीत सुनेंगे और उसके बाद नीति वचन सुनाएंगे रजनीकांत चौबे। हमारा सबरस कार्यक्रम होगा रात में 8:30 पर। अभी आप आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।

आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिए पंडित अनुपम राय का तबला वादन। प्रस्तुत है तबले पर धमार ताल। कलाकार हैं पंडित अनुपम राय।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप पंडित अनुपम राय से तबले पर धमार ताल सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। पेश है प्रोग्राम हेलो फरमाइश, पेश कर रही हैं मधु कुमार।

0: इस समय आप सुन रहे हैं हेलो फरमाइश कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से, और मैं हूं मधु आपके फरमाइशी गीतों के साथ। अपना नाम बता दीजिए।
1: पोस्ट हटिया, तहसील हटिया, थाना हटिया, गांव मगराम, जिला प्रयागराज से प्रेमचंद यादव बोल रहे हैं। मैं
0: नमस्कार जी, प्रेमचंद यादव जी, कैसे हैं आप?
1: हम बिल्कुल अच्छे हैं मैम, बताइए आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का नाम है आशिकी 2 और गाने के बोल हैं

तो आपने बहुत ही अच्छे से गीत सुनाया और अब हम भी आपको सुनवा देते हैं आशिकी 2 फिल्म का ये गाना। लीजिए सुनिए।

0: नमस्ते मैम।
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
0: रेखा यादव हटिया से बोल रही हूँ मैम।
1: जी रेखा जी, कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाते।
1: जी, बड़ा अच्छा आपने गाना चुना है रेखा जी।
0: मैम एक दिन सुन रही थी, हमें याद हो गया,
1: हाँ
0: हम कहा
1: आप,
0: अभी हम यही सुनेंगे।
1: अच्छा, अपनापन फिल्म का ये गीत है जिसकी फरमाइश आपने की है।
0: यस मैम,
1: तो रेखा जी, किसी का नाम तो नहीं लेना आपने? हाँ
0: बच्चों का लेंगे मैम।
1: जी, ले लीजिए।
0: आयुष अनन्या मैम, आप
1: अच्छा, आयुष अनन्या के संग मैं भी सुनूंगी रेखा जी की पसंद का अपनापन फिल्म का ये गाना। लीजिए, सुनिए।

0: फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना नाम बता दीजिए।
1: हेलो फरमाइश, हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से आरुणी मधु दीदी को स्वागत करता हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार जी, नमस्कार। बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है अनाड़ी, नई वाली है
0: जी जी,
1: और इसमें गीत है क्या मौसम आया है।
0: जी जी, बहुत ही अच्छा गीत आपने चुना है
1: जी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छी लाइनें हैं इसकी, बहुत ही सुनने में।
0: ये बात आपने बिल्कुल सही कही शारदा प्रसाद जी कि कभी कभी जब गर्मियों के बाद मौसम खुशनुमा हो जाता है, कभी बादल दिख जाते हैं, ठंडी ठंडी हवा चलती, तो मन से यही आवाज निकलती है क्या मौसम आया है। तो बहुत अच्छा गीत है, तो चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम। हेलो,
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते जी, अपना नाम बताइए
1: मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ, रायपुर मलागबेला से।
0: जी। सुरेन जी, कौन सा गीत सुनेंगे?
1: लगान फिल्म का गाना सुनने दीजिए।
0: हाँ जी, लगान का तो सुनवाएंगे, लेकिन कोई गाने के बोल याद हैं या कोई भी गीत आप सुनना चाहते हैं?
1: कोई भी सुनवा दीजिए।
0: ठीक है, तो लगान फिल्म से हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ये गाना, लीजिए सुनिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम, अपना नाम बताएं।
1: जी, हम योगेश जांगरे बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: जी, छत्तीसगढ़ से योगेश जी हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में। तो योगेश जी की पसंद का गाना कौन सा है?
1: फिल्म है सिलसिला और गीत
0: जी
1: के बोल बोल है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए।
0: बहुत ही अच्छा गीत चुना है। देखिए, सिलसिला फिल्म के जब भी गाने की फरमाइश आती है, वो अक्सर होली के आसपास आती है और रंग बरसे चुनरिया की हमेशा फरमाइश होती है। लेकिन बहुत दिनों के बाद किसी ने सिलसिला फिल्म के इस गाने को भी सुनना चाहा है।
1: गीत संगीत तो
0: जी
1: हमेशा मन में रचे बसे रहते हैं और उसका कोई समय विशेष
0: जी
1: नहीं
0: जी
1: बांधा जा सकता।
0: बिल्कुल सही कहा आपने योगेश जी। तो आपको सुनवाते हैं सिलसिला फिल्म का ये गाना, लीजिए सुनिए।

0: आकाशवाणी के हम प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। 1 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबी अवधि तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रति सम्मान व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ऐतिहासिक अवसर देश की जनता द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जताए गए अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत के प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य और दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
3: आज माननीय प्रधानमंत्री जी भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी इसी तरीके से देश की सेवा करते रहे और देश का जो भविष्य बनाने का संकल्प उन्होंने लिया है, भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, उस संकल्प में हम सभी 140 करोड़ देशवासी संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी। विश्व नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत

के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में इस अवसर पर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में सीएनजी की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन प्राकृतिक गैस पीएनजी की आपूर्ति बढ़ा रही है। श्री पुरी ने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। श्री पुरी ने कहा कि सरकार ऐसी गतिविधियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के मामलों के सचिव रुदेंद्र टंडन ने कल मनीला में आयोजित आसियान क्षेत्रीय मंच एआरएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लिया। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान श्री टंडन ने समकालीन भू राजनीतिक चुनौतियों से निपटने में एआरएफ की महत्वपूर्ण भूमिका और संवाद तथा कूटनीति के प्रति समर्थन व्यक्त किया। घरेलू शेयर बाजारों में आज 0.5% की बढ़त दर्ज की गई। ताजा जानकारी मिलने तक सेंसेक्स 420 अंक बढ़कर 74,339 और निफ्टी 106 अंक बढ़कर 23,348 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: के रहनुमा कुव्वत और 1.45 बिलियन हिंदुस्तानियों की खिदमत, सलामती और खुशहाली के लिए मुसलसल वक्फ रहने वाले रहनुमा, हिंदुस्तान में सबसे तवील मुद्दत तक रहने वाले मुंतखब वजीर आजम बनने पर दिली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अवामी खिदमत ही गुड गवर्नेंस का सही पैमाना है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम को शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सिर्फ वही शख्स जो आजिजी और लगन के साथ काम करता है अवाम का एतमाद हासिल कर सकता है। आकाशवाणी समाचार हुकूमत के गुज़िश्ता 12 सालों में मुख्तलिफ अहम शोबों में की गई कोशिशों पर एक खसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम नौजवानों को बाइख्तियार बनाने की सिमत में हुकूमत की कोशिशों पर बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1.60 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16 लाख नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
0: उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में रियासत में मुजोविजा सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन प्रोजेक्ट की पेशरफत का जायजा लिया और जरूरी अहकाम दिए। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण की व्यवस्था उद्योगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप होनी चाहिए। परियोजना को केवल प्रशिक्षण केंद्र के रूप में नहीं बल्कि रोजगार, उद्योग और उद्यमिता के समेकित इकोसिस्टम के रूप में विकसित किया जाए। बैठक में 9 क्षेत्रीय जोन में प्रस्तावित केंद्रों की संरचना प्रस्तुत की गई। प्रत्येक जोन में एक उत्कृष्टता केंद्र तथा उससे जुड़े क्षेत्रीय कौशल विकास केंद्र विकसित किए जाएंगे। परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद प्रतिवर्ष 10 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण एवं प्रमाणन उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रशिक्षित युवाओं के लिए 80% प्लेसमेंट सुनिश्चित करने की योजना है।
0: वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली वाकई कौमी इम्तिहान एजेंसी के सदर दफ्तर का दौरा किया और 21 जून को मुजव्वजा नीट की री एग्जाम की तैयारियों का जायजा लिया। सदर दफ्तर के बाहर उन्होंने साहबियों से बातचीत भी की। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।
3: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। अब बहनें सुनेंगी कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।

0: गर्मी की छुट्टियां आई लेकर खुशियों की सौगात। ये छुट्टियां ऐसे लगती है जैसे खुशियों का हो त्योहार। इन्हीं पंक्तियों के साथ आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का, तो स्वीकार कीजिए संगीता का
1: और मंदाकिनी का प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: तो श्रोताओं, चलिए अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: बहुत बढ़िया गाना सुनवाया मंदाकिनी तुमने।
1: तो भाई गीत संगीत का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। और अभी जब हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे थे, संगीता जी आपने बहुत ही प्यारी पंक्ति बोली थी कि ये छुट्टियाँ ऐसी लगती हैं जैसे हो खुशियों का त्यौहार, है ना। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि गर्मी की छुट्टियाँ किसी त्यौहार से कम नहीं होती। सारा परिवार एक साथ होता है, भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ी राहत मिलती है। इन छुट्टियों में तो बच्चों की जो धमा चौकड़ी होती है ना दिन भर, क्या ही बात है।
0: सच
1: लेकिन
0: में।
1: लेकिन संगीता जी, अब वो पहले वाली गर्मी की छुट्टियां नहीं रही। जैसे जो छुट्टियों की एक स्वतंत्रता होती थी वो हम खोते जा रहे हैं। सभी यही सोचते हैं कि अब हम ज्यादा विकसित और समझदार हो गए हैं, तो छुट्टियां गुजारने का जो तरीका है वो ज्यादा ही डेवलपमेंट डेवलप

0: है और बहुत ही मॉडर्न है ना। तो लेकिन जहाँ तक जो अगर देखिए तो दिखता ऐसा है कि डेवलप तो है, आप कह सकते हैं बहुत सारी सोर्सेज अवेलेबल हो गए
1: बिल्कुल.
0: हैं, लेकिन बच्चों पर जो दबाव है वो भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। क्यों ये जब छुट्टियां होती वो क्या होता है कि स्कूल कॉलेज की भाग दौड़ से थोड़ा सा हम स्ट्रेस से रिलीफ हमको मिलता है और हम परिवार के साथ अपनों के साथ एक अच्छा वक्त बिताते हैं, इसलिए
1: बिल्कुल
0: छुट्टियां होती हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: मंदाकिनी. और देखो, जो हमारी जो ये शहरी संस्कृति है ना, वहाँ पे समर कैंप, एक्स्ट्रा क्लासेस, दुनिया भर की जो एक्टिविटीज़ के जाल में फंसकर हमारे जो बच्चे हैं ना, वो अपनी जो छुट्टियों की आज़ादी को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं.
0: जी सही कहा
1: वो
0: आपने।
1: अब परंपरागत खेलों से भी अनजान होते दिखाई दे रहे हैं. जब हम याद है जब हम छोटे थे तो हम गिल्ली डंडा, खो खो, कोड़ा मार, लुका छुपी, गुट्टा गुप्पी, ऐसे ढेर सारे जो खेल थे, उनका जन्म इन्हीं जो गर्मी की छुट्टियां होती थी उन्हीं की देन होती थी. जिन्हें आज की जो पीढ़ी है ना मंदाकिनी, वो आज की पीढ़ी मोबाइल गेमों में तलाश रही है. जिन खेलों का जन्म ही शारीरिक विकास के साथ हुआ हुआ करता था, उसे ऑन स्क्रीन गेम की तरह एंजॉय करना आज विकसित छुट्टियों की तरह हो गया है. और मंदाकिनी, जो बच्चे हैं वो गर्मी की छुट्टियों को ऐसे ऐसे होना चाहिए, जो हमारे बच्चे हैं, जहाँ बड़े साल भर की भाग दौड़ से दूर हो, स्कूल की आपाधापी ना हो, और सुबह की जो गहरी नींद है ना उसे भी उठाने के कोई नियम ना बनाया जाए. और उन्हें ऑन स्क्रीन खेलों में माहिर नहीं होना चाहिए, बल्कि नए नए खेलों को स्वतंत्र रचनात्मक बना सके, जहाँ कोई दबाव और पाबंदी ना हो. मंदाकिनी, आज के दौर में जहाँ ज़्यादातर घरों में माता पिता दोनों ही कामकाजी हैं, वहाँ कुछ समय निकालकर बच्चों की जो छुट्टियाँ हैं ना उनको यादगार बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए.
0: बिल्कुल आपने जो बातें की हैं संगीता जी बिल्कुल सही की हैं, और बदलते वक्त में जो चीज़ें बदल रही हैं तो उसका कहीं ना नकारात्मक प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ रहा है। जैसा कि आपने ऑनलाइन और जो है ऑन स्क्रीन गेम की बात की है, तो अक्सर देखा जाता है कि लगातार मोबाइल चलाते चलाते जो है बच्चों को अक्सर देखिए सिर दर्द की प्रॉब्लम और जो है आँखों में दिक्कत, ऐसी समस्याएं जो है अक्सर सता रही हैं, है ना। तो बात अगर आप की जाए जो आपने गर्मी की छुट्टियों में विकसित होने वाले और गेमों की बात की है, जो जिसे हम कह सकते हैं आउटडोर गेम्स, है ना, तो उनमें वाकई जो ये गिल्ली डंडा था और जो हम लोग इक्कड़ दुक्कड़ खेलते थे, है ना, और बर्फ पानी, तो बहुत सारे गेम्स होते थे जो फिजिकल एक्टिविटी होती थी बच्चों की, उनका शारीरिक विकास होता था। लेकिन बात जो है यहाँ पे है कि गर्मी की छुट्टियाँ होती तो हैं, लेकिन जब हम लोग नानी के घर जाया करते थे, दादी के घर जाया करते थे, वो अलग होती थी, है ना।
1: बिल्कुल.
0: भाई गांव की खुली हवा, दादी नानी का आंगन, नीम की छांव में चहलकदमी करते बच्चे, पेड़ों की डाल पर जो झूले डाले जाते थे, क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद सावन लग जाता है ना, वो परंपरागत खेल जो है ना याद आने लगते हैं। और गर्मियाँ आने से पहले ही दादी नानी बुआ मौसी के घरों में गर्मियों की छुट्टियों की तैयारियाँ भी शुरू हो जाती हैं, जिसका
1: बिल्कुल
0: आनंद बड़ा ही सुहावना लगता है।
1: बिल्कुल मंदाकिनी. और देखो, दरअसल ये एक ऐसा अवसर होता है ना, जब परिवार के सभी जो भाई बहन होते हैं ना, उनका जमावड़ा एक साथ एक जगह पर ही एक समय पर होता है. घर का माहौल शादी ब्याह से जैसे जैसे लगता है कि शादी ब्याह का समारोह नहीं हो, वैसा ही लगने लगता है, क्योंकि इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं. और बच्चों भी जो बच्चे होते हैं वो पढ़ाई के तनाव से कुछ पल के लिए दूर हो जाते हैं. हालांकि स्कूल से जो होता है होमवर्क भी ढेर सारा मिलता है, जिसे बच्चे गाँव जाने या अपने दादी नानी के घर जाने के उल्लास में जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं. और इन दिनों बच्चे प्रतिदिन की जकड़न भरे नियमों से दूर भी हो जाते हैं, जो उन्हें तनाव मुक्त रखने में काम आते हैं. साथ ही उनकी यादों के कैलेंडर में एक खूबसूरत सा अध्याय जुड़ जाता है, जिसे वो अपनी स्मृति में संजो लेते हैं.
0: बिल्कुल संगीता जी, गांव की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है यहाँ अपनापन देखा जाता है ना। अब देखो ना, जहाँ शहर में कई बार पड़ोसियों तक को ठीक से नहीं जानते हम, है ना, उनको पता ही नहीं होता कि पड़ोस में वो क्या रहा है, लेकिन गांव में पूरा का पूरा गांव एक परिवार जैसा लगता है। कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता, सुख हो दुख हो पूरा गाँव साथ खड़ा दिखाई देता है ना। अपनापन जो है वहाँ पे व्यतीत करिए तो वो यादगार सा बन जाता है।
1: बिल्कुल. और पता

0: है, जो सुबह का दृश्य होता है ना, वो बहुत ही मनमोहक होता है मंदाकिनी। सूरज की जो पहली किरण के साथ पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती है, खेतों की ओर जाते किसान, पेड़ों से आती ठंडी ठंडी हवा मन को प्रसन्न कर देती है, और शाम होते ही यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर हो जाता है। जब सारे बच्चे खेल के मैदान में एक साथ पहुंच जाते हैं, बड़े लोग चौपाल पर बैठकर बातचीत करते हैं और कहानियां, अपने जो अनुभव होते हैं वो शेयर करते हैं, और दादा दादी नाना नानी की जो कहानियां होती है ना वो सुनाते हैं, उसका तो आनंद ही कुछ और होता है। उनकी कहानियों में इतिहास होता है, संस्कृति होती है, जीवन की सीख होती है।
1: संगीता जी, जानती हैं हमारे घर में कई दिनों से गांव जाने की चर्चा चल रही है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि बच्चों ने स्कूल का सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया है ना, अब वो बार बार पूछ रहे हैं कि कब चलेंगे गांव जहाँ पे उनकी दादी हैं, उनके पुराने किस्से हैं।
0: हाँ।
1: है ना, बचपन के किस्से उन बच्चों के भी वहाँ पे हैं, जब वो आते थे तो दादी कैसे उनके साथ खेला करती थी, कैसे उनको कहानियां सुनाई करती थी। वो जाते हैं फिर रिपीट करते हैं, दादी भी उनको उनके बचपन की चीजें बताती हैं, है ना, और पापा मम्मी की भी यादें वहाँ से जुड़ी होती हैं ना, वो भी बताते हैं कि हम यहाँ ऐसा खेला करते थे, वहाँ ऐसा वहाँ हाँ। वो पेड़ था, है ना, अब वहाँ वो पेड़ नहीं है, है ना, तो ऐसी जो यादें हैं वो हम जाके वहाँ पे उसको फिर से याद करते हैं, है ना, और पूरा परिवार छुट्टियों का इंतजार इसीलिए तो करता है कि कब हम एक साथ बैठ के अपनों से बातचीत करेंगे।
0: सच में मंदाकिनी, यहाँ सभी रिश्तेदारों से भी मिलकर ऐसा लगता है जैसे हम अपने ही संसार में वापस आ गए हों। बच्चों के लिए तो ये किसी त्योहार से कम नहीं होता, हम बड़ों के लिए भी होता है। और जानती हो मंदाकिनी, जब हम गाँव जा रहे थे तो हमें मुझे एक बात याद आई थी कि जब वो जो पेड़ थे, वो बचपन की जो यादें थी, वो झूला, जैसे भी तुमने कहा ना कि वो झूला डालने के लिए, तो वो बहुत सारी यादें होती हैं जो हम अपने समेट करके रखते हैं। तो देखो भाई, मैं गांव की बात हो रही है और हमारे घर में कल जाने की तैयारी हो रही है, गांव हमारे घर जाना है, बच्चों बस तैयार हो रहे हैं, उनका होमवर्क भी कंप्लीट हो चुका है, तो भाई मैं तो कल निकल रही हूँ, तुम कब निकल रही हो?
1: मैं भी बस इस वीकेंड निकलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भाई चलूँ और अपने आप को भी थोड़ा सा तनाव मुक्त रखूँ और बच्चों को भी।
0: उन गांव की गलियों में, आम की छांव में, उन पगडंडियों में, उन हवाओं के झोंकों तक, उन यादों को संजोने, हंसते गाते गुनगुनाते बचपन की गलियों में, तो भाई बचपन की गलियों में हम पहुँचेंगे, लेकिन इस गीत के साथ।
1: बिल्कुल।

0: वही गीत के बाद फिर से आ गए हैं अपने कार्यक्रम में मंदाकिनी। देखो अभी इस गीत से पहले हम बात कर रहे थे गांव जाने की, है ना। मेरा तो मन कर रहा है कि भाई मैं अभी गांव पहुंच जाऊं और देखो जब कितना अच्छा लगता है ना अपनों के पास पहुंचकर। और जब हम कभी भी हम अपने बचपन में जाते हैं, अपने अपनों के साथ रहते हैं, तो वो कितना अच्छा लगता है, है ना।
1: वो यादें, इसीलिए तो यादें हैं।
0: हाँ, और अपने जीवन को है जो हम जीते हैं वहीं से, वही जगह अपनी सफलता का भी एक बहुत बड़ा कारण बनती है, है ना। क्योंकि हमारे अपने होते हैं, उनका साथ होता है, और यही हमारा जो होता है कम्फर्ट जोन होता है, इससे बाहर निकलने का तो मन भी नहीं होता है।
1: बिल्कुल संगीता जी, हम सभी अपनी जिंदगी में किसी ना किसी रूप में सुरक्षित क्षेत्र यानी जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं उसमें रहते ही हैं, है ना। और ये वो जगह है जहां हम डर, चिंता या असहजता से मुक्त रहते हैं। और अक्सर हम ये सोचते हैं कि इसी सुरक्षित क्षेत्र में रहकर जीवन आसान और सुरक्षित रहेगा, है ना। लेकिन श्रोताओं, सच ये है कि यही वो जगह है जो हमारी प्रगति को रोकती है और हमारी क्षमताओं को सीमित करती है।
0: बिल्कुल, ये तुमने सही कहा मंदाग्नि। कंफर्ट जोन में रहना हमें आराम तो देता है, हमारा विकास नहीं होता। पर इससे जब हम चुनौतियों से भागते हैं या नई चीज़ों से डरते हैं, तो हम न केवल अपने अनुभवों को सीमित करते हैं, बल्कि अपनी सफलता की संभावनाओं को भी कम कर देते हैं।
1: संगीता जी, ये जो चुनौतियाँ हैं वो हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक होती हैं।
0: बिल्कुल,
1: वो हमें नए कौशल, आत्मविश्वास और धैर्य सिखाती हैं। जीवन में जो लोग सफल होते हैं वो चुनौतियों का सामना करने से नहीं डरते, बल्कि उसका स्वागत करते हैं। डर को चुनौती के रूप में अपनाकर ही हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं।
0: मंदाकिनी, जो व्यक्ति हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहता है ना, वो नई चीज़ें सीखने, नए अनुभव प्राप्त करने और अपनी प्रतिभा को विकसित करने के अवसर खो देता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी कम होने लगता है और वो बदलाव से डरने लगता है।
1: संगीता जी, चुनौतियां तो जीवन का वो हिस्सा है जो हमें मजबूत बनाती हैं। वास्तव में तो चुनौतियां हमें सिखाती हैं कि हम कितने सक्षम हैं, है ना, और हमारी सीमाएं कहाँ तक हैं। सोचिए, जीवन में अगर चुनौतियां ना हो तो व्यक्ति कभी भी अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाएगा।
0: मंदाकिनी, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन में कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने सफलताओं से डरने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर माना और आगे बढ़ते हुए, यही कारण है कि वो आज सफल बन सके हैं।
1: बिल्कुल संगीता जी, सफलता पाने के लिए तो आगे बढ़ना ही होगा। जैसे एक छोटे बच्चे को देखें जो चलना सीख रहा होता है, वो बार बार गिरता है, हाँ, लेकिन फिर भी गिरने के डर से चलना बंद नहीं करता। वो लगातार कोशिश करता है, प्रयास करता है और अंत में वो चलना सीख जाता है। वो इसलिए कि उसने प्रयास किया।
0: इसी तरह से मंदाकिनी, अगर एक चिड़िया की बात करें तो जब वो उड़ना सीखती है तो अपने घोंसले से बाहर निकलती है।

0: और अपने प्रयास से खुले आकाश में उड़ती है। जरा सोचो, अगर वो भी अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ती, यानी कि अपने घोंसले को से बाहर नहीं आती, नहीं निकलती वहाँ से, तो ये अनुभव उसे मिलता क्या? बिल्कुल नहीं मिलता।
1: बिल्कुल श्रोताओं, जब थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब बनाने के बारे में सोचा है ना, तो उन्होंने कितने प्रयोग किए जो कि असफल हुए। बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन कोशिश करना उन्होंने बंद नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि इतने सारे प्रयास मेरे असफल हो गए हैं तो अब मैं कोशिश ना करूं या मैं जो है सोचूं ना इसके बारे में, क्योंकि यही तो कंफर्ट जोन होता है ना, कि कोई भी प्रयोग हम करें और वो नाकाम हो जाए तो चलो छोड़ो जाने दो। लेकिन उन्होंने जो भी चुनौतियाँ थी उसको स्वीकार किया और अंत में देखिए उनका प्रयास सफल रहा और आज की दुनिया बदल गई है।
0: बिल्कुल। और श्रोताओं, जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए हमें अपने जो डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए और हम चुनौतियों का साहस करें, चुनौतियों के लिए साहस करें और सामना करना चाहिए हमें उसकी, और तभी तो हमारा असली विकास शुरू होता है। और जहां आराम समाप्त होता है वहीं से संघर्ष भी शुरू होता है। क्यों मंदाकिनी?
1: बिल्कुल।

0: वाह, बहुत ही बढ़िया गाना था, धीमी धीमे चले पुरवैया। लेकिन भाई इस समय जो है धीमे धीमे पुरवैया नहीं चल रही है, और गर्मी जो है वो बढ़ती ही जा रही है ना।
1: बिल्कुल। और लेकिन हम भाई जो है महिलाएं अपने कार्य में हमेशा दक्ष रहते हैं, और हमारा कार्यक्रम भी चलता रहता है, हमारे कार्य भी चलते रहते हैं जीवन के।
0: सच में।
1: तो अपने कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, और हमारे कार्यक्रम का जो नेक्स्ट सेगमेंट है मेरा हुनर मेरा व्यवसाय, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। और इसमें जो एक विषय है बहुत ही सुंदर है कि लिखने की कला को बनाए आमदनी का जरिया। तो संगीता जी, आज इस विषय पे हम चर्चा करेंगे कि कैसे हम महिलाएं इसको अपना व्यवसाय बना सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक जो है ऐसी कला की जो हमारे विचारों को अभिव्यक्त करती है, बल्कि वो हमारे आमदनी का अच्छा साधन भी बन सकती है। और जो है लिखना केवल शौक नहीं है, हम सभी जानते हैं कि इसको आज के जो डिजिटल युग है, हाँ, इसमें हम बेहतरीन करियर के रूप में भी इसको विकल्प बना सकते हैं। यदि
0: बिल्कुल
1: आपको कहानियाँ, कविताएँ, लेख या किसी विषय पर अपने विचार लिखना पसंद है, तो आप अपनी इस प्रतिभा को आय का स्रोत भी बना सकती हैं।
0: बिल्कुल। आज जो है मंदाकिनी, देखो कई लोग कंटेंट राइटिंग और ब्लॉगिंग
1: हाँ, सो
0: का,
1: कॉपी
0: हाँ,
1: राइट,
0: कॉपीराइट, पुस्तक लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग और प्रोलॉग लेखन माध्यम से अच्छी कमाई कर लेते हैं। इंटरनेट ने लेखकों के लिए बहुत ही अनगिनत अवसर भी खोल रखे हैं। और जैसे कि हम कोई भी अगर रचनाकार हैं, वो भी अपनी रचनाओं को वेबसाइट पे लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि देखो आज इंटरनेट का ज़माना है, तो आप अपने जो पत्र है, पत्रिकाएं हैं और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आप प्रकाशित कर सकते हैं। और इससे प्रकाशित करके देखो क्या होता है कि लोग सुनते, उसको पढ़ते हैं, है ना।
1: बिल्कुल। और एक सफल लेखक बनने के लिए नियमित अभ्यास, अच्छी भाषा शैली और पढ़ने की जो आदत है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जितना अधिक आप पढ़ेंगे, जितना अधिक आप सुनेंगे, उतने ही बेहतर आप लिख पाएंगे, उतने ही बेहतर आप लेखक बनेंगे। शुरुआत में क्या होता है कि कम अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आपके अंदर धैर्य है, तो सफलता की ओर जरूर जाएंगे आप। और इसलिए यदि आपके पास लिखने की कला है, तो उसे केवल डायरी के पन्नों तक सीमित ना रखें, अपनी प्रतिभा को पहचानें और निखारें, उसे आमदनी का एक जरिया बनाइए।
0: और पता है लिखने की जो कला है ना, वो लोगों के लिए आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है मंदाकिनी। कई लोग घर बैठे लेखन कार्य करके अपनी पढ़ाई या अन्य ज़रूरतों का जो खर्च है वो स्वयं उठाते हैं। और लेखन केवल कमाई का साधन नहीं है श्रोताओं, बल्कि ये हमारे ज्ञान, सोचने की क्षमता और व्यक्तित्व को भी विकसित करता है। एक अच्छा लेखक हमेशा सीखता रहता है और समाज के को नई दिशा देने का भी प्रयास करता है।
1: बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में वेबसाइटों के जरिए, समाचार पोर्टलों के जरिए, विज्ञापन कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अच्छे लेखकों की लगातार आवश्यकता रहती है। इनके जरिए हम बहुत सारे राइटर से देखे रूबरू हुए हैं आज के ज़माने में, है ना। बहुत सारे लेखन इतने अच्छे अच्छे आजकल हमको देखने को मिलते हैं कि जिससे एक समाज में चेतना का विकास हुआ
0: बिल्कुल।
1: है।
0: और मंदाकिनी, जैसे हम कुछ लेखकों के बारे में जैसे हम नहीं जानते थे, कुछ राइटर है जिनकी कहानियाँ हम सुनते थे, लेकिन हमें अब पता है कि ये जो कहानी है या लेखक है, जो उनकी कविताएं हैं, वो इनकी है ना। क्योंकि हमने सुना था, फिर हम भूल कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन जब हम जो सोशल मीडिया पर आते हैं तो हमें याद आ जाता है कि ये ही कहानी, यही कविता इनकी थी। तो हमें दिमाग में रहता है कि हाँ, ये कहानियाँ हमने पढ़ी थी बचपन में, अब हम उनकी अब फिर से पढ़ रहे हैं।
1: बिल्कुल। और श्रोताओं, कलम में इतनी ताकत होती है कि वो केवल शब्द नहीं लिखती, बल्कि सपनों को हकीकत और हुनर को आमदनी में बदल सकती है। तो इस अपनी शैली को अपना व्यवसाय बनाइए और इसमें खूब तरक्की कीजिए। और फिर चलते हैं हम इस प्यारे से गीत की तरफ, रुख करते हैं।

0: श्रोताओं, इस गीत के बाद आपको एक जानकारी दे दें, इस शुक्रवार यानी कि 12 जून दोपहर 1:15 बजे हेलो गृहलक्ष्मी लेकर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में जिन दो फिल्मों के गीत सुनवाएंगे वो फिल्में हैं गदर 2 और लापता लेडीज। इन फिल्मों के गीत सुनने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0532243649 और दूसरा नंबर है 0532297-0462 और व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर भी अपने पसंद के गीत सुन सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8004926250। तो इस शुक्रवार 12 जून को रहेगा हमें अपने श्रोताओं के फ़ोन कॉल का इंतज़ार।
1: तो श्रोताओं, अब अपने कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है निखार का। और आज निखार सेगमेंट में हम लेके आए हैं होलोग्राफिक आईलाइनर, तो इस पे आज हमारी चर्चा होगी।

0: तो सखियों, मेकअप की जो दुनिया है इसमें हर दिन कुछ नया हमें देखने को मिलता है ना, एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं। तो इन्हीं नए ट्रेंड्स में एक है होलोग्राफिक आईलाइनर, एक ऐसा आईलाइनर जो रोशनी पड़ने पर अलग अलग रंगों में चमकता और झिलमिलाता है। होलोग्राफिक आईलाइनर खास तौर पर उन लोगों के बीच लोकप्रिय है जो अपने लुक को थोड़ा अलग और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं। पार्टियों में, फेस्टिवल्स में, फैशन शो में, विशेष अवसरों पर इसका उपयोग आप तेजी से देखेंगे।
1: बिल्कुल मंदाकिनी। और जो आईलाइनर की सबसे बड़ी खासियत है ना, वो ये कि ये साधारण मेकअप को भी आकर्षक और आधुनिक बना देता है। इसे अकेले भी लगाया जा सकता है और सामान्य काले आईलाइनर के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे आंखों को एक अनोखा और चमकदार लुक मिलता है।
0: बिल्कुल श्रोताओं, हालांकि किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस्तेमाल करते समय इसकी गुणवत्ता का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमेशा विश्वसनीय और सुरक्षित उत्पादों का आप चयन करें ताकि आंखों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। यानी जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें वो ऐसा हो कि जिससे हमारे आंखों को नुकसान ना पहुँचे।
1: बिल्कुल। और आज के समय में होलोग्राफिक जो आईलाइनर है ना मंदाकिनी, वो केवल एक उत्पाद नहीं बल्कि आत्मविश्वास और रचनात्मकता को व्यक्त करने का एक माध्यम भी बन गया है। जहाँ दिखता है कि फैशन केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं है बल्कि अपनी पहचान और व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने के लिए भी होता है।
0: बिल्कुल संगीता जी, आजकल जो आईलाइनर का ट्रेंड है वो देखिए होता क्या है कि कलर के अकॉर्डिंग लोग आईलाइनर लगा रहे हैं। जैसे ब्लू है तो ब्लू लगा लेते हैं, है ना, और येलो है येलो लगा देते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है कि जब आप डे और नाइट के मेकअप की बात कीजिए तो अक्सर वो कलर शेड आप चूज़ कीजिए जो कि डे के समय में लाइट शेड में हो, है ना। अब जैसे गहरा नीला रंग है ना, वो अगर आप दिन में लगा लीजिए आंखों के ऊपर तो एक थोड़ा सा, है ना, बोल्डनेस तो आती है उससे, लेकिन बहुत ही अलग सा वो
1: बिल्कुल
0: चमकता
1: हाँ,
0: सा है।
1: चमकता रहता है।
0: हाँ,
1: तो कोशिश ये करें कि लाइट
0: लाइट
1: लगाएं।
0: शेड लगाएं। और रात की बात करें तो हाँ, उसमें आप डार्क मेकअप अक्सर हम यूज़ करते हैं, वो हमारे आउटफिट के ऊपर है कि हमने कैसी ड्रेस पहनी हुई है। अगर ड्रेस का कलर डार्क है तो ठीक है, आप ले सकते हैं, लेकिन
1: थोड़ा लाइट
0: हाँ,
1: लगाने की कोशिश
0: ऐसा
1: करें कि
0: होता है कि
1: मतलब
0: जब डार्क कलर हम पहनते हैं ना, और वही डार्क मेकअप जब हम फेस पे करते हैं तो ओवरऑल लुक जो है डार्क सा हो
1: बिल्कुल,
0: जाता
1: तो
0: है,
1: मतलब
0: वो
1: लाइट
0: निखर
1: करना
0: के हमारा
1: चाहिए।
0: फेस नहीं आता है। तो जैसे हम यहाँ आईलाइनर की बात हम कह रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट भी यूज़ करना है वो ऐसा यूज़ करना है कि जो जिसकी ऑथेंटिक सिटी हो, मतलब जो आप कह सकते हैं कि ब्रांडेड हो, उसमें जो भी केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं वो ऐसे हों कि हमारे आंखों को उससे नुकसान ना हो। क्योंकि अक्सर देखिए जब भी हम आई मेकअप करते हैं तो आंखों में समस्या ये आती है कि पानी गिरने लगता
1: जलन
0: है,
1: होने लगती
0: जलन
1: है,
0: होने लगती है, और जब उसे हम साफ करते हैं तो देखिए ना कि आंखें
1: लाल
0: एकदम
1: हो
0: से
1: जाती
0: लाल हो
1: है।
0: जाती है।
1: तो इससे बचने के लिए भाई, तो देखो उस पे प्रोडक्ट जो होते हैं वो आप अच्छे प्रोडक्ट यूज करिए
0: हाँ
1: जो ब्रांडेड हो। अगर
0: बिल्कुल
1: ब्रांडेड होंगे तो मंदाकिनी ये हमारी आंखों को नुकसान नहीं करते हैं,
0: बिल्कुल
1: और
0: बिल्कुल
1: ब्रांड भी वही कि जो आपको सूट करे। ऐसा ना हो कि आप कोई भी ब्रांड ले लेते हैं कि ब्रांडेड है ये, तो उसको आप ले लेते हैं तो उससे क्या होगा कि भाई आपको सूट कर नहीं रहा है
0: बिल्कुल
1: और आपकी आंखें जो होती है उससे थोड़ा सा डिफेक्ट हो सकती है ना।
0: हाँ
1: तो इससे जब जब भी हम कभी भी लेते हैं उसके लिए आप
0: हाँ
1: अपने ही जो आपको सूट करे वो लें। और
0: बिल्कुल
1: एक बार हम श्रोताओं को फिर से बता दें कि इस शुक्रवार को यानी कि 12 जून को दोपहर 1:15 बजे लेकर के आ रहे हैं हेलो गृह लक्ष्मी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में जिन दो फिल्मों के गीत सुनवाएंगे वो हैं गदर 2 और लापता लेडीज। इन फिल्मों के गाने सुनने के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0532242 3649 और दूसरा नंबर है 0532297042। और व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज करके भी गाना सुन सकते हैं अपनी पसंद का, 8004926250 पर। तो इस शुक्रवार 12 जून को रहेगा हमें आपके फोन कॉल्स का इंतजार। और
0: और
1: मंदाकिनी
0: संगीता
1: देखो
0: जी,
1: भाई
0: भाई हम अपने श्रोताओं को जो है, आपने व्हाट्सएप नंबर तो बताया लेकिन ईमेल एड्रेस भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि जो
1: बिल्कुल
0: उनके ईमेल आते हैं ना, प्यारे प्यारे मैसेजेस आते हैं ना, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम अपने कार्यक्रम में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कीजिए, गृहलक्ष्मी बाल संघ 123@gmail.com, और इसी के

अभी बहने गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुन रही थी। आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर। 2 बजने को हैं। अब आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए, अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर तरता रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्रीय जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है, देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
2: भारत में डेमोक्रेट

0: डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
1: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, ये सबसे बड़ा विषय। आज हमारा गरीब हमारा परिवार की मुख्य धारा के साथ जोड़ कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूँ कि 2013-14 का जो समय था, एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
1: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
3: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
1: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारतीय गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2169 करोड़ रूपये की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
5: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए, एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
5: अमरावती नया शहर बन रहा है, तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज

0: के सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं। इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश असम

0: मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये प्रयागराज केंद्र है।
2: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
3: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
2: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
3: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
2: डायल कीजिए 8700014242।
3: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
6: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
7: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
1: हम आकाशवाणी के प्रयागराज केंद्र से बोल रहे हैं। लोकगीतों के आज के इस कार्यक्रम में लीजिए पहले सुनिए रामजन प्रजापति के स्वर में देवी गीत।

ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर। 3 बजे हैं, हमारी आज की ये सभा अब समाप्त होती है। शाम 5 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। श्रोताओं, हमारे विविध भारती के नेशनल नेटवर्क के कार्यक्रम जारी रहेंगे।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, हमारी आज की सायंकालीन सभा आरंभ होती है। श्रोताओं, सभा का आरंभ हम कर रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत के साथ। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार की आवाज़ में कुदरत फिल्म से। संगीत है आर डी बर्मन का, शब्द रचना आनंद बख्शी की।

श्रोताओं, अगला गाना सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में असली नकली फिल्म से। संगीत है शंकर जयकिशन का, शब्द रचना शैलेंद्र की।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम का अगला और आखिरी गाना हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में अभिनेत्री फिल्म से। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का बोल मजरूह के।

0: श्रोताओं, इसी गाने के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
1: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
5: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
6: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और एफएम 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। युवा श्रोता सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार श्रोताओं, शाम के बज चुके हैं 5:15 और आ गए हैं हम एक और खूबसूरत शाम लेकर आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में, जहां मैं हूं आपकी साथी उन्नति
1: और मैं हूं आपकी होस्ट सेजल। और अगले 45 मिनट तक हम रहेंगे आपके साथ। उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा रहा होगा और इस समय आप जहां भी हों मुस्कुराते हुए हमें सुन रहे होंगे और इस शाम का मजा ले रहे होंगे एक चाय की चुस्की के साथ।
0: क्योंकि शाम का ये समय ना दिन भर की व्यस्तता के बाद ना हमारी जिंदगी में थोड़ी सी राहत लाता है और वक्त होता है थोड़ी बातचीत और कुछ अच्छे विचार साझा करने का। और हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे आज के इस सफर में हमसे जुड़ रहे हैं आकर, क्योंकि हर शाम की तरह आज की शाम भी है कुछ खास।
1: और वैसे उन्नति, बाहर मौसम का मिजाज भी काफी दिलचस्प है। कहीं धूप दिन भर बनी रहना तो कहीं बादलों ने आसमान को सजाया, तो वहीं कल शाम की आंधी और तेज हवाओं के बाद गर्मी से थोड़ा राहत का एहसास मिला। तो बेसिकली प्रकृति हमें ये बस ये बताना चाहती है कि हर दिन नया होता है और हर दिन हमारे लिए अवसर के नए दरवाजे खोलता है, और यही मौसम की खूबी है।
0: बिल्कुल। और तो और, प्रकृति के साथ हमारा जितना गहरा रिश्ता होता है जीवन उतना ही सुंदर लगता है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रकृति केवल हमारे आसपास के पेड़ पौधे और नदियां ही नहीं, बल्कि धरती का विशाल जल संसार भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो अक्सर जंगलों, पहाड़ों और नदियों का जिक्र करते हैं, लेकिन महासागर और समुद्र भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। जस्ट लाइक अ बैकबोन टू आवर प्लैनेट, वो धरती को संतुलित रखने में बड़ी भूमिका निभाते हैं और अनगिनत जीवों का घर भी होते हैं।
1: और यही बात हमें आज के विषय की ओर ले जाती है, जो कि समुद्री पर्यावरण और जैव विविधता। नाम सुनते ही आपके मन में नीले समुद्र, रंग बिरंगी मछलियां, विशाल जलराशि, अद्भुत जीवों की तस्वीर जरूर उभर रही होगी। और सच कहें तो ये टॉपिक जितना इंटरेस्टिंग है उतना ही जरूरी भी है। समुद्र के पानी का विशाल भंडार नहीं है?
0: वो जीवन, संतुलन, संसाधनों और अनेक रहस्यों का संसार है। उनके भीतर ऐसी विविधता मौजूद है जिसकी कल्पना करना भी रोमांचक लगता है। और जब हम रहस्यों की बात करते हैं तो उनमें एक रहस्य ये भी आता है कि समुद्र और महासागर के करीब 1,000 से 2,000 मीटर नीचे एक ऐसे नमक वाले झील यानी सॉल्ट वाटर लेक्स होते हैं जिन्हें ब्राइन पूल्स कहते हैं। तो ये कितनी वियर्ड येट इंटरेस्टिंग बात है कि समुद्र या महासागर के सरफेस से इतनी गहराई में भी लेक्स पाए जाते हैं।
1: और इन ब्राइन पूल्स में पाए जाने वाले जीवों की जो सॉल्ट टॉलरेंस होगी वो सरफेस पर पाए जाने वाले जीवों के आगे तो कुछ भी नहीं है।
0: बिल्कुल।
1: और ये तो बस एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात थी जो उन्नति ने हमें बताया, मगर ऐसे न जाने कितने और रहस्य से महासागर ओतप्रोत है। और यही समुद्र और महासागर के जीवों के कारण वो हमारी धरती को हैबिटेबल बना पाते हैं, वो मौसम को प्रभावित करते हैं, अनेक जीवों को आश्रय देते हैं और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
0: बिल्कुल। दोस्तों, साइंटिस्ट का मानना है कि मरीन एनवायरनमेंट हमारे कॉस्मोस यानी हमारे ब्रह्मांड से भी ज़्यादा बड़ा और विस्तृत है, और ज़्यादातर हिस्सा अनडिस्कवर्ड है। इसलिए ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके संरक्षण के बारे में अपना कदम आगे बढ़ाएं। कई बार हम समुद्र से बहुत दूर रहते हुए भी उससे जुड़े होते हैं। हमारी जलवायु, वर्षा, तापमान और यहाँ तक कि जीवन की अनेक प्रक्रियाएं किसी न किसी रूप से समुद्री तंत्र से प्रभावित होती हैं। यही कारण है कि इस विषय को समझना और भी आवश्यक है।
1: और जब हम जैव विविधता की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है जीवों की विविधता। समुद्र में सूक्ष्म जीवों से लेकर विशालकाय जीवों तक एक अद्भुत संसार बसता है। यही विविधता प्रकृति को मजबूत और संतुलित बनाए रखने में मदद करती है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से जब हम लेके आएंगे यूटर्न इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: तो दोस्तों अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। जब हम बात कर रहे थे समुद्री पर्यावरण और जैव विविधता के बारे में, तो मरीन एनवायरनमेंट पृथ्वी के पर्यावरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। धरती का लगभग 71% सतह महासागरों और समुद्रों से ढका हुआ है। समुद्र न केवल जल का एक विशाल स्रोत है, बल्कि वो जलवायु संतुलन और O2 प्रोडक्शन यानी ऑक्सीजन प्रोडक्शन और बायोडायवर्सिटी के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मरीन इकोसिस्टम में जो सूक्ष्म जीव यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के बड़े वेल्स तक अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं।
1: बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पौधों या सूक्ष्म जीवों की विविधता। समुद्रों में बायोडायवर्सिटी अत्यंत समृद्ध है। यहाँ कोरल रीफ्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट, सी ग्रास, एल्गी, मछलियाँ, कछुए, डॉल्फिन्स, शार्क्स और अनेक प्रकार के इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं। कोरल रीफ्स, जिन्हें हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं समुद्र का, क्योंकि वो हजारों प्रजातियों को अपने आश्रय प्रदान करते हैं।

0: लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो समुद्री पर्यावरण अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। प्लास्टिक पॉल्यूशन, ऑयल स्पिल्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ओवर फिशिंग और क्लाइमेट चेंज मरीन बायोडायवर्सिटी के लिए गंभीर खतरे बन चुके हैं। समुद्र में पहुंचने वाला प्लास्टिक कचरा समुद्री जीवों को हानि पहुंचाता है। कई बार कछुए, मछलियाँ और समुद्री पक्षी प्लास्टिक को भोजन समझकर निगल जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है।
1: और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है, इससे कोरल ब्रीचिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे कोरल्स अपनी रंगीन रीफ्स को खो देते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में एसिडिफिकेशन के कारण भी अनेक समुद्री जीवों के अस्तित्व पर संकट मंडरा रहा है। इसके अलावा ओवर फिशिंग के कारण कई मछली प्रजातियों की संख्या में भी भारी गिरावट देखी जा रही है।
0: मरीन एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाना इसीलिए और भी जरूरी हो जाता
1: हाँ
0: है। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया स्थापित किए जाने चाहिए जहाँ जीवों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। प्लास्टिक के उपयोग को कम करना, पॉल्यूशन कंट्रोल के उपाय अपनाना और सस्टेनेबल फिशरीज मैनेजमेंट को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता बन चुका है। साथ ही लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करना भी जरूरी है ताकि वो समुद्रों के संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकें।
1: इट मीन्स कि इन कंक्लूजन ये है कि मरीन एनवायरनमेंट और बायोडायवर्सिटी पृथ्वी के इकोसिस्टम का आधार है। इसके बिना ना तो एनवायरमेंटल बैलेंस संभव है और ना ही मानव सभ्यता का सतत विकास। इसलिए हमें समुद्रों और उनमें निवास करने वाले जीवों के संरक्षण के लिए सामूहिक प्रयास करने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का लाभ उठा सकें।
0: बिल्कुल सेजल, और तुम भी ये भी जानती हो कि जैसे अभी एनवायरनमेंट डे भी बीता,
1: बिल्कुल
0: फिर इसके पहले हमने समुद्र दिवस की भी बात की,
1: हाँ
0: ओशन डे की हमने बात की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपना कंट्रीब्यूशन देने वाली बात है ना, ये हमारे
1: हाँ
0: श्रोताओं तक अच्छे से अब कन्वे हो रही होगी। और अभी जैसे कि तुमने बैलेंस की बात की ना, तो हम भी
1: हाँ
0: अपने श्रोताओं के लिए अपने प्रोग्राम में एक बैलेंस लाते हैं जानकारियों का
1: हाँ
0: और गीतों का, ताकि उनका एंटरटेनमेंट भी होता रहे और जानकारियाँ भी मिलती रहे।
1: बिल्कुल
0: तो मुझे लगता है कि अब उनको एक और गाना सुनवा देना
1: हाँ
0: चाहिए।

0: दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। कल्पना कीजिए कि सामने कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, दर्शकों की निगाहें मैदान पर ही टिकी है और एक खिलाड़ी पूरी गति से दौड़ रही है। विपक्षी उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी फुर्ती और रणनीति हर प्रयास को विफल कर देती है। जैसे ही सीटी बजती है, मैदान तालियों से गूंज उठता है। ये सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि सालों की मेहनत, अनुशासन और संघर्ष का परिणाम था।
1: खेल केवल जीत और हार का नाम नहीं है। खेल हमें धैर्य सिखाता है, संघर्ष सिखाता है, टीम भावना सिखाता है और सबसे बढ़कर ये सिखाता है कि गिरने के बाद भी दोबारा उठना कैसे है। शायद यही कारण है कि खेल के मैदान से निकली हर शख्सियत हमेशा प्रेरणादायक होती है। वहाँ हर पदक के पीछे हजारों घंटों का अभ्यास छिपा होता है, हर उपलब्धि के पीछे अनगिनत त्याग छिपे होते हैं और हर मुस्कान के पीछे संघर्षों का एक लंबा सफर होता है।
0: तो दोस्तों, आइए अपने सेगमेंट प्रेरणा पुंज में हम आज जानते हैं उस व्यक्तित्व के बारे में जिनका जीवन हमें आगे बढ़ने, निरंतर प्रयास करने और अपने लक्ष्य पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। और आज हमारी प्रेरणा पुंज है भारतीय खो खो की प्रतिभाशाली खिलाड़ी निर्मला भाटी।
1: निर्मला भाटी का जन्म साल 1999 में राजस्थान के नागौर जिले में हुआ था। ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी निर्मला का बचपन सामान्य बच्चों की तरह ही बीता। उनके परिवार में खेलों की कोई विशेष पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन बचपन से ही उनमें दौड़ने और खेल कूद के प्रति विशेष रुचि थी। और जब गांव के बच्चे तरह तरह के खेल खेलते थे, तब निर्मला को सबसे अधिक आकर्षित करता था खो खो का खेल।
0: बिल्कुल, लेकिन उस समय गांव में लड़कियों का खेल में आगे बढ़ना आसान नहीं माना जाता था। सामाजिक परंपराएं, सीमित संसाधन और सुविधाओं का अभाव होने के कारण उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन निर्मला ने इन परिस्थितियों को कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया।
1: निर्मला भाटी ने विद्यालय के दिनों में ही खो खो खेलना शुरू कर दिया था। उन्होंने कई बार बताया कि उन्हें खो खो इसलिए भी पसंद था क्योंकि ये एक ऐसा खेल था जिसे खेलने के लिए महंगे उपकरणों की ज़रूरत नहीं होती थी। न क्रिकेट का बैट, न फुटबॉल, न विशेष किट, सिर्फ मैदान और खेलने का जुनून चाहिए था।
0: तो दोस्तों, बताएंगे आपको निर्मला भाटी के जीवन के बारे में और भी बातें, पर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे निर्मला भाटी के बारे में। तो हुआ यूं कि धीरे धीरे उनकी गति, फुर्ती और खेल को समझने की क्षमता ने प्रशिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं से शुरू हुआ सफर जिला, राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया। इसी दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और आगे चलकर चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से भी जुड़ी।
4: लेकिन दोस्तों, निर्मला भाटी का सफर बिल्कुल आसान नहीं था। उस समय भी ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों के लिए खेलों में करियर बनाना सामान्य बात नहीं थी। खो खो खेलने के लिए खिलाड़ियों को खेल किट पहनने पड़ते हैं, जिसे लेकर भी कई सामाजिक आपत्तियां सामने आई। और तो और

0: ऐसा समय भी आया जब उन्होंने खो खो छोड़ने तक का विचार कर लिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, मेहनत जारी रखा।
1: और लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण निर्मला का चयन भारतीय महिला खो खो टीम में हुआ। टीम में वो वजीर की भूमिका निभाती हैं, जो खेल के रणनीति में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनकी तेजी, निर्णय क्षमता और मैच की परिस्थितियों को समझने की योग्यता उन्हें टीम का महत्वपूर्ण सदस्य बनाती है।
0: जनवरी 2025 भारतीय खो खो के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बना। नई दिल्ली में आयोजित पहले खो खो विश्व कप में भारतीय महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और अंततः टीम को फाइनल में पहुंचाया। फाइनल में नेपाल को 78-40 से हरा कर खिताब जीता।
1: इस पूरे टूर्नामेंट में निर्मला भाटी का प्रदर्शन असाधारण रहा। उनकी रणनीति और निरंतरता ने उन्हें प्रतियोगिता की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल कर दिया। टूर्नामेंट समाप्त होने पर उन्हें बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाली वो राजस्थान की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला खो खो खिलाड़ी बनी।
0: उनकी ये सफलता ने समाज में बेटियों के प्रति सोच बदलने का काम किया। कई परिवार जो पहले लड़कियों को खेलों में भेजने से हिचकिचाते थे, अब उन्हें प्रेरणा के रूप में देखने लगे।
1: और आज साथियों, निर्मला भाटी का जीवन केवल खेल के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर उस युवा के लिए प्रेरणा है जो अपने जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहता है। आज के समय में बहुत से युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ऐसा तो है, तो कई बार हमें असफलता भी मिलती है, कई बार उम्मीद जैसा हम करते हैं वैसे हमें परिणाम भी नहीं मिलते हैं, कई बार हम हार भी मान लेते हैं, मन करता है कि छोड़ दें, लेकिन ऐसे समय में निर्मला भाटी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि सफलता कभी भी एक प्रयास की मोहताज नहीं होती। और दोस्तों, हमारी हार तो तब होती है ना जब हम प्रयास करना छोड़ दें।
0: बिल्कुल साथियों, अगर आपके सपने बड़े हैं तो चुनौतियां भी बड़ी होंगी। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लीजिए मंजिल भी उतनी ही मूल्यवान है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए किसी परीक्षा, किसी परिणाम या किसी असफलता से डरिए मत। आज जो प्रश्न पत्र आपको कठिन लग रहा है, वही कल आपकी सफलता की कहानी का एक छोटा सा अध्याय बन जाएगा।
1: तो आइए, निर्मला भाटी के जीवन से प्रेरणा लेते हुए हम भी ये संकल्प लें कि चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम अपने सपनों का पीछा करना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जो थककर रुकते नहीं है, बल्कि रुक कर फिर चल पड़ते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो इसी सोच के साथ अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं यू टर्न।

0: सेजल, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आज का जो हमारा युग है ये टेक्नोलॉजी में और विज्ञान में, ये तकनीक का युग है एक तरीके से, इंटरनेट सोशल मीडिया से हम सब हर वक्त हमेशा घिरे रहते हैं, तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं एक जो चीज़ है जिससे हम पर्सनली जुड़ा करते थे उससे हम दूर होते जा रहे हैं, और वो है बुक्स।
1: बिल्कुल। अब भाई बुक्स की याद दिलाइए, तो याद है वो समय जब हम स्कूल्स में होते थे या फिर कॉलेज टाइम में भी लाइब्रेरी का एक पीरियड होता था ना?
0: बिल्कुल, हमारे स्कूल में, मेरे भी स्कूल में ऐसा लाइब्रेरी का पीरियड होता था, और पूरे हफ्ते हम उस लाइब्रेरी के पीरियड के लिए कितना एक्साइटेड होते थे।
1: और ये रहता था, सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी ये रहती थी वहां जाकर के ये बुक पढ़नी है।
0: हाँ,
1: स्पेशली मतलब ये रहता था कि एक, मतलब मेरे साथ तो यही होता था कि अगर मैंने कोई बुक पढ़ी तो उसको अगर वो नेक्स्ट डे पीरियड होगा तो उसको आगे कंटिन्यू करना है, और वो क्यूरियोसिटी जो एक हफ्ते में रहती थी ना कि अब आगे क्या होगा, तो वो अलग ही था।
0: बिल्कुल। तो और मतलब ये भी होता है ना कि हम जो है वहाँ पर कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें ये चॉइस दे देते हैं कि आप अपनी चॉइस की बुक्स जो है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, तो फिर हमारे पास इतना पूरा बड़ा सा कलेक्शन होता था कि आप इनमें से अपनी फेवरेट बुक ले लीजिए और फिर उसे जो है पढ़िए। तो ऐसा नहीं लगता कि हम उस चीज़ से, वो जो बुक रीडिंग वाली हैबिट है, चाहे वो स्टोरी बुक्स वाली हो, चाहे कोई वो इंसाइक्लोपीडिया हो, कोई यूनिवर्स से रिलेटेड, तो उन सारी बुक रीडिंग वाले जो हैबिट्स है उससे हम अलग हो

0: होते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हमें हमारी कॉम्पिटिटिव बुक्स के अलावा कोई बुक्स नहीं दिखती है ना।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें बुक्स उसके हट करके भी थोड़ी बहुत पढ़नी चाहिए, जस्ट बिकॉज कि हमारा माइंड भी रिफ्रेश हो जाएगा, हमें और चीज़ें पता चलेंगी जो चीज़ें नहीं शायद जानते, या कोई स्टोरी बुक हो या किसी की भी, तो एक कह सकते हैं कि एक माइंड रिफ्रेशमेंट हो जाएगा। प्लस
0: हाँ, और एक ये भी होगा ना कि जैसे मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है ऐसा कि हम जैसे सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह स्क्रॉल करते हैं,
1: हाँ
0: वीडियोस देखते हैं, तो उससे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना कहीं थोड़ा नैरो होता जा रहा है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन वही अगर हम बुक्स पढ़ेंगे और मतलब ऐसी बुक रीडिंग वाली हैबिट बना के रखेंगे, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है ना वो वाइड होता जाएगा।
1: और सोचो ना, बुक्स जिसमें हमारे इतिहास, हमारे विज्ञान, मतलब हम वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारी जड़ों से ही जोड़ता है। हमारी संस्कृति पहले कैसी थी जिसे हमने नहीं देखा था, बट हम जब वो बुक्स में पढ़ते हैं तो एक्चुअल में पता चलता है ना कि हम कहाँ से बिलोंग करते थे।
0: और कोई भी चीज़ ना ऐसा ह्यूमन

0: हम वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें हमारी जड़ों से ही जोड़ता है, हमारी संस्कृति पहले कैसी थी जिसे हमने नहीं देखा था, बट हम जब वो बुक्स में पढ़ते हैं तो एक्चुअल में पता चलता है ना कि हम कहाँ से बिलोंग करते थे।
1: और कोई भी चीज़ ना, ऐसा ह्यूमन नेचर होता है कि हमें कोई भी चीज़ ऐसी स्टोरी के फॉर्म में बताई जाती है ना, तो वो
0: हाँ
1: ज़्यादा जल्दी याद होती है।
0: हाँ
1: तो
0: तो
1: कैसे कितनी जल्दी हमारा ट्रांजिशन वो बुक रीडिंग से मतलब मोबाइल्स की
0: हाँ
1: तरफ हो गया और सोशल मीडिया की तरफ हो गया ना।
0: बिल्कुल। तो मुझे ऐसा तो लगता है, और मैं क्या, मैं ये चीज़ तो करूँगी कि मैं अपने दोस्तों को भी कह रही हूँ कि आप भी ये चीज़ें ज़रूर कीजिएगा, कि अगर आपके पास, मानती हूँ कि कॉम्पिटिशन्स बहुत हैं और आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ हटकर सिलेबस से पढ़ेंगे तो वो जो पढ़ा है ना वो ज़्यादा जल्दी याद हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी टिप है। और ऐसा भी हम मतलब ऐसा भी कहा जाता है ना दैट बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमंस।
0: हाँ
1: तो वो इसीलिए नहीं कहा जाता, जैसे एक कोई अच्छा गाना होता है, जैसे तुम्हारा ही कोई फेवरेट गाना
0: हाँ
1: होगा तो उसे सुन के ऐसा लगता है कि उससे तुम कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट हो रही हो,
0: हाँ बिल्कुल।
1: खुद से कहीं हम मिल रहे हैं। तो वैसे ही बुक्स भी होती है, कई सारी बुक्स ऐसा भी ऐसी भी होती है जिसको पढ़ करके हमें ऐसा लगता है कि वो हमें खुद से कनेक्ट करेंगी।
0: हाँ ये चीज़
1: जो
0: तो है।
1: पार्ट हम अपना कहीं पे ऐसा लगता है कि खो दिए हैं ओवर द इयर्स,
0: हाँ
1: उसको देख करके हमें ऐसा लगता है, वो बुक को पढ़ के ऐसा लगता है कि अरे ये तो हमें मतलब हमें फ्लैशबैक में लेके जा रही है, ऐसा कोई टाइम मशीन जैसा होता है।
0: हाँ तो बेसिकली दोस्तों, बुक्स पढ़नी चाहिए। बुक्स से हमें, मोबाइल्स का दौर है वो चल रहा है, लेकिन लेकिन हमें अपनी बुक से कनेक्टेड रहना चाहिए, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो कोई स्टोरी बुक्स हो, चाहे वो किसी राइटर की हो, कुछ ना कुछ हमें नया ज़रूर सीखने के लिए मिलेगा। और वो कहते हैं ना कि हर दिन कुछ नया सिखाता है, तो फिर भाई हम क्यों ना कोई नई बुक से कुछ नया सीखें, कुछ हट कर जो जीवन में आगे चल कर काम भी आए
1: बिल्कुल
0: और हम किसी को कोई चीज़ और बता भी सके, शायद
1: बिल्कुल
0: उसे ना पता हो हमें पता हो, तो इससे क्या होगा ना कि अगले वाले को भी क्यूरियोसिटी होगी तो वो भी बुक पढ़ना चालू करेगा, तो उसे भी फिर, उसे अगर कुछ पता चलेगा तो वो बताएगा।
1: और जैसा कि अभी तुमने बोला ना कि कुछ चीज़ें हमें पता हो और कुछ आपको
0: हाँ
1: ना पता हो, तो उसी कड़ी में ना हमारा एक ये प्रश्न और उसका
0: हाँ
1: जवाब देने वाला भी एक होता है,
0: हाँ
1: जिसमें हम अपने श्रोताओं से पूछते हैं एक सवाल और
0: हाँ
1: उसका जवाब हम उन्हें देते हैं अगले एपिसोड में। तो उसी में हमारा कल का सवाल क्या था?
0: कल का हमारा सवाल था कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था, और उन्नति और दोस्तों इसका सही उत्तर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उन्नति अब आज का भी प्रश्न बता ही दो।
1: बिल्कुल, तो हमारा आज का प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग से संबंधित है? और आपका जो उत्तर है वो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जो कि है yuvvaniald@gmail.com, और हमें मैसेज कर सकते हैं हमारे नंबर पर जो कि है 8004926250 पर।
0: तो भाई उन्नति, घड़ी भी कह रही है कि सेजल और उन्नति के जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन उससे पहले एक गीत सुनवाया जाए।
1: बिल्कुल।

0: दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा और उन्नति और मैं आपसे मिलेंगे फिर कल नए टॉपिक्स और नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए
1: नमस्कार।

0: युवा श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिनों की निरंतर सेवा के साथ श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, केंद्रीय मंत्रियों और विश्व नेताओं ने श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक नई दिल्ली में जारी है। ये बैठक एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर आयोजित की गई है। गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्रियों सहित भाजपा के शीर्ष नेता बैठक में शामिल हैं। बैठक में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दर्शाता है और कई प्रतिबद्धताओं तथा उपलब्धियों को रेखांकित करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया। उन्होंने बताया कि इन प्रस्तावों में युवाओं के लिए कार्यक्रमों का विशेष उल्लेख किया गया है।
2: प्रधानमंत्री जी युवा शक्ति को भारत की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास, स्टार्टअप इंडिया, इनोवेशन, डिजिटल इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, उद्यमियता और फिटनेस को बहुत एक एम्फेसिस के साथ कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए, जिसमें भारत को एक बहुत बड़ी खेल शक्ति के रूप में उभरा है, वर्ल्ड के 3 लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स के रूप में उभरा है। मिशन चंद्रयान और वैज्ञानिक क्षमता हमारी देश की इस कार्यकाल में बहुत बड़ी है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के चरण 2A को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद सुष्मिता देव का राज्यसभा से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। लगभग एक सप्ताह से तृणमूल कांग्रेस के अंदर बढ़ती आंतरिक कलह के बीच पार्टी के अब तक 2 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। सुश्री देव ने इस्तीफे के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा से नई दिल्ली में मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। ये उपग्रह संकेतों की प्राप्ति और ट्रैकिंग में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ भ्रामक सिग्नल भेजकर दुश्मन की स्थिति निर्धारण क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इन प्रणालियों के शामिल होने से अधिक जोखिम वाले वातावरण में भारतीय नौसेना के जहाजों की संचालन सुरक्षा में वृद्धि होगी। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियो पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए आज के शेष और कल के कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 6:30 पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे मुशर्रफ अली और साथियों से लोकगीत और देवदत्त तिवारी से नीति वचन। 7:31 पर सुनिएगा कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। रात 8:00 चित्रपट संगीत, 8:30 पर सबरस, रात 10:00 फिल्म संगीत। 10:30 उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन सुनिएगा। ये थी आज के शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब एक नजर हमारे कल के कार्यक्रमों पर। कल सुबह 6:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम भक्ति संगीत का आराधना। 6:35 पर कृषि जगत कार्यक्रम के अंतर्गत कोमल सिंह यादव से की गई बातचीत सुनिएगा, बागवानी फसलों की व्यावसायिक खेती।

6:45 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर अमित सिंह की वार्ता होगी, चर्म रोग और आयुर्वेद। 7:00 सुनिएगा श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे 7:30 पर उस्ताद अमीर खां का ख्याल गायन, दिन में 12:15 पर पंडित अनोखे लाल का तबला वादन और रात 10:30 पर गौरी शंकर का क्लैरियोनेट वादन। 8:45 पर नमस्कार प्रयागराज, प्रस्तुति सुंदरम तिवारी की। सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी 9:50 पर उमा बनर्जी और 7:45 पर यशस्वी गुप्ता। 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक माधुरी, कलाकार होंगी कुमकुम वैश्य और मेहरदीन यादव और साथी। एक बार फिर से बता दें, 10:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम लोक माधुरी, कलाकार होंगी कुमकुम वैश्य और मेहरदीन और साथी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT 10:30 पर। 11:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। 12:30 पर आपकी पसंद, प्रस्तुति मधु कुमार की। कल दिन में 1:15 पर पनघट कार्यक्रम में ग्रामीण बहनें सुनेंगी रेणुराज सिंह से लोकगीत और सत्यभामा मिश्रा से की गई बातचीत, गांव की पुरानी परंपराएं कितनी जरूरी। 2:30 पर लोकगीत सुनिएगा मुंशीराम बहादुर, सावित्री श्रीवास्तव और धर्मशंकर दीक्षित के स्वर में।

कल शाम 5:15 बजे युवाणी कार्यक्रम में प्रोफेसर धनंजय यादव से की गई बातचीत सुनिएगा। युवाओं के करियर ग्रोथ में किस प्रकार सहायक नई शिक्षा नीति। 6:30 बजे पंचायत घर कार्यक्रम में ग्रामीण भाई सुनेंगे बरमदीन यादव और साथियों से लोकगीत। शीतला प्रसाद और राम अवतार से सुनिएगा मेरी खेती मेरी बात के विषय में। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत 7:31 पर डॉक्टर विनम्र सेन सिंह का काव्य पाठ सुनिएगा। कल रात 8:00 बजे चित्रपट संगीत, 8:30 पर सबरस और 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम कहकशा। रात 10:00 बजे फिल्म संगीत। ये थी कल के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

0: नेतृत्वेन राष्ट्राय प्रधानमन्त्रिवर्यस्य निरन्तरसेवायाः ऐतिहासिकं सोपानं चर्चितः अस्ति तथा च अनेकान् प्रतिबद्धतान् संकल्पान् च निरूपयति।
1: जो बहुत ही साधारण परिवार से आए और जिन्होंने अपने कार्य से, अपने विचार से और अपने नेतृत्व के साक्षी रूप से जिस तरह से देश को आगे किया, उनको 140 करोड़ देशवासियों ने उन पर विश्वास जताया और एक ऐसा कीर्तिमान बनाया जो कि भारत के लोकतांत्रिक पैमाने पे एक बहुत बड़ा कीर्तिमान।
0: श्री वैष्णव अवदत् यत् प्रधानमंत्रिणा नरेन्द्र मोदिना भयोत्पादनस्य विरुद्धं कठोर कार्याचरणमपि स्वीकृतम्।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आतंकवाद के विरोध में कठोर कदम उठाए, सीमा पार आतंकवाद के कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर के रूप में पाकिस्तान के उन क्षेत्रों को भी टारगेट किया जो पहले अकल्पनीय थे और पाकिस्तान के साथ दशकों पहले किए गए अन्यायपूर्ण सिंधु जल समझौते को भी निलंबित स्थिति में रखा गया।
0: श्री वैष्णव अवदत् यत् अद्य मंत्रिमंडलेन अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A इत्यस्य विस्ताराय 179,200 कोटि रूप्यकाणां व्ययः स्वीकृतः। सः अवदत् यत् अस्मिन् 6 किलोमीटर सुदीर्घः मेट्रो मार्गः 5 स्थानकैः युक्तः अस्ति। मंत्री अवदत् यत् द्वितीय क चरणस्य कार्यान्वयनेन अहमदाबाद गांधीनगरयोः मध्ये 70 किलोमीटर मितं यावत् सक्रियं मेट्रो रेल जालं भविष्यति।
1: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ईंधन मंत्री हरदीप सिंह पुरी वर्य अद्य अवदत् यत् देशे संकुचित प्राकृतिक ईंधनस्य CNG इत्यस्य अभावः नास्ति। सः अवदत् यत् सर्वकारः गृहेषु पाइप्ड नेचुरल गैस PNG इत्यस्य आपूर्तिं विस्तारयितुं तथा च LPG संपर्कान् PNG संपर्करूपेण परिवर्तयितुं प्रयत्नाः प्रचलन्ति।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: अफगानिस्तान देशस्य कुनार खोस्त पत्तिका इत्येतेषु प्रान्तेषु पाकिस्तानी सैन्य वायु आक्रमणे न्यूनातिन्यूनं 13 जनाः मृताः। तेषु 11 बालकाः आसन्। एकस्मिन् वक्तव्ये तालिबान पक्षस्य प्रवक्ता जबीहुल्ला मुजाहिद इत्यनेन आक्रमणस्य निन्दां कृत्वा नागरिक गृहाणि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं ह्यः रात्रौ अभवत् इति उक्तम्। सः अवदत् यत् पाकिस्तानस्य सेना पुनः एकदा अफगानिस्तान देशस्य वायुक्षेत्रस्य उल्लङ्घनं कृतम्, अपि च तत् मानवीय अपराधम् उक्तम्। पाकिस्तान अफगानिस्तान देशयोः मध्ये गत कतिपयेषु मासेषु वर्धमान द्वन्द्वस्य मध्ये एषा नवीनतमा घटना अभवत्, यत्र पुनः पुनः गोलिका प्रहारे नागरिकानां मृत्योः चिन्ता वर्धमाना अस्ति। अन्त्यक्रीडावार्तायाम् ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य PV सिंधु तन्वी शर्मा इत्येतयोः युगलं सिडनी नगरे महिला एकल क्रीडायाः द्वितीये चक्रे प्रविष्टम् इति वार्ताः।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। ग्रामीण भाई सुने अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर।

0: इतना ज़रूरी बा, आगे आवे वाला जोन आपका मानसून बाटे, आगे आवे वाली जोन बारिश बाटे, भैया ओकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे लिया जाए।
1: हाँ भैया,
0: अब भैया आगे धान का खेती जोन बा लगी बाटे, अब भाई धान का तैयारी किसान भाई कई रहा है भाई, जोन बेहन वेहन पड़े के बा भाई ओकर तैयारी चलत बा, खेते में पानी उनी लगाई दी है, दो चार दिन में बेहन लग जाए, अब भाई वही हिसाब से रोपाई हुए।
1: हाँ, अबे भैया खेत की गुड़ाई कर
0: हाँ,
1: लेना,
0: हाँ, हाँ,
1: हवा पानी लग जाए ताकि बारिश हो भैया,
0: बिल्कुल
1: खेत
0: बिल्कुल
1: में भैया
0: और
1: बांधे रहे अपन।
0: बिल्कुल रघु भैया मेड़ बांधे रहें। साथे साथ अगर किसान भाई देखा कुछ ऐसे किसान भैया हैं जो कि अभी भाई तैयारी नहीं कर रहा है, तो
1: बिल्कुल।
0: अगर 10-15 दिन बाद का समय आपके पास बाटाई तो भैया खेत का गहरी जुताई कर लें।
1: बिल्कुल
0: गहरी जुताई से न केवल आपके खेत का नमी बरकरार रखे के क्षमता बढ़े, बल्कि जोन माटी बाटाई
1: हाँ
0: आपके
1: भैया,
0: खेत में वो भुरभुरी हो जाए,
1: हाँ कैसे भैया,
0: और
1: मैं ज्यादा ज्यादा पानी सोखे
0: ज्यादा ज्यादा जब
1: तो।
0: गहरी जुताई कर ले ही आप, तो भैया जब उलट पलट दे ही होगा तब माटी में जोन आपका तो पोषक तत्व तो होते हैं
1: बिल्कुल।
0: भाई, ओकर सोखाई की क्षमता बढ़ जाता, नमी बरकरार रखे की क्षमता बढ़ जाता, और जो आगे आवे वाले बारिश बाटे
1: हाँ,
0: भाई उम्मन ज्यादा ज्यादा पानी आपका सोखाई की क्षमता आपके खेत में
1: बनी रहे।
0: बढ़ी रहे बढ़ जाए। तो हम तक यही कहब कि भाई जोन किसान भैया हरे भाई बेहन नहीं लगावा चाहत हैं 10-15 दिन में, वो ई काम कर लें। और दूसर जोन जरूरी चीज तू बताया ना कि भाई मेड़ बंदी जरूर कर लें।
1: हाँ
0: अब मेड़
1: भैया,
0: अगर बांध लें तो जहां कहता हूँ मान लो मेड़ टूटा बाटे भाई, मेड़ डांड ऐसी चीज बाटे कि टूट जाता है, तो
1: हाँ
0: भाई ओकर अगर बांध लें तो भाई धान का देखे जाना था कितना पानी लगत है,
1: हाँ भैया,
0: और धान अगर भाई पानी ना रोके आपका खेत और पानी बही के दूसरे खेते में जाए, तो भाई तो कहा गवा बना कि भाई अगर पानी बही के दूसरे खेत में जाता तो आपन खेत का जोन ताकत बाटे
1: हो सकता तो चला
0: पोषक
1: जाता।
0: तत्व बा वो चला जाता,
1: हाँ
0: तो भाई ये चीज का ध्यान रखें कि भाई मेड़ डांड जोन बाटे टूटी बा ओका बांध लें।
1: कहते
0: अब
1: किसान भैया आ रहे हैं, अधिकतर जो है खेतों की माटी की जांच करा रहे थे ना, अब
0: हाँ
1: तेज बारिश भाई भैया सब बहा लेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तीसर चीज ये बात है कि भाई जोन भैया कुछ किसान भैया ऐसा हैं कि भाई बाग बागवानी का काम करते हैं, अब भाई व्यवसायिक दृष्टि से भी पौधा लगावत हैं पेड़ के लगावत हैं,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: भाई जोन भैया ऐसा हैं तो भाई 10-15 दिन जोन ये बात बाटे मानसून के पहले
1: हाँ हाँ
0: भाई बागवानी की अगर तैयारी करे के बाटे तो गड्ढा जोन खने के होत है भाई, पौधा अगर आपके रोपे के बाटे,
1: हाँ
0: वृक्ष अगर आपके रोपे के बाटे, बहुत किसान अमरूद का खेती कर रहा है, आंवला का पेड़ लगावा
1: हाँ
0: चाहते हैं, आम का पेड़ लगावा चाहते हैं, अमरूद का पेड़ लगावा चाहते हैं,
1: हाँ हाँ
0: तो जोन सबसे उपयुक्त समय बाटे वो भाई बात की जब आपको बारिश हुई लागे तब आप पेड़ लगे, मगर उससे पहले तैयारी कैसे की जाए कि भाई गड्ढा खन लिया जाए, गड्ढा अगर कई लें भाई गहरा गड्ढा कई के उमन जोन गोबर का खाद होता
1: अच्छा
0: ओका
1: भैया,
0: उमन डाल दें, पानी डाल दें,
1: अच्छा
0: अब वो सड़ाई लागे साथ में उसमें दवाई डाल दें।
1: अच्छा
0: अब
1: अच्छा
0: जब आप 15 दिन बाद जब बारिश हुई लागे तो उमन पौधा लगाई ही तो पौधा का विकास
1: तेजी से हो।
0: संभावना अच्छी हो जाए और पौधा आपका अच्छे से पकड़ ले जमीन,
1: बिल्कुल
0: तो
1: सही कहा
0: ये
1: भैया।
0: बात का ध्यान रखी तो निश्चित तौर पर भाई जोन आमदनी आपके मिले के चाहे जोन आप लागत लगाए हैं भाई लागत से अच्छी आपका आमदनी हो या भाई अच्छा खासा आपका
1: हाँ
0: मुनाफा है।
1: कैसे भैया, पेड़ जो है अच्छे से माटी खाद पाई, अच्छे से पानी पाई, तबे भैया बड़ी है,
0: हाँ बिल्कुल
1: तो किसान
0: भैया,
1: भैया इस सब के ध्यान दें।
0: माटी और खाद का जो खाद पानी की जो बात की है ना, अब खाद पानी सबसे ज्यादा दुश्मनी कैसे होता भैया कि भाई जो आपका खेते में खरपतवार उगावत हैं भाई,
1: हाँ
0: खरपतवार अगर आपकी फसल के साथ उगी रहा है तो
1: अच्छा
0: भाई
1: अच्छा
0: जोन माटी जोन पानी देबा जोन खाद देबा वो खरपतवार के लगे, तो
1: बिल्कुल।
0: सबसे बड़ी समस्या किसान भाइयन के साथ आवत है कि भाई खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाए। अब खरपतवार का नियंत्रण बिना बहुत प्रकार का तरीका बाटे, पहला तो भाई यांत्रिक विधि से कई लिया जाए,
1: अच्छा
0: या तो
1: अच्छा
0: हाथे से निराई गुड़ाई अगर कई तरह है संजय सवेरे अगर अपने खेते डाणे जात है
1: हाँ, बीच
0: तो भाई
1: बीच में एकदम
0: हाथे से
1: देखा
0: ही
1: था
0: कई
1: अपन।
0: निराई गुड़ाई हाथों में कई ला, कुछ ऐसा मशीन आवत हैं भाई कि जे कि आप लेके जाओ और साथे साथ ओकर क्या नाम बा जोन खरपतवार रहते हैं ओकर निकाल के वो काट चला चली जाती हैं।
1: हाँ,
0: दूसर विधि बाटे कि बहुत तरह के दवाई आवत हैं
1: अच्छा
0: भाई,
1: अच्छा
0: ओकर छिड़काव अगर खरपतवार नासी जोन होते हैं ओकर अगर छिड़काव कर देबा तो
1: अच्छा
0: भाई
1: भैया,
0: ओहू से नष्ट हो जाती हैं। तीसर चीज जोन अभी अनुसंधान हो रहा बाटे और वैज्ञानिक भैया विशेषज्ञ भैया बतावत हैं कि भाई मल्चिंग के बारे में बतावत हैं,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: मल्चिंग ये चीज बाटे कि भाई अगर जहाँ जहाँ आपका पौधा बाटे ओका छोड़ के
1: अच्छा
0: अगर भाई जोन बाकी बाकी बची जगह बाटे ओमन या तो पन्नी एक आवत है पन्नी
1: अच्छा
0: बिछाई दें, या तो मल्चिंग पन्नी के स्थान पर भैया आपका पत्ता होता पत्ता
1: अच्छा
0: के बिछाई दें, उसे का होए कि भाई दो दो फायदा होए, एक तो खरपतवार नियंत्रण हो जाए आपके जोन इधर उधर के पौधा होते हैं वो उगही ना,
1: अच्छा
0: दूसर चीज ये बाटे कि जो नमी बा
1: हाँ
0: भाई माटी की जो नमी बा वो बनी रहे भाई,
1: अच्छा
0: जोन उड़ जाता पानी भाई बार बार आपके सिंचाई करे के पड़ता उसे आप बच जाइ वो आपका अलग से जोन खर्चा आवा।

0: पंचो राम राम।
1: का भैया सूर्यमन का हाल चाल बटे?
0: भैया देखो रघु, हाल चाल सही बाटे और जैसन गर्मी पड़त बाटे।
1: हाँ
0: भाई गर्मी से बच बचाई के भाई खेती किसानी का काम जोन बा ना वो चलत बा। अब रघु भैया जोन गर्मी के जब बात होत है तो भैया एक ही चीज आवत है कि भाई कैसे खेती किसानी का काम किया जाए, पर जरूरी चीज ये बात बा कि इस समय

0: होता उसे आप बचा रहे हैं।
1: भैया वो पन्नी या पत्ता बिछा दिए तो माटी जो गिली रहती है नमी बनी रही है, गीली रही है।
0: तो भैया देखा ये तरह के जो चीज बांटे ना, ये चीज अगर कहीं वैज्ञानिक भैया विशेषज्ञ भैया तमाम तरह के जानकारी देते हैं, जानकारी लेके अगर खेती किसानी किया जाए तो निश्चित तौर पर आपका जो लागत बांटे लागत कम होए, आमदनी बढ़े और भाई खेती किसानी में आपके मुनाफा है।
1: मुला भैया देखा हम कहा भाई समय धूप बहुत तेज हो तो बहुत बटे तो किसान भैया अरे अपन खेते काम जो सांझ जो सवेरे करें।
0: अरे तो भैया देखा दिनवा में तो निकले ना ही पड़ा था और निकल जाता देखा कितना दिक्कत होता और खेती किसानी का काम का किया जाए भाई दिने में बहुत जने होते ना कि दिने में भाई पाएन और जाए नल चलत बाटे वही समय सिंचाई कही दिए
1: बिल्कुल
0: और जितना वो फायदा ना करे उतना ज्यादा तो हर नुकसान कही दे।
1: भैया देखा जर को लू लग गया भैया स्वास्थ्य
0: लुओ लग जाता। दूसरी चीज ये अगर उमन सिंचाई कही दे ना दोपहरिया में तो जो पेड़ पौधा रही सब सूखी जाएंगे। तो रघु भैया जो ना आप बात बताएं ना किसान भाई निश्चित तौर पे के सुने हुए ही और भाई ऐसे भाई सीख ले के जो संजा सवेरे कहा ना तो संजा सवेरे ही किसानी खेती किसानी का काम कराएं।
1: बिल्कुल हम कहा भैया आ रहे हैं धूप में ना निकले ज्यादा है बहुत जरूरी हो तब निकले भैया।
0: बिल्कुल रघु भैया धूप में देखा धूप में तो पहली चीज यही बात है कि भाई धूप में निकला बहुत जरूरी हो तो आपके धूप में निकले के बाद भाई पानी उनी पी के निकला। अब तो देखा भैया तमाम तरह हाँ पानी लिए रहा ऐसा कपड़ा ओढ़ना पहन के निकला कि भाई आपके लूक न लगे।
1: बिल्कुल
0: दूसरा चीज बार रघु भैया की जैसे मौसम बाट आपका तमाम ककड़ी बा खीरा बा उकान तरबूज बा खरबूज भाई जो भाई फरात बाट एक लाभ उठावा एक खाई पी के निकलबा
1: शरीर में फल बाटे हाँ, खात रहा
0: बिल्कुल शरीर में पानी कमी ना हो और भाई खेती किसानी का काम भी अच्छे से होत रहा। हम कही कि रघु भैया हमार त्योहार देखा बात बत कही तो होत रहा था तमाम तरह का हम सब बात करत रही था।
1: बिल्कुल
0: पर हम सब जब अपने पंचायती में आई था तो किसान भैया हरे लखत रहा था कि भाई रघु सुमिरन आवा है कुछ गीत गवनई लेके आवा हुई तो का बा आज गीत गवनई में बतावा तनिक।
1: भैया देखा आज पंचायती में अपन एक तो बातचीत बांटे
0: अच्छा अच्छा
1: बाबा विधि से धान की रुपाई है
0: अच्छा
1: डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से रितेश कुमार शुक्ल की बातचीत साथ ही साथ भैया एक तो नीति वचन भी बांटे
0: अच्छा
1: देवदत्त तिवारी के वो सुना जी
0: बोला
1: भैया देखा पंचायती में रिवाज बांटे जब जब कुछ गीत
0: गाते
1: कुछ नहीं लगा था
0: शुरुआत ही हो तो ढोल मजीरा के साथ होता हम तो हम कही की लोग गीत बांटे मुशर्रफ अली और संघातिम का पहले सुन लिया जाए फिर बात बत कही
1: सुनवा दे भैया।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: अरे भाई, रेलवे फाटक बंद है तो रुक जाओ, क्यों रिस्क ले रहे हो? ट्रेन कभी भी आ सकती है, पहले उसे जाने दो, फिर आराम से पार कर लेना।
4: रेलवे फाटक बंद होने पर रेल पटरी पार ना करें, ट्रेन को जाने दें और बैरियर खुलने की प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही रेलवे लाइन पार करें। याद रखें, नियमों का पालन ही सुरक्षित यात्रा की पहचान है।
5: ये सूचना उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
6: हाँ भैया, सूर्यमन देखा लोकगीत तो है भैया, मुशर्रफ अली और साथी के, साथ ही साथ भैया देखा संदेश भी हुआ।
7: बिल्कुल बिल्कुल भैया, और साथ में देखा आज बुधवार के दिन बाटे। अब बुधवार के दिन भैया अपने पंचायती में हम सभी नीति वचन लेके आई था भाई, जोन तमाम महापुरुष भवा हैं उनके जीवन से जुड़ा जोन प्रेरक प्रसंग बाटे भाई, उसे भाई अपने समाज में भाई अपन समाज एक सीख ले सकता और भाई आगे बढ़ सकता। तो भैया आज अपने नीति वचन में देवदत्त तिवारी भैया देखा का लेके आवा है, आपको सुना जाए, आपो सुने और हमारे पंच भैया सुने।
6: सुनवा दे भैया,
8: आज नीति वचन में चर्चा करेंगे समाज कैसा होना चाहिए, समाज में राजा कैसा होना चाहिए और प्रजा कैसी होनी चाहिए। समाज की वास्तविकता को बताते हुए नीति वचन ये कह रही है

धन शक्त जिसका है, वंश कुल उसका है, बंदी जन उसका ही करते हैं कीर्तिगान, उसे उच्च माने सब, सामने झुकाए सिर, धर्म नए निपुण बनाते हैं यही विधान, अनुमान सत्य नहीं घोर भ्रम मूलक है, और सत्य क्या है उसका है क्या प्रमाण, ग्रास डाल देता जो उसी के तलवे चाट लेता, मेरी समझ में यह समाज है स्वान के समान। आज के समाज में दिखाई पड़ता है कि जिसके पास पैसा है उसे गुणगान करते हैं लोग, उसे उच्चमाने सब, सामने झुकाए सिर, उसे लोग ऊंचा मानते हैं, उसके सामने सिर झुकाते हैं, धर्म ने निपुण बनाते हैं यही विधान, और हमारे नित्य की भी यही कह भी रहे हैं, अनुमान सत्य नहीं घोर भ्रम मूलक है, लेकिन इसका इसकी वास्तविकता कुछ अलग है। सत्य क्या है और उसका है क्या प्रमाण, समाज का सत्य क्या है और उसका प्रमाण क्या है, ग्रास डाल देता जो उसी के तलवे चाट लेता, ग्रास में टुकड़ा, जो टुकड़ा फेंकता उसे गुणगान होता है, मेरी समझ में ये समाज है स्वान के समान। आज का समाज कुत्ते की तरह है, जैसे उसके सामने टुकड़ा फेंक दीजिए तो वो पूछ पीछे पीछे हिलाएगा, जबकि समाज ऐसा नहीं होना चाहिए, समाज आदर्श होना चाहिए, और धनाढ्य आदमी की कीमत हो ये जरूरी समाज में नहीं है। और एक बात और, तुलसी भी इस बात को स्वीकार करते हैं, स्वार्थ लाय करें सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, ये समाज स्वार्थ बस लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, समाज में रहने वाले स्वार्थ बस एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सुर नर मुनि सब कर यह रीति, सुर देवता नर मनुष्य मुनि सबका यही काम हो गया है, जबकि समाज में रहने वाले लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए। आप याद रखो, यदि समाज अच्छा नहीं होगा तो लोगों की स्थिति क्या हो जाएगी, जरा यह सोच लीजिए। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, वनिक को न मणिक, चाकर को न चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध्य मानस सोच बस, कहें एक एकंश हो कहां जाए काकरी। खेती न किसान को, किसान खेती ठीक से नहीं कर पाएगा, भिखारी को न भीख बली, और लोग भिक्षुक को भीख नहीं देंगे, वनिक को न वणिक, व्यापारी व्यापार नहीं कर पाएगा, न चाकर को चाकरी, मजदूर मजदूरी नहीं कर पाएगा, जीविका विहीन लोग, लोग जीविका विहीन हो जाएंगे, सीध्य मानस सोच बस सोचेंगे और एक दूसरे से पूछेंगे कहां जाऊं और क्या करूं, ये समाज की वास्तविकता होती जा रही है, इससे बचना चाहिए। एक बात आप लोग जान लीजिए अच्छी तरह से, जिस देश का प्रशासन ठीक नहीं होगा उस देश में, उस समाज में रहने वाली प्रजा की स्थिति क्या होगी, ये भी आप विचार कीजिए। दुसह दुराज प्रजान को, दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख दंद, अधिक अधेरो जग करत मिल मावस रविचंद्र। जिस समाज का राजा दुर्दांत है, दुष्ट है, और उसके कर्मचारी निष्ठुरता काम करते हैं, ऐसे समाज में रहने वाले लोगों की, ऐसे समाज में रहने वाली प्रजा की स्थिति क्या होगी, ठीक वैसे जैसे सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं, अमावस की काली रात पड़ जाती है। सही कहा गया है, दुसह दुजान प्रजान को क्यों न बढ़े दुग्धंद, अधिक अधेरो जकृत मिल मावस रविचंद। याद रखिए आप, नीति वचन हमारा आपको संदेश देता है, साथ साथ अच्छे समाज, अच्छे शासक, अच्छी प्रजा की कल्पना करता है, कामना करता है, और वह बात आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है। जिस समाज का शासक निकृष्ट हो, समाज में रहने वाली प्रजा उसका समर्थन कर रही हो, उस समाज की क्या स्थिति होगी। इन पंक्तियों पर जरा विचार किया जाए, जाका गुरु भी अंधला, जाका गुरु भी अंधला, चेला निरा निरंध, अंधा अंधा ठेलिया, दोनों को पड़ंत। जिसका गुरु मार्गदर्शक शासक निष्ठुर हो और प्रजा भी वैसे अंधी हो, परिणाम क्या होगा, अंधा अंधा ठेलिया, एक दूसरे से संघर्ष करेंगे और दोनों को ही मिलना पड़ेगा, अर्थात दोनों बर्बाद हो जाएंगे। न ऐसा समाज ठीक, न ऐसा शासक ठीक, न वहां कैसी प्रजा ठीक। याद रखिए, नीति वचन आपको जीवन जीने का संकेत देती है, अच्छे समाज की स्थापना पर बल देती है, अच्छे परिवार, अच्छे लोगों का हम सम्मान करते हैं, उसी की एक पंक्ति, स्वार्थ सुकृत न समृथा देख विहंग विचार, स्वार्थ सुकृति न श्रम बिथा देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंछी न मार। स्वार्थ बस एक कीर्ति

लिए, संपत्ति के लिए एक शासक को अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करना चाहिए, उसे प्रजा को देखनी चाहिए, प्रजा की समस्याओं को सुनना चाहिए, प्रजा के दुख दूर करने का प्रयास करना चाहिए। बाज पराए पानी पर तू पंछी न मार। ऐ शासक, ऐ राजा, अपनी शक्ति के लिए, दूसरे के सम्मान के लिए, अपने मान को बढ़ाने के लिए प्रजा से तू कष्ट मत दे, प्रजा पर अन्याय मत कर, प्रजा को दुख में मत झेल। याद रखना आप लोग, नीत वचन का एक संकेत है, नीत वचन का यह संदेश है, समाज आदर्श हो, रहने वाले

0: पता ही न हो और उस समाज की प्रजा को राजा की सच्चाई का पता ही न हो, उस समाज में रहने वाला राजा प्रजा केवल इतना कहा जा सकता है, ऐसे समाज में रहने वाले राजा और प्रजा के लिए केवल इतना कहा जा सकता है, जिस समाज का राजा अंधा, जिस समाज का राजा अंधा, अंधी अरे प्रजा है, जिस समाज का राजा अंधा, अंधी अरे प्रजा है, उस समाज में जीवन जीना केवल एक सजा है। जिस समाज का राजा अंधा है और जिस समाज की प्रजा भी अंधी है, ऐसे समाज में जीना केवल सजा के समान है। अर्थात समाज श्रेष्ठ होना चाहिए, राजा भी श्रेष्ठ होना चाहिए और वहां में रहने वाली प्रजा भी श्रेष्ठ अपने आप बन जाएगी। यदि किसी देश का राजा अच्छा हो, याद रखिए नीत वचन का संकेत, नीत वचन का संदेश, नीत वचन का अभिमान। यदि किसी देश का राजा अच्छा है, उसके कर्मचारी अच्छे हैं और ईमानदार हैं, उस देश की प्रजा कितनी खुशहाल होगी, समाज कितना अच्छा होगा, महाकवि तुलसीदास की यह पंक्ति संकेत कर रही है। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, सब नरक रहे परस्पर प्रीति, चले हैं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम भी राजा थे और उनके राज्य में प्रजा खुशहाल थी, लोग अपने अपने धर्मों का पालन कर रहे थे और सब प्रेम से रह रहे थे। कोई शासक राम की तरह होना चाहिए और राज्य समाज राम राज जैसा समाज होना चाहिए और प्रजा भी उतनी खुशहाल हो जितना राम राज्य में प्रजा खुशहाल थी। जिस देश का, जिस समाज का, जिस समाज में ऐसे लोग रहेंगे वह समाज उन्नतशील समाज कहलाएगा, तरक्की कहलाएगी। इसलिए कहा जाता है वृक्ष कबहु नहीं फल बखें, नदी न संचय नीर परमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल को स्वयं नहीं खाता है, पक्षी नदियां अपने जल को स्वयं नहीं पीती है। इसी तरह से समाज में रहने वाले परमार्थी जो समाज की सेवा करते हैं, दूसरे के हित के लिए काम कर रहे हैं। जिस समाज में ऐसे लोगों का निवास होता है वह समाज निसंदेह श्रेष्ठ होता है, श्रेयस्कर होता है। नीति वचन, नीति वाणी, उसी का यही संदेश है। वो पापान निवार्यत, संस्कृत में भी एक श्लोक है, पापान निवार्यत योजयते हिताय, पाप से दूर रखते हैं, कल्याण में लगाते हैं। समाज का यह रूप होना चाहिए और अगर समाज ऐसा है, समाज का शासक श्रेष्ठ है, समाज में रहने वाली प्रजा भी उत्कृष्ट है, तो समाज का उत्थान, समाज की तरक्की निसंदेह होगी। नीत वचन का यह संदेश जन जन तक, जन मन तक, जन मन की आत्मा तक पहुंचनी चाहिए।
1: बिल्कुल भैया, देखा जोनो बात बतावत हिन भैया नीति वचन में, या जोनो बात आई था, आवत था, प्रेरक प्रसंग आवत है, महापुरुष का जोन जीवन होता, भाई उसे सीखा जा ही सकत है। अच्छी अच्छी जोन बात होती भाई होकर अपने जीवन में उतार के हम सभी भाई एक अच्छा जीवन जी सके थे, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके थे। अब भैया रेखु भैया देखा जोन मौसम चलत बाटे भाई, देखा धान का भाई कुछ दिनों बाद का नंबर रोपाई हो ही लगे, और धान के लगावे का कई तरीका होता, कई तरह के किस्म होता।
2: अच्छा
1: भाई, वैज्ञानिक भैया भी बतावत इन कौन कौन किस्म के कैसे कैसे लगावा जाए, नई नई तरह के वैज्ञानिक विधि लेके आवत इन, नई नई तरह का अनुसंधान करत इन।
2: अच्छा।
1: तो भैया देखा वही संबंधित एक ठे बातचीत बाटे की छिटकेवा विधि से धान की बुवाई, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से रितेश कुमार शुक्ला भैया का बातचीत बाटे, तो हम कही की आवा आपो सुने और पंच भैया सुने।
2: सुनवाता भैया
3: किसान भाई, बहुत स्वागत बा आपका अपने पंचायती में। आज अपने पंचायती में एक विशेष भेंट वार्ता बाटे, जेमन डॉक्टर मनोज कुमार सिंह भैया आवा हैं, जे की कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि विज्ञान केंद्र कौशाम्बी से हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत बा आपका। डॉक्टर साहब, ये जोन मौसम चलत बाटे, ये खरीफ का जोन राजा फसल बाटे यानी कि धान जोन बाटे ओकर मौसम चलत बाटे, और भैया देखा डॉक्टर साहब हमरे यहाँ तो भैया देखा अलग अलग किसान भाई अरे अलग अलग तरीका अपनावत इन, और जोन उनके पास जोनों जानकारी हो, तो चाहे वो पुरखा पुरनिया से हो, चाहे वो वैज्ञानिक भैया के द्वारा हो, अलग अलग तरीके से भाई धान के बुवाई होता, अलग अलग किस्म होता, और अलग अलग रख रखाव होता, अलग अलग तरीका होता, तो जोन भी तरीका

0: होता भाई साहब का, कुछ नफा होता, कुछ नुकसान होता, कुछ फायदा होता। तो अलग अलग तरीके में भैया कुछ विशेष जैसे छिटकावा विधि बाटे, ये छिटकावा विधि का बाटे और इका एक बारे में कुछ आप बतावें किसान भाई इनके।
1: देखिए, जैसा किसान भाई जो आप सब जानते हैं कि हमारी धान की जो फसल है वो खरीफ में मुख्य फसल है, और किसान भाई इसकी तैयारी में बड़े मई माह से ही लग जाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जिनको किसानों को रोपाई करनी होती है वो मई माह में अपनी नर्सरी डाल देते हैं, लेकिन नर्सरी डालकर रोपाई कराना इस समय बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर हो गया है, क्योंकि लेबर की उपलब्धता कम होने लगी है। लेबर समय से नहीं मिल पाते हैं, और इसमें इसके साथ साथ लेबर की उपलब्धता के साथ साथ इनका धन भी ज़्यादा लगता है उसकी
0: बिल्कुल
1: रोपाई करवाने में,
0: लागत ज्यादा हो
1: लागत
0: जाती है।
1: ज़्यादा हो जाती है। और उत्पादन जब होता है तो लागत अगर हम ज़्यादा लगा देते हैं तो हमारा जो उससे कोई फ़ायदा है वो नहीं हो पाता है। तो देखिए, ये जो धान की रोपाई का प्रचलन है ये हमारे देश में अभी 80-90 सालों से आया है। उससे पहले जो है हमारे के जो पूर्वज थे वो सीधे धान की छिटकों विधि से बुआई करते थे,
0: जी,
1: और धान हमारा जो धान का पौधा है वो बना भी हमारी छिटकों विधि से फसल की बुआई के लिए। लेकिन हमने उसमें कुछ खरपतवारों की समस्या ज़्यादा आती थी, उसकी वजह से उसको छोड़ा। और रोपाई करने में हम पहले अपना धान की पौध तैयार कर लेते हैं, तैयार करने के बाद उसकी रोपाई कर देते हैं। लेकिन छिटकुआ विधि जो हमारे पूर्वज करते थे वो कम लागत में अधिक उत्पादन लेते थे।
0: बिल्कुल बिल्कुल पहले तो डॉक्टर साहब संसाधन भी कम रहा और छिटकवा विधि जोन होत रही कि भाई उमन जोन आपका मेहनत रही वो कम लगत रही,
1: जी
0: तो जोन छोड़े का कारण रहा कि भाई छिटकवा विधि छोड़ के किसान भाई रोपाई विधि पे आई गए ने, एक बारे में बताऊँ ये आपके काहे छोड़ दिए ने का।
1: देखिए, जब छिटकुआ विधि से बोते थे तो उनका जो है बुआई से कुछ जो नुकसान होता था, चिड़िया दाने को चुग
0: चुक
1: जाती
0: जाते
1: थी
0: थे
1: बीज को, उससे नुकसान होता था। फिर जो बीज हमारा ऊपर पड़ा रहता था वो जो है सड़ जाता था, और एक निश्चित गहराई तक अगर हमारी फसल की जड़ें नहीं गई तो हम उससे उत्पादन अच्छा नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए, और इसके साथ साथ खरपतवार की समस्या बहुत ज़्यादा होती थी। जब घन पौधे निकलते थे तो उसमें हवा, पानी, प्रकाश पर्याप्त मात्रा से नहीं मिलता था, उसकी वजह से खरपतवार सबसे पहले तैयार हो जाते थे, और खरपतवार वो हमारे जो फसल की पौध है उसको दाब लेते थे,
0: बिल्कुल
1: जिससे हमारा उत्पादन भी प्रभावित होता था और रोग बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता था।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: इस वजह से छिटकुआ विधि को किसानों ने छोड़ा। लेकिन अब हमारे बीच में बहुत सी विधियाँ उपलब्ध हैं। जैसे कि हम अगर सीधी बुआई की बात करते हैं तो सीधी बुआई में दो तरीके से हम बुआई कर सकते हैं। उसमें हमको श्रम भी कम लगेगा और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और पौधों का विकास भी अच्छा होगा।
0: बिल्कुल
1: तो इसमें कुछ यंत्र भी आ गए हैं, जैसे आपका धान की बुआई के लिए सीड ड्रिल आ गई है।
0: अच्छा
1: उसमें खाद, और एक खाने में खाद भर दी जाती है, एक में बीज भर दिया जाता है, दोनों एक साथ जो है खेत तैयार करके बो सकते हैं। इसमें दो विधियां भी हैं, जैसे कि गीली विधि से, मतलब या तो ड्राई ड्राई में हम बुआई करना चाहते हैं सीधी बुआई, या वेट में करना चाहते हैं, तो दोनों विधियों को हम अपना के उसका लाभ ले सकते हैं और कम पैसे में।
0: डॉक्टर साहब आप बताएं कि जो नवा अनुसंधान बवा नई जो जानकारी आई गई बाटे, तो अगर सीधी बुआई अब की जाए तो किसान भाई ज़्यादा लाभ ले सकते हैं।
1: जी
0: एक बात आप ही बताएं कि अगर मशीन द्वारा एकर बुआई होए तो भाई बुआई अच्छे से हो जाए और किसान भाइयों के अच्छी फसल मिले। डॉक्टर साहब आप हमें ये बतावें कि अगर यंत्र के अलावा या जोन मशीन बाटे ओकरे अलावा अगर आदमी खुद से अगर एकर बुआई करा चाहे तो वो कैसे करें, एकरे बारे में आप बतावें।
1: देखिए, बैल, पहले हमारे पास बैल पर्याप्त मात्रा में थे, तो किसान भाई जो हमारे जो किसान थे वो कुंड में बुआई करते थे,
0: अच्छा
1: नीचे खाद डालते
0: बिल्कुल
1: थे और ऊपर बीज डालते, एक आदमी खाद डालता चला जाता था और दूसरा आदमी बीज डालता चला जाता था।
0: तो
1: तो उस लाइन में
0: जो हल रहत रहा हल में बना रहत रहा वही
1: चोंगा,
0: उन्हीं
1: जी
0: जी
1: जी
0: उन्हीं में डालत रहे तो उसके साथ भी उमन का नाम बा एक तरफ से आपका खाद पड़त रही और एक तरफ से बीज पड़त रहा।
1: जी
0: जी
1: उसका एक तो सबसे बड़ा फायदा ये था कि नीचे खाद और ऊपर बीज रहता था।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: जब नीचे खाद और ऊपर बीज रहता था तो खाद की पूरी पोषक तत्व की मात्रा लेकर बीज हमारा अंकुरित होता था और पौधा स्वस्थ होता था।
0: बिल्कुल
1: लेकिन समस्या ये थी कि वहाँ पर खरपतवारों की समस्या, सबसे पहले खरपतवार तन के खड़े हो जाते थे, वो नुकसान ज़्यादा था। लेकिन अगर हमारे पास यंत्र नहीं है, हम बुआई करना चाहते हैं, तो बैल अगर हमारे पास उपलब्ध है तो वो चोंगे के सहायता से हम नीचे खाद और ऊपर बीज की बुआई कर सकते हैं।
0: हाँ
1: और इसमें एक सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें हमको बीज की मात्रा भी कम लगती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: एक एकड़ में हमारा 8 से 10 किलोग्राम बीज लगेगा, और जबकि हम अगर रोपाई की बात करते हैं, रोपाई के लिए पौध तैयार कर

0: करते हैं तो 1 बीघे में हमारा हाइब्रिड है तो वो 3 केजी है, और नहीं तो अगर वाले जो देसी बीज है हमारे वो कम से कम 10 किलो के आसपास हमको डालने पड़ते हैं।
1: तो कुल मिलाकर के डॉक्टर साहब, अगर छिड़कावा विधि के नियंत्रित ढंग से अगर किया जाए, अगर नियंत्रण में हो के किया जाए, तो निश्चित तौर पर जोन आप बताएं कि भाई लागत तो कम लगे, साथ ही साथ जोन बीज का मात्रा रहे वो कम लगे, और जोन हमारा उत्पादन होए
0: जी
1: वो आपके रोपाई के
0: बढ़ेगा,
1: माध्यम से ज़्यादा होए, अगर
0: जी
1: रोपाई से किया
0: जी
1: जाए
0: जी
1: तो तुलना में ज़्यादा होए। तो डॉक्टर साहब ये तो बात भाई कि भाई दोनों विधि काहे एक दूसरे से अलग बाटे, ई जोन चीज बाटे खरपतवार की जोन समस्या आवत है, हम आपसे यह जानना चाहब कि भाई खरपतवार के अगर बुवाई के पहले कोनो ऐसा चीज की जाए कि खरपतवार ना आवे, जैसे कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि भाई आपके का नाम भाई एक जोत लगाई के पानी भर देते हैं उमन, और जब मिट्टी आपके सूख जाता, सूख कायदे से कि जब आपका खेत सूख जाता तो भाई जो खरपतवार की समस्या आवे वाली रहता वो कम हो जाता।
0: जी
1: तो कोनो ऐसा चीज आप विधि हो या यही विधि बाटे या एकरे अलावा कोनो विधि बाटे ये बताओ आप।
0: देखिए, अगर धान की बुआई हम सीधी वेट उसमें करते हैं, गीली अवस्था में करते हैं, तो वहाँ पर हम खेत को बहुत अच्छी तरीके से पहले तैयार कर लेते हैं,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: तैयार करने के बाद जैसे ही हम खेत को तैयार करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पीछे सीजन के खरपतवार के बीज होते हैं वो सबसे पहले वो तैयार हो जाते हैं,
1: जी
0: वो
1: बिल्कुल
0: खरपतवार आ जाते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी
0: उसके बाद जब हम दूसरी जुताई करते हैं तो उसके बाद जब दूसरी जुताई करके पलेवा लगा देते हैं तो हमारे खरपतवार वहाँ पे नष्ट हो
1: नष्ट
0: जाते
1: हो
0: हैं।
1: जाते हैं।
0: दूसरा, अगर हम सीधी बुआई कर रहे हैं उसमें कोई खरपतवार नाशी प्रयोग करना है तो बुआई के हमको 48 से 72 घंटे के अंदर पेंडामेथिलीन नामक दवा है, 30 cc की दवा है, उसका अगर हम छिड़काव खरपतवार से हम बहुत हद तक सीधी बुआई में, बुआई के तुरंत
1: अड़तालीस
0: अड़तालीस से
1: घंटे के
0: बहत्तर 48 से 72 घंटे के अंदर।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ये मतलब कि जो समय बाटे ये बहुत महत्वपूर्ण समय बाटे, अगर किसान भाई सीधी बुआई करते हैं
0: जी
1: तो जो ना आप बताएं कि 72 घंटे के अंदर अंदर भैया अगर दवा का छिड़काव कर ही तो निश्चित तौर पर जो नहीं खरपतवार की समस्या होता भैया इसे बच सकते
0: उससे
1: हैं।
0: बच सकते हैं। जी
1: बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब आप बताएं कि सीधी बुआई जो आप बताएं तो सीधी बुआई के लिए कोनो विशेष तैयारी की जरूरत होता कि जैसे अपन खेत की तैयारी पहले रोपाई के लिए होत रही वही खेत में आप सीधी बुआई कर सकते हैं कि कुछ विशेष आपके काम करे के पड़े।
0: देखिए, सीधी बुआई में हमको विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, हमको नर्सरी नहीं डालने की आवश्यकता है, जो हम मई माह में डालते हैं वहाँ उससे हमारी बचत हो सकती है। उसके बाद सीधे हमको खेत तैयार करके 2 विधियों से, या तो गीली विधि से या सूखी विधि से, अगर हमको सूखी विधि से करना है तो हमको खेत की अच्छी तरह कल्टीवेटर्स की सहायता से जोत कर उसको जो है बढ़िया से तैयार कर लेना है, खेत में समतल कर लेना है। समतलीकरण तो हमारी सीधी बुआई जो छिटकवा विधि से बुआई है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारे बीजों का जमाव होगा।
1: हम आपसे एक बार और जानना चाहब डॉक्टर साहब, जो ना आप यंत्र के बारे में बतावत रहें कि भाई एक यंत्र होता उससे सीधी बुआई होता, उकरे बारे में रच के और थोड़ा विस्तृत रूप से बतावे कैसन यंत्र होता, कहाँ मिले और कैसे किसान भाई इसे लाभ ले सकते हैं।
0: देखिए, किसान भाइयों को 2 यंत्र इसमें सीधी बुआई के लिए मिल सकते हैं। एक तो सीड ड्रिल होती है,
1: जी
0: सीड
1: जी
0: ड्रिल जो है हमारी जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो सीड ड्रिल पे अनुदान भी देती है, वो ट्रैक्टर
1: अच्छा
0: चालित है।
1: अच्छा
0: दूसरा एक ड्रम सीडर है, ड्रम सीडर एक पूरा 8 किलो का हमारा वजन का होता है, प्लास्टिक का होता है, उसमें बॉक्स होते हैं,
1: अच्छा अच्छा
0: 8 बॉक्स होते हैं,
1: जी
0: उनमें
1: जी
0: हम
1: जी
0: बीज भर देते हैं
1: अच्छा
0: और एक आदमी उसको बड़े आसानी से विपरीत दिशा में खींचते हुए चला सकता है और सीधे उस लाइन में बुआई उससे हो सकती है। तो
1: बिल्कुल
0: दोनों
1: बिल्कुल
0: यंत्रों पर राज्य सरकार अनुदान देती है, उस अनुदान को लेकर किसान भाई उसका लाभ ले सकते हैं। और बीज की जहाँ तक बात है तो बीज हमारा जो है 8 से 10 किलो 1 एकड़ में लगता है, और जबकि अगर हम रोपाई की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारा 8 से 10 किलो 1 बीघे में लगता है, तो वहाँ बीज की बचत होती है। अगर हम सीधी बुआई करते हैं तो हमारी सिंचाई कम लगती है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: सिंचाई
1: बिल्कुल
0: का हम सिंचाई का जो हमारा दर
1: लागत
0: है
1: लागत होगी वो
0: लागत
1: कम हो
0: वो
1: जाएगी।
0: 35 से 40% हम बचा सकते
1: अच्छा
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: और सीधे अगर हम लाइन में खाद डाल रहे हैं तो उसका भी हमको बहुत अच्छा उसका लाभ मिल सकता है, वहाँ भी हमारी लागत कम लगेगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। इतना डॉक्टर साहब सोच समझ के अगर इतना खेती किसानी की जाए तो निश्चित तौर पर किसान भाइयों के लाभ होए। एक जोन और समस्या किसान भाइयों के आवत हो वो बीज जनित जोन रोग होते हैं। किसान भाइयों से अनुरोध किया जाता है कि कौनो फसल लगावे के पहले अगर जो बीजोपचार होता वो बहुत ज़रूरी होता, अगर बीजोपचार कर लिया जाए तो बहुत तरह के बेरामी से बचा जा सकता है।
0: जी
1: अपने धान में जो बीजोपचार बा या ये जो सीधी बुवाई में जो बीजोपचार है उसके बारे में किसान भाइयों के
0: देखिए,
1: बताओ।
0: बीज उपचार बहुत महत्वपूर्ण

0: कोई भी अगर हम फसल लेना चाह रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो अगर बीज उपचार हम करते हैं तो बीज उपचार से हम फसलों को आगे आने वाली रोग बीमारियों से तो बचाते ही हैं, और उस पर एक सुरक्षात्मक टीका लगा देते हैं। इसको हम ठीक उसी प्रकार से समझें जैसे हमारे आपके घर में कोई नवजात शिशु आता है तो डॉक्टर टीके के लिए एक चार्ट बना के देता है, हम उसको
1: बिल्कुल
0: लगवाते हैं और सुरक्षित और स्वस्थ करते हैं। उसी तरह हमारा जो बीज है वो भी तो एक नन्ना शिशु के समान है, अगर उसमें हम सुरक्षात्मक टीका यानी बीज शोधन कर देते हैं तो आगे आने वाली बहुत सी रोग बीमारियों से हम बचाव कर सकते हैं। तो जब धान की हम छपाई कर देते हैं, छपाई करने के बाद उसमें कार्बेंडाजिम या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से अगर हम डाल के उसमें मिला देते हैं, और मिलाने के बाद उसको छाया में सुखाकर उसकी बुआई करते हैं, तो इससे बहुत हद तक हम
1: बिल्कुल
0: रोग बीमारियों से बचाव कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, रोपाई विधि जोन बाटे उमन कहा जाता है कि जब पौधन की रोपाई की जाए या धान को रोपाई की जाए तो ओकर जो गहराई होता वो अगर पर्याप्त गहराई न रहे तो पौधा के गिरे के समस्या होता, पौधा गिर जाते ना फसल का नुकसान हो जाता।
0: जी
1: जोन ही सीधी बोवाई बाटे एमन बीज कितनी गहराई पर बोवा जाए कि हमके जोन पौधा का जोन लंबाई बा जोन ओकर विकास बा उचित हो सके और हमके अच्छा फसल मिल सके तो कितनी गहराई होए के चाहे?
0: देखिए, गहराई का इसमें सीधी बुआई में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अगर 2 से 3 सेंटीमीटर अगर हम उसकी गहराई रखते हैं बीज की बुआई में, तो हमारा जो पौधा है वो अच्छी प्रकार से विकसित भी होगा, और सिंचाई जब हम करेंगे तो सिंचाई में वो पौधा नीचे, बीज जो हमारा नीचे जाके हमारा नुकसान भी नहीं होगा। और जब 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर हम बोते हैं तो पौधा हमारी अच्छी प्रकार से जड़ पकड़ लेगा और स्वस्थ पौधा निकलेगा, और उससे हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो सारी बात भाई भाई सिंचाई से लेकर के खरपतवार से लेकर के कैसे उकर बुवाई की जाए ये सारी बात भाई। एक हमरे मन में सवाल आवत बाटे कि कौनो विशेष किस्म बाटे सीधी बुवाई बरे, या आपका जोन संकर नस्ल हैं या जोन देसी नस्ल हैं, कौन ऐसी प्रजाति बाटे सीधी बुवाई बरे जो सबसे उपयुक्त बाटे किसान भाई ओकर उपयोग करें?
0: सीधी बुआई में दोनों प्रजातियों का हम चयन कर सकते हैं, चाहे वो देशी प्रजातियां हों। देशी प्रजाति में हमको बीज 8 से 10 किलोग्राम डालने की आवश्यकता है। अगर हम संकर प्रजाति का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर 6 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हमको बीज प्रयोग करना पड़ेगा।
1: अच्छा, मोटा धान अगर लगावे तो जय कहा जाता है, अगर मोटा धान आप लगावते हैं तो ओकर जोन बुआई होता वो रज के दूर दूर पे हो तो ज़्यादा बेहतर होता, और जोन महीन धान होता भाई ओकर सघन बुआई होता।
0: जी
1: तो भाई अगर किसान भाई जोन डॉक्टर साहब बताएं कि भाई अगर देसी बाटे तो कितना लिया जाए और संकर नस्ल बाटे तो कितना लिया जाए, तो उस हिसाब से अगर किसान भाई बुआई करी तो निश्चित तौर पर उनके लाभ मिले। भैया देखा ये तो डॉक्टर साहब बात भाई किस्म का, और साथ ही साथ एक जो सवाल जात जात हम आपसे पूछा चाहब कि भाई बात पूरी बात भाई कि भाई रोपाई विधि कैसन बाटे और सीधी जो बुवाई होता वो कैसन होता, तो दोनों में आप ये डॉक्टर साहब बताएं कि दोनों में का अंतर बाटे, मतलब उत्पादन में का अंतर बाटे? मोटा मोटा हम आपसे ये जानना चाहब कि अगर कोनो किसान भाई चाहत बाटे कि हम नहीं सीधी बुवाई करब, अपन रोपाई वाली जो विधि बा ओकर छोड़ के हम के सीधी बुवाई करे के बाटे, तो किसान भाई की कितना फायदा मिले आप ही बताओ।
0: सीधी बुआई में एक तो सबसे बढ़िया किसान को फायदा ये मिलता है कि 8 से 10 दिन पहले हमारी फसल पक के तैयार हो जाती है। दूसरा, अगर हम उत्पादन की बात करते हैं तो चूंकि इसमें उत्पादन हमारे पौधे स्वस्थ होते हैं, एक लाइन में होते हैं, हवा पानी प्रकाश उनको पर्याप्त मिलता है, तो जब उसमें बालियां भी ज़्यादा आएंगी, और जब बालियां ज़्यादा आएंगी तो निश्चित रूप से हमारा जो उत्पादन है वो अच्छा होगा, और रोपाई की अपेक्षा इसमें हमको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा।
1: अच्छा,
0: तो कम से कम 15 से 20% उसमें उत्पादन में इजाफा होगा अगर हम सीधी बुआई करते हैं तो।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाए के कहे के मतलब ये बा कि भाई जोन डॉक्टर साहब जानकारी दिहेन कि भाई अगर छिटकवा विधि से धान के बुवाई की जाए तो निश्चित तौर पर फायदे में आपके सबसे बड़ा फायदा तो ये बा कि भाई फसल पहले तैयार हो जाए, पानी का जोन आपके लागत बा पानी आपके कम लगे, साथ ही साथ जोन आपके मेहनत बा वह आपका कम हो जाए और आपको उत्पादन जोन बा 10 से 15% ज्यादा आपके उत्पादन मिले
0: जी
1: आपका जोन रोपाई विधि हो बा। तो डॉक्टर मनोज कुमार सिंह भैया आप हमारे कार्यक्रम में आए नो किसान भाइयन के जोन जानकारी दिए, निश्चित तौर पर किसान भाई एक सुने हुई और अपने अगर अपने खेती किसानी में उपयोग में लेके आई तो भाई उनके फायदा हो, तो आप आए निकले लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ
0: हाँ
1: भैया
0: भैया, देखा बातचीत रही छिटकवा विधि से धान की बुआई, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह से जो है रितेश कुमार शुक्ला की बातचीत रही। भैया बड़ी नीक जानकारी रही भैया, बड़ा फरिया फरिया
1: बिल्कुल
0: बताएं
1: बिल्कुल। देखा
0: डॉक्टर
1: रघु
0: मनोज
1: भैया
0: भाई।
1: जोन समय चलत बाटे भाई किसान भाई भी अब भाई धान का तैयारी हो ही लागे हुई, तो जोन विधि बताएं कि भाई छिटकवा विधि अगर चाहे

0: नहीं तो छिड़कवा विधि से भी भाई धान का जोन बोवाई बा वो
1: हाँ
0: कई सकत हैं।
1: हाँ
0: अब जैसे रघु भैया समय चलत बाटे और मौसम जैसे चलत बाटे भाई, तो मौसम के अनुसार भाई अपन खेती किसानी का काम करें। जैसे तू
1: बिल्कुल
0: बताया ना कि भाई संजय सवेरे खेती किसानी का काम करें, दोपहर में बिल्कुल ना करें। एक जरूरी चीज हम और बतावा चाहब कि भाई जोन ये समय बा भाई आपका जोन पशुधन आप पाले हैं
1: हाँ
0: भाई,
1: भैया
0: ओकरे लिए बहुत जरूरी बा उन्हों का ख्याल रखे कि आपके चाहिए
1: बिल्कुल
0: भाई उनका सही तरीके से चारा दें, संतुलित चारा जोन होता वो दें, साथ में साथ उनका जो पानी बा पानी का
1: हाँ
0: विशेष ख्याल रखें भाई, पानी उनका तीनों टाइम दें और
1: हाँ
0: पानी
1: हाँ
0: जोन बा वो साफ दें और ताजा पानी
1: खैर
0: दें।
1: भैया गर्मी बहुत बाटे भैया हैं, तो पशु के भी ध्यान रखें,
0: ध्यान
1: गर्मी में पानी
0: रखें।
1: देते रहें।
0: और रघु भैया एक चीज और बांटे ना कि बहुत बारी गलती हो जाता है कि भाई हरा चारा काट के लेके आवत इन किसान भाई सीधे डाल देते नोमन हौदा में या कनो चीज में
1: अच्छा
0: भाई, रच के झुराई दें ओका, जब ओकर गर्मी निकल जाए तब ओकर डालें, कहीं कि हरा चारा सीधे अगर डाल दें ही तो भाई वो जाई के गर्मी कई देता पेटे में और
1: हाँ
0: उससे तबियत खराब हो जाता पशु
1: बिल्कुल
0: का।
1: भैया
0: तो ये सब चीज का ध्यान रखें, अपनों ख्याल रखें, आपका स्वास्थ्य सही रहे तो खेती किसानी का काम सही से होत रहे। लेकिन गदेला जोन है उनको ख्याल रखें भाई, उन्हों बाहर जबरदस्ती ना निकलें, अगर जाते हैं तो भाई तबियत अगर आपका खराब होता तो तुरंत भैया जाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बा, वहाँ भैया इलाज करा
1: हाँ
0: हमें,
1: साथ साथ भैया पशुअन के छायादार जगह बांधे
0: छायादार
1: भैया,
0: जगह पे
1: हवा
0: बांधें।
1: आवत रहे वहाँ, अच्छी
0: बिल्कुल
1: ध्यान
0: बिल्कुल।
1: रखें उनका।
0: एक और भैया सूचना बांटाई अपने पंचायत घर कार्यक्रम से संबंधित कि भैया जो ना अपन पंचायत घर कार्यक्रम आवत है, बहुत भैया अरे सुनत इन बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया हमारे पचन के पास आवत है।
1: अच्छा भैया
0: और अगर आपों के मन में कोनो सवाल बा, कोनो प्रतिक्रिया बा, कोनो अगर सुझाव बांटे कार्यक्रम
1: अच्छा
0: से लेकर के, तो भैया जरूर हमारी पचन के जो हमारे पचन का एक व्हाट्सएप नंबर बांटे
1: हाँ भैया
0: 800-4926-250,
1: हाँ भैया
0: नंबर
1: एक
0: फिर से
1: बार
0: बोल देते ही
1: हाँ
0: 800-4926-250 ये नंबर बांटे भाई, ये पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा भाई आकाशवाणी प्रयागराज नाम से भाई तमाम जो सोशल मीडिया बांटे
1: हाँ भैया
0: ऊपर पेज बांटे ऊपर जाई के ऊपर पोस्ट कई के कमेंट कर सकते हैं भाई, वो हम सभी आपका जो प्रतिक्रिया बा ओके अपने कार्यक्रम में शामिल करब।
1: बिल्कुल भैया
0: और रघु भैया देखा घड़ी इशारा करत बा चले चले कि बेला हो तरीबा, तो भाई पंच भैया से आज्ञा लेन जाए, तो पंचों
1: पंचो राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम पंचायत घर। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

श्रोताओं, अब हम आपको हमारे आज के शेष कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 7:31 पर सुनिएगा बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का। 8:00 चित्रपट संगीत, 8:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सबरस। रात 10:00 फिल्म संगीत, 10:30 पर उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में विदुषी अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन सुनिएगा।

0: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता, एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार

0: परिवर्तन और नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है। भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
1: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
2: राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इस क्रम में लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या समेत जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर और राज्य के अन्य मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। कानपुर देहात में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
1: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर

0: सृजित किए हैं। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जीराम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों के लिए इंटरिम अवलोकेशन में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए धनराशि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1,183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलो हर्ट्स पर और FM 100.3 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम बोलते नगमे, स्वर नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का, प्रस्तुति नेहा गुप्ता की।

0: एक जनाब जो लखनऊ से हैं, वारिस अली खान साहब। वो कहते हैं ना कि आवाज़ की दुनिया के दो प्यारे दोस्तों,
1: खान परिवार का सलाम।
0: तो उन्होंने ही चिट्ठी लिखी थी कि ये कार्यक्रम उनको पिछली बार जो हम लोगों ने किया था बहुत भाया
1: जी।
0: तो मुझे लगा कि क्यों ना सुधी श्रोताओं को ही साथ लिए चला जाए, उनसे ही शुरुआत कर ले।
1: क्यों नहीं, देखिए नेहा जी, जो भी प्रोग्राम हम करते हैं तो उसका उद्देश्य मात्र यही होता है कि श्रोताओं तक हम अलग अलग रंग रूप में जीवन की जो तमाम तरह की कलाकृतियां ईश्वर ने बख्शी हैं या जीवन ने हमको दी हैं, प्रकृति ने दी हैं, वो उन तक पहुंचाएं,
0: है ना। देखिए, इस स्टूडियो में आप मौजूद हैं, हम मौजूद हैं, हमारे सुंदर सुंदर नगमे मौजूद हैं
1: जी।
0: और देखिए साइड में सारे श्रोता जो हमको चिट्ठियां लिख करके बताते हैं, जो लोग सुनते हैं, वो सारे लोग मौजूद ही हैं, है ना। तो अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछती हूँ। ठिठक रही है ना, आपको लग रहा है कि घबराहट हो रही है। हुजूर शब्द सुना है आपने?
1: अरे क्यों नहीं,
0: अरबी भाषा का शब्द है
1: जी।
0: और कब सुना है?
1: देखिए नेहा जी, ऐसे तो हमेशा हम लोग जब कभी बात करते हैं, मुखातिब होते हैं किसी को, अदबो लिहाज के अंतर्गत कोई जब बात करनी होती है तो सम्मान सूचक एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, श्रीमान, हुजूर, आप ये काम कर लीजिए। लेकिन क्योंकि हमारा प्रोग्राम बोलते नगमे हैं और हाँ। आपने अगर पूछा है तो कोई खास संकेत जो है वो नगमे से जुड़ा हुआ जरूर होगा। तो एक तो गाना याद आ रहा है,
0: हुजूरे वाला जो होती इजाजत,
1: और
0: अगर मैं इसमें नाम जोड़ दूं गुलजार साहब का।
1: ओह नेहा जी, तब हाँ। तो बात आपने पूरी क्लियर कर दी। तो हम ऐसे नहीं बताएंगे, जो हाँ। मैंने गाना समझा है वो क्या यही है ये हम पहले मुखड़ा उसका सुना दें,
0: ठीक,
1: और फिर आप डिसाइड करिए कि मैं सही

0: देखिए मैंने आपको क्लू ही कुछ ऐसा दिया था कि आप पकड़ लेते, इसीलिए आपने दोस्तों को ये एकदम सही सटीक गाना जो है वो सुनवाया है
1: जी।
0: सुधी श्रोताओं, जब आप इस गाने को सुनते हैं और इसके बोल पर जब आप नजर डालते हैं, ध्यान से देखते हैं, और शबाना आजमी, हा, वो जो गोल्डन ब्राउन तरह की सिल्क की साड़ी है, बहुत सुंदर लग रही है वो। और नसीरुद्दीन साहब जो हैं वो कहते हैं जेंटलमैन, शर्ट बटन बंद हैं, कोट हैं, बाल कढ़े हुए हैं। और मुझे लगता है कि उस समय जब ये गाना सिल्वर स्क्रीन पर आया होगा तो लगभग जो दुनिया की आधी आबादी है यानी महिलाएं हैं वो दिल थाम कर बैठी होंगी।
1: और नेहा जी,
0: जी
1: ये जो छेड़खानी है जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब दिखाई पड़ रहे हैं और साथ साथ जाफरी साहब भी हैं, महान कलाकार है, अभिनेता है वो
0: जी।
1: और शबाना आजमी की जो हंसी है, मुस्कुराहट है, खिलखिलाहट है, वो शोखी नजर आ रही है। क्योंकि जो विवाह का जो संबंध हमारा होता है वो किस तरह से खुशनुमा होता है वो इन्हीं छोटी छोटी चीजों से बनकर दिखाई पड़ता है, परिलक्षित होता है, जैसे कि ये गीत है। और क्या शानदार बात कही जा रही है, हुजूर इस कदर ना डराके चलिए।
0: ये जो आंचल है,
1: हाँ,
0: ये जो बेपरवाही है, गुलजार साहब ने जब देखा होगा किसी को बेपरवाह होते हुए और उसका असर जब पड़ता है दूसरों पर, जो बेपरवाह है उसका उस पर उतना असर नहीं है
1: जी,
0: लेकिन बाकी लोग जो देख रहे हैं ओह उन पर भी असर पड़ा, उनकी कलम चल गई और उन्होंने कहा कि अगर कोई मन चला फिर क्या कीजिएगा, तो थोड़ा संभलने के लिए भी कह रहे हैं नहीं।
1: मासूम फिल्म 1983 में आई थी और शेखर कपूर निर्देशित ये पहली फिल्म है नेहा जी, और बहुत ही भाव प्रधान ये फिल्म है, बहुत ही खूबसूरत ताने बाने के साथ इसको शब्दों में ढाला गया है, कहानी इसकी बनी है और संगीत लाजवाब है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हाँ, हम ये बताते चलें साथ साथ ही ज़रूर कि गुलजार साहब की बात चले तो इसके संवाद भी गुलजार साहब ने ही लिखे थे, स्क्रीन प्ले भी गीतों के साथ साथ गुलजार साहब का ही रहा है। तो आगे बढ़ते हैं
0: जी।

0: भूपिंदर सिंह और सुरेश वालेकर जी की आवाज़ ऐसा लग रहा है कि दिल में उतरती जा रही है और कहीं जाकर बैठ जाती है, और शायद फिर जब वो बैठती है तो ये उम्मीद जगाती है कि बहुत सुंदर सा ये माहौल होता है, और उसमें जो वैवाहिक जीवन में लोग बंध चुके हैं उनका जीवन बहुत खूबसूरत सा है, वो धागा कितना रंग से भरा हुआ है, बस उसको एहसास करने की ज़रूरत है। और जब ये बात जुल्फों की हो रही है, वो कहते हैं कि अगर कोई फूल लगा देगा तो क्या आप अपने जुल्फें झटक लेंगी, क्या ईमानदारी या वफा बरतेंगी या नहीं, वो पूछते हैं ना।
1: लेकिन ये तो होता है ना कि जब चुहलबाजी होती है, वो भी खास तौर पर पति पत्नी के बीच कोई नाराजगी है हल्की फुल्की, और उसके बीच ये मनाने का तरीका इतना शायराना हो और इतना जबरदस्त रोमानियत से भरपूर हो नेहा जी, तो कोई ऐसी बात नहीं कि सामने वाला व्यक्ति तुरंत मान जाएगा, उसके चेहरे पर हंसी भी आ जाएगी। लेकिन हाँ, अभी आप भाव की बात कर रही थी, लेकिन ये जो भावना प्रधान फिल्म है, वो ये फिल्म जो मासूम बनी, वो बनी थी अंग्रेजी के एक उपन्यासकार हैं एरिक सेगल, उनका उपन्यास था मैन वुमेन एंड चाइल्ड, ये उस पर आधारित ये फिल्म थी। बड़ी मनोवैज्ञानिक तरीके से बनाई गई थी कहानी। एक मासूम बच्चे के आगमन से, जिसका किरदार जुगल हंसराज ने निभाया है, तब किस तरह की हलचल मचती है और किस तरह के अंतर विरोधों से, द्वंद से, संघर्ष से गुजरना पड़ता है शबाना आजमी को, तो वहीं उस बच्चे को परिवार में जगह दिलाने के लिए किस हद तक गुजरना पड़ता है नसीरुद्दीन शाह को, और जिस भावपूर्ण तरीके से उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है, वो अगर हम इस फिल्म को जब हम देखते हैं तो वो जो सशक्त रूप जिसके लिए नसीरुद्दीन शाह साहब को याद किया जाता है हर समय हमेशा, तो वो चीज़, वो छवि नज़र आती है। बहुत ही शानदार अभिनय का परिचय उन्होंने दिया है, और जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है। तो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, अगर हमारे दोस्तों ने फिल्म नहीं देखी है
0: तो जरूर
1: प्लीज, हाँ जरूर देखिए। और अब ये देखिए अगली लाइन की तरफ चले हम।

मुझे इसमें ये जो दिल नशी शब्द आया कि अगर ये जो अदाएं हैं वो दिल नशी मतलब दिल को भाने वाली हैं, अगर सच में इसमें इन सारी अदाओं में दिल वाली बात होती तो दास्तां बन जाती। वो कहते हैं गुलजार साहब कि देखिए भाई ये सारी चीज़ें दिख रही हैं लेकिन सामने वाले ने, अभी आप कह रहे थे ना कि ये चूहलबाजी है, सामने वाला मान नहीं रहा है।

0: तो अभी दिल सामने वाले ने दिया ही नहीं है।
1: नहीं, वो कह रहे हैं ना कि बहुत खूबसूरत है हर बात, लेकिन दिल भी अगर इतना खूबसूरत
0: सच
1: होता
0: होता
1: तो क्या बात
0: बात
1: होती।
0: होती। तो बहुत गहराई लिए हुए है ये जो गज़ल हम लोग सुन रहे हैं। इसको ज़रूर देखिएगा इस फिल्म को भी, और हम आगे आपको लिए चलते
1: लेकिन
0: हैं।
1: नेहा जी रुकिए,
0: हाँ,
1: आगे चलें उसके पहले
0: म्यूजिक की
1: ये
0: बात।
1: सारा जादू जो क्रिएट किया गया है संगीतकार की हम अगर बात ना करें, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर पुरस्कार भी उन्होंने जीता था इसी
0: जी
1: फिल्म मासूम फिल्म के
0: जी
1: लिए,
0: जी
1: और वो रहे हैं आर डी
0: आरडी
1: बर्मन
0: बर्मन
1: साहब।
0: साहब।
1: क्या खूबसूरत संगीत दिया है। तो अभी फिलहाल जब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा मासूम सा नजर आया था ना इसमें,
0: जुगल हंसराज। ओह, नाउ आई गेट इट, नाउ आई गेट इट। अब मैंने क्लू समझ लिया। सुधीर श्रोताओं, गुलजार साहब से एक कदम हम आगे बढ़ते हैं और वहीं पे खड़े दिखाई देते हैं जावेद अख्तर साहब।
1: क्या बात है।
0: और जब अख्तर साहब की भी लेखनी निकलती है, वो लिखना शुरू करते हैं, तो कहते हैं ना कि वो मासूम बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर दिल की बात कैसे बयां हो रही है, जरा सुनते चलें।

0: बात सिर्फ कुछ दूरी की है। घर से निकलते ही कुछ ही दूर चलते ही रास्ते में घर है, मतलब कभी नहीं दिखा लेकिन अब दिख रहा है क्योंकि शायद मन मस्तिष्क में वो भाव है। उदित साहब की आवाज, वो जब सुर लेते हैं तो लगता है कि दिल के हर कोने में आवाज गूंजती चली जाती है और हम लोग शायद कैद हो जाते हैं ना इस गाने के साथ।
1: बिल्कुल सच कही है नेहा जी। और खूबसूरत से जुगल हंसराज, जो हम मासूम बच्चे की बात कर रहे थे, जो पहला गीत सुनाया था जहाँ पर अपनी मासूमियत से लोगों का दिल जीत लिया था, वही बाल किरदार जब आगे बड़ा होता है तो बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी दिखाई पड़ रही है। और हाथों में उनके इंस्ट्रूमेंट भी है,
0: गिटार
1: सामने समुद्र दिखाई पड़ रहा, सेशंस एक जगह है नेहा जी, ये वहाँ का पूरा पिक्चराइजेशन हुआ है और खूबसूरत सी नजर आ रही है मयूरी कांगो।
0: और उनके माथे पर पता है सुधीर श्रोताओं क्या लगा है? कनेर के फूलों का गजरा।
1: आपने गजरा बोला लेकिन ये गजरा नहीं, ये तो ताज लग रहा है, जैसे उन्होंने सर पे ताज रखा हो।
0: हाँ बिल्कुल, हम ताज कह सकते हैं, हेयर बैंड कह सकते हैं, बहुत सुंदर कॉम्बिनेशन है।

0: जरा देखिए ये जो मासूम सा चेहरा, भोली सी अदाएं, हम ये बात क्यों कहते हैं? आखिर ऐसी क्या बात होती है जब हमें वो चीज़ भा जाती है? पता है, जब शायद कोई दिखावे की बात नहीं होती है और कोई तल्लीन होता है अपने काम में, और वो तल्लीनता लगी ही रहती है, जब दूसरा कोई देखता है तो सोचता है कि अरे, इसको शायद परवाह नहीं है किसी की, अपने आप में ही व्यस्त रहना है, कुछ करना है, और यही जो बात होती है वो दीवानगी दे जाती है, दूसरों को रंग भर देती है,
1: रंग भर देती है। ये जो बात आपने कही है नेहा जी, ये 16 आने सच बात है, और वो भी ये खास उम्र में, जब प्रेम को हम पहली बार परिचित हम उससे हो रहे होते हैं, उस समय का जो प्यार होता है वो बड़ा ही पुख्ता होता है। जीवन पर्यंत हम उस प्यार को कहीं ना कहीं दिल के कोने में छुपाए हुए चलते हैं। तो वही एक बात यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर हर एक रंग रूप बहुत ही खिला खिला सा, निखरा संवरा सा नज़र आ रहा है। यहाँ पे जब वो कहते हैं कि न तो वो परी है न कोई अप्सरा है, लेकिन उसकी जादूगरी यही है कि वो जिधर भी देखती है वो सबको दीवाना कर देती है,
0: क्योंकि वो तारीफ भी नहीं चाहती।
1: हाँ, क्योंकि वो मासूम है और निश्चल हृदय जब निश्चल होता है तो व्यक्ति को आकर्षित कर ही लेता है। तो राजेश रोशन का संगीत जादू जगा रहा है।

0: श्रुति, सच में जब हम भावों की बात करते हैं तो इसी काया में न जाने कितने भाव पनपते हैं, अपना रूप लेते हैं और फिर रूप बिगड़ भी जाता है और फिर नए भावों का जन्म होता है। ये सच्चाई जानना, समझना, देखना, स्वीकार करना, मुझे लगता है कि ये आनंद बख्शी साहब ने जब ये गीत नुमा, ये जो गज़ल हम लोग अब सुनवा रहे हैं आपको, इसको जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये बात उस वक्त ही उन्होंने कह दी थी और आज भी वो सारी बातें एकदम जीवंत लगेंगी। बस ज़रूरत है तो इस बात की कि उसके हम मर्म को समझें, अपना लें और चल पड़े।
1: नेहा जी, आपने गुलजार साहब से मुलाकात कराई
0: जी,
1: उसके बाद आप जावेद अख्तर से हम लोग उनसे मिले
0: जी,
1: लेकिन जब कलम एक बहुत ही सहज और सरल गीतकार, जिसे असल मानों में गीतकार कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही की बात जब हमने पहले की थी, वो तो एक शायर भी हैं, कवि भी हैं एक तरह से, लेकिन ये प्योर गीतकार हैं जिनकी लेखनी जब चलती है तो सीधे दिल पर असर करती है, क्योंकि इतने सादा से लफ्जों में आनंद बख्शी साहब इतनी गूढ़ बात कह जाते हैं कि सुनने वाले लोग बस उस मर्म को समझ लेते हैं और दिल के कोने में उसे छुपा कर रखते हैं किसी अमूल्य धरोहर की तरह से। उसी तरह से ये अहद, ये वादे जो निभाए जा रहे हैं, जहाँ पर आशा भोसले जी की अनगूंज सुनाई पड़ रही है, वो बात क्या कहती है, वो शब्द क्या बोल रहे हैं, वो अब हम सुनते हैं।

श्रोताओं, अचानक से जब स्क्रीन पर ये गाना हमारे और वंदना जी के समक्ष चल रहा है, आप लोग हमारी आवाज़ के ज़रिए उस गाने को महसूस कर रहे हैं। शर्मिला जी बहुत खूबसूरत, आहा हा, ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने बहुत ठहर करके उनको बनाया है, संवारा है। उनका जो केश सज्जा है इस गाने में, चाहे उनका परिधान ही क्यों ना हो, हर कुछ बोल रहा है। वो सच्चाई बयां कर रही हैं आँखों के ज़रिए, आँखों में जो आंसू आ रहे हैं, कि हम क्यों ना इस गीत को उस रूप में भी देखें। हम वादे करते हैं, बेवफाई भी शायद लोग करते हैं, लेकिन बख्शी साहब कहते हैं कि अगर कोई ये बात कर रहा है, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, कोई ऐसी स्थिति रही होगी

0: आप लोग हमारी आवाज़ के ज़रिए उस गाने को महसूस कर रहे हैं। शर्मिला जी बहुत खूबसूरत, आहा हा, ऐसा लग रहा है कि ईश्वर ने बहुत ठहर करके उनको बनाया है, संवारा है। उनका जो केश सज्जा है इस गाने में, चाहे उनका परिधान ही क्यों ना हो, हर कुछ बोल रहा है। वो सच्चाई बयां कर रही हैं आँखों के ज़रिए, आँखों में जो आंसू आ रहे हैं, कि हम क्यों ना इस गीत को उस रूप में भी देखें। हम वादे करते हैं, बेवफाई भी शायद लोग करते हैं, लेकिन बख्शी साहब कहते हैं कि अगर कोई ये बात कर रहा है, शायद उसकी कोई मजबूरी रही होगी, कोई ऐसी स्थिति रही होगी। और फिर से एक नज़र की ही तो बात है
1: जी,
0: कब पलट जाए,
1: कब पलट जाए।
0: वंदना जी, पूरा जीवन जहाँ पे एक नज़र स्थिर रहती है, फिर भी उसकी संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो, ये एक नज़र ही तो है।
1: देखिए, ये बदलाव की जो चीज़ होती है कि नज़रें बदल जाएंगी तो सच में जीवन का कितना बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि प्रेम खो जाएगा, जो प्रेम अभी मिल रहा है। और वो दर्द जो जो शर्मिला जी के दिल से उठा, वो सीधे धर्मेंद्र सामने खूबसूरत से नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, उनकी आंखों पर, उनके चेहरे पर छलक रहा है, और वो उस चीज़ से बिखरने से उनको रोक रहे हैं कि इतना बिखरना ज़रूरी नहीं है, हम साथ साथ हैं। हाँ, तो ये साथ होना कितनी बड़ी बात होती है।

0: आशाताई जब सुर लेती हैं इसका, और क्या एहदे वफा होती है। ऐसा लगता है जैसे दर्द को उन्होंने भावों में पिरोया है, साथ लिया है और उसको अपनी आवाज़ से सजा दिया है। ये फिल्म 1982 में आई थी,
1: 84
0: में आई, लेकिन जब हम लोग इस पर बात कर रहे हैं तो आज भी उसका जो संगीत है, आर डी बर्मन साहब का जो बोल हैं, जिस तरह से गाया गया है, शूट किया गया है, बिल्कुल कालजयी मालूम पड़ती है। तभी तो कई बार हम लोग स्क्रीन पर इस गाने को देखते और सुनते हैं। और आपसे जब बात हो रही थी तो ये वाली बात हो रही थी ना कि कई बार रिश्तों में देखिए ना कैसा होता है, इसमें कितनी सच्ची बात की गई है कि जिससे आप लगाव रखते हैं वो शायद इस कदर परेशान कर देते हैं, और आंखों से जब वो बहने लगता है तब उनको सुकून मिलता है। ऐसा क्यों होता है भला?
2: बात दरअसल ऐसी होती है नेहा जी कि जब हम कभी इस तरह की भावनाओं से लबरेज होते हैं, प्रेम की भावनाएं जब अपने उरूज पर होती हैं, तब सामने वाले व्यक्ति की जो कीमत है वो और बढ़ जाती है। और उसकी कीमत समय पर निर्भर होती है, वक्त वक्त पर हमसे बात करना, हमारी मुलाकातें हों, ये दिल चाहता है दोनों का ही। और इस बीच अगर कहीं कोई उसमें रुकावट आती है तो हम नाराज़ होते हैं, हम रोते भी हैं, आंसू बहाते हैं और बहुत सारे ताने देते हैं। हमें ये महसूस होता है कि सामने वाले व्यक्ति ने हमारी कदर नहीं की, जबकि ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी परेशानियों से वो भी गुज़र रहे होते हैं या होती हैं, और बहुत तरह से तारतम्य बिठाना पड़ता है, क्योंकि सिर्फ प्रेम ही नहीं होता है, समाज भी होता है, जहाँ पर हमको बहुत सारी जिम्मेदारियाँ निभानी होती है। लेकिन ये दिल है, ये ऐसे कैसे मानेगा? ये तो अपनी नाराज़गी व्यक्त करके ही रहेगा।

0: बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म बनाई गई है। और हाँ, अभी तक हम आशा जी की बात कर रहे थे नेहा जी, लेकिन इसी गीत को सुरेश वाडकर साहब भी अपनी आवाज देते हैं और सामने होते हैं पार्टी में, नजर आते हैं सनी देओल।
1: और कितना भावपूर्ण संजीदा ये गीत भी सुरेश वाडकर जी की आवाज में बन पड़ा है।

0: सुधीर श्रोता, बड़ा आनंद आया आज के सफ़र में। पता नहीं कैसे ये समय बीत जाता है और ये बात होने लगती है कि अब विराम लेने का वक्त आ गया।
1: नेहा जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि जब हम लोग इतना गीतों में खो जाते हैं, बातों में खो जाते हैं, और हमको लगता है कि हमारे दोस्त हमारे सामने बैठे हैं, लिसनर्स हमारे सामने ही हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं, और बात ये निरंतर चलती रहे। लेकिन हाँ, समय का भी अपना महत्व है। वक्त पर बात अगर ख़त्म कर दी जाए तो बहुत ही खूबसूरती से वो बात रह जाती है लोगों के दिलों तक, तो हम भी वो खूबसूरती बख्शते हैं। और अब दोस्तों से लेते हैं इजाजत,
0: कहते हैं नमस्कार।
2: बोलते नगमे,
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बोलते नगमे। स्वर था नेहा गुप्ता और वंदना राठौर का, प्रस्तुति थी नेहा गुप्ता की। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम का पहला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में साजन फिल्म से। संगीत है नदीम श्रवण का, शब्द रचना समीर की।

दोस्तों, कहा जाता है कि दिल की अपनी ही दुनिया होती है। ये न उम्र देखता है, न दूरी, न कोई बंधन। जब किसी से सच्चा प्यार हो जाए तो दिल हर पल उसी धड़कनों में खोया रहता है। ये गीत हमें याद दिलाता है कि प्रेम में डूबा हुआ दिल कभी तर्क नहीं करता, वो तो केवल महसूस करता है। इसी मधुर एहसास के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं अंधाधुंध फिल्म का ये गाना। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार की शुरुआत अक्सर आंखों से होती है। कभी एक नज़र दिल में उतर जाती है तो कभी यही नज़रें दिल को बेचैन कर देती हैं। जब आंखें किसी को पसंद कर बैठती हैं तो दिल बेबस हो जाता है और फिर मन में बस एक ही सवाल उठता है, आखिर इन नैनों का क्या कसूर।

सच ही तो है दोस्तों, जब प्यार हो जाता है तो दिल को दोष दें या नैनों को, समझ नहीं आता। दोस्तों, जीवन में कई बार अंधेरों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर रात के बाद एक नई सुबह अवश्य आती है। वो शुभ सुबह जो उम्मीद लेकर आती है, नए सपने लेकर आती है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसी आशा और विश्वास के साथ नई शुरुआत के सुंदर भावों को अपने सुरों में समेटे हुए है फिल्म बुलेट राजा का ये गाना, वाजिद और श्रेया घोषाल की आवाज में। संगीत है साजिद वाजिद का, शब्द रचना कौशर मुनीर की।

दोस्तों, प्यार एक ऐसा एहसास है जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से व्यक्त होता है। जब कोई व्यक्ति हमारे जीवन में इतना खास बन जाता है कि उसकी खुशी, उसकी मुस्कान और उसकी परवाह ही हमारी दुनिया बन जाती है, तब दिल से यही आवाज़ निकलती है।

पलक मुच्छल की आवाज में एमएस धोनी फिल्म का ये गाना आपने सुना, अमाल मलिक का संगीत, मनोज मुंतशिर के बोल। दोस्तों, प्रेम की भाषा शब्दों की मोहताज नहीं होती। कभी एक मुस्कान, कभी एक नजर और कभी आंखों की खामोश बातें दिल के सारे राज बयां कर देती हैं। जब किसी से मन जुड़ जाता है तो हर मौसम सुहाना लगने लगता है और जीवन एक मधुर गीत बन जाता है।

लता मंगेशकर की आवाज में गाइड फिल्म का ये गाना आपने सुना। शब्द रचना थी शैलेंद्र की, संगीत एसडी बर्मन का। दोस्तों, प्यार में कभी मीठी शिकायतें होती हैं तो कभी प्यारी सी नोकझोंक। जब दिल अपने प्रिय की हर बात पर मोहित हो जाए तब उसकी हर अदा खास लगने लगती है। ऐसे ही चंचल प्रेम और मधुर छेड़छाड़ की भावना को खूबसूरती से पिरोया है इस गीत में मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। संगीत है नौशाद का, शब्द रचना राजेंद्र कृष्ण की, फिल्म का नाम है गवार। छनकती पायल ने जो छेड़े प्यार के साज, छनकती पायल ने जो छेड़े प्यार के साज, दिल की धड़कनों ने भी मिलाया अपना अंदाज़।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में ये गाना आपने सुना। इसी के साथ हमारा आज का ये कार्यक्रम चित्रपट संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्स पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सबरस। इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए नरेंद्र चंचल की आवाज में ये भजन।

तक ऐब मेरे उत्ते पाई पर्दा तैनु तेरी करीमी दा वास्ता जी। जिस दे सदके थी सानू तू बख्शना है ओस नूरे कदीमी दा वास्ता जी। दिन महशर ना बरी दी पुछ होवे मुस्तफा दी यतीमी दा वास्ता जी। जिस दिया अखियां चों ओदी याद अंदर वगदा दिने राती नीर होवे ओनू किधरे गरीब ना आख बैना ओदे जेड ना कोई अमीर होवे ओदे दर्दे गदावां दी की दसा करके नजर इको दुनिया बदल दिंदे ओनी मंगदा तख्त ते।

0: ओदे बाजू कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, ओदे वर्गा कोई जग ते
1: श्रोताओं। इसी के साथ सबरस कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए

0: कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
1: एनडीए के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
1: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
0: श्री मोदी ने कहा कि एनडीए राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
1: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, सीएए का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन, एनडीए सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है। मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
0: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजना को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और

0: प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
1: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की

0: ली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
1: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विषय स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में

0: 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिन चियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला टी20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Viksit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे. इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा. लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है. मैं आज

0: PV Sindhu and Tanvi Sharma today advanced to the second round of women's singles event at the Australian Open tournament in Sydney. Two-time Olympic medalist Sindhu defeated Peru's world number 76, Ines Castillo. Sindhu's pre-quarterfinal match will be against compatriot and world number 39, Isharani Barua. Tanvi Sharma also showed signs of returning to form with a 21-12-22-20 win over world number 11, Chiu Pingchian of Chinese Taipei. Tanvi will face Malvika Bansod. The India Meteorological Department today said a wet spell is likely over northwest India till the 13th of this month under the influence of western disturbance. It has forecast isolated heavy to very heavy rainfall over northwest and northeast India during the next 5 to 7 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail project. Also gives nod to infrastructure projects in Amravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वजीर आजम बनने पर वजीर आजम मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए पीएलआई स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। वजारत दिफा पैरिया के जहाजों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफे के लिए 20 एडवांस्ड जैमर्स खरीदेगी। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज यकीन दिलाया कि मुल्क की 140 करोड़ शहरियों की उमंगों को यकीनन पूरा किया जाएगा और जोर देकर कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए ने हमेशा मुल्क के एतमाद को मुस्तहकम किया है। जनाब मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए कॉन्क्लेव से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क के आवाम ने कांग्रेस की एतमाद शिकनी के बाद एनडीए सरकार में अपना एतमाद जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार मुल्क के आवाम ने देखा कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो तरक्की भी तेज रफ्तार से होती है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों के दौरान 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गुर्बत से निकाला जाना इस बात का इजहार है कि एनडीए की पॉलिसियां दुरुस्त हैं और उनकी सिमत सही है।
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नीयत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: वजीर आजम ने कहा कि मुल्क के आवाम ने कौमी सतह पर सियासी इस्तेहकाम की अहमियत को समझ लिया है। उन्होंने कहा कि ये आवाम की पुख्तगी और शऊर का सबूत है कि उन्होंने मुझे इतने तवील अरसे तक अपनी खिदमत करने का मौका फराहम किया।
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूँ।

0: जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
1: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क का हर शहरी विकसित भारत का ख्वाब देख रहा है और ये ख्वाब अब किसी एक फर्द, हुकूमत या सियासी पार्टी तक महदूद नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हुकूमत की इक्तसादी और ढांचा जाती इस्लाहात नजरियाती यकीन का नतीजा हैं, न कि सियासी मजबूरी का।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण।
1: इससे पहले कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने आज एक करारदाद मंजूर की जिसमें सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने का रिकॉर्ड कायम करने पर वजीर आजम की तारीफ की गई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में NDA कॉन्क्लेव के दौरान एक खसूसी सियासी करारदाद पेश की गई जिसमें जनाब मोदी की क्यादत को सराहा गया। ये मीटिंग NDA हुकूमत के 12 साल मुकम्मल होने और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के सबसे तवील अरसे तक भारत के मुंतखब वजीर आजम के तौर पर मुसलसल खिदमात अंजाम देने का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद हुई थी। करारदाद पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के वजीर आला N. चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि भारत के सबसे तवील अरसे तक लगातार मुंतखब होने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को ये एक तारीखी खराज तहसीन है। मीटिंग में मुख्तलिफ कौमी तरक्याती प्रोग्रामों, बुनियादी ढांचे के प्रोग्रामों और साल 2047 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के मोदी सरकार के विजन पर भी तवज्जो मरकूज की गई। मरकजी काबीना ने उस करारदाद को मंजूरी दी है जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी की लगातार मुद्दत के लिए सबसे तवील अरसे तक फरायज अंजाम देने वाले वजीर आजम बनने पर सताइश की गई है। बतौर वजीर आजम मजमुई तौर पर 4399 दिन तक लगातार खिदमात अंजाम देते हुए जनाब मोदी ने साबिक वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है जिन्होंने लगातार 4398 दिन तक फरायज अंजाम दिए थे। काबीना मीटिंग के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए इत्तेलात और नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह करारदाद मुल्क के तई जनाब मोदी के लगातार खिदमत में तारीखी संगे मील की हैसियत रखती है और कई अहद बस्तगियों और हसूलियाबियों को उजागर करती है। अवाम की भलाई के तई हुकूमत की तवज्जो को उजागर करते हुए यह करारदाद इस बात को भी उजागर करती है कि गरीब को हुक्मरानी में मरकजी हैसियत हासिल है और यह फराहम की गई खिदमात के गैर मुतवक्के पैमाने की भी अक्कासी करती है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस दौरान मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के फेज 2A को भी मंजूरी दी जो कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट कॉरिडोर का अहाता करेगी। इस प्रोजेक्ट में 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर से ज्यादा तवील मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। जनाब वैष्णव ने कहा कि तकमील के बाद अहमदाबाद गांधीनगर मेट्रो नेटवर्क वसत पाकर तकरीबन 78 किलोमीटर का हो जाएगा जिससे हवाई अड्डे के लिए आसान कनेक्टिविटी हासिल होगी और अवामी ट्रांसपोर्ट में बेहतरी आएगी।
2: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
1: इक्तसादी उमूर से मुतालिक काबीना कमेटी ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे से मुतालिक मरकजी हुकूमत के 2 बड़े प्रोजेक्टों को भी मंजूरी दी है। इनमें मरकजी हुकूमत का जनरल पूल ऑफिस अकोमोडेशन और जनरल पूल रिहायशी अकोमोडेशन शामिल हैं। इन प्रोजेक्टों से हुनरमंद, नीम हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए बड़े पैमाने पर रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा होने की उम्मीद है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे तवील अरसे तक मुंतखब वजीर आजम के तौर पर खिदमात अंजाम देने पर दुनिया भर से मुबारकबाद के पैगामात मौसूल हो रहे हैं। यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लियन ने कहा कि जनाब मोदी की क्यादत में भारत ने चांद पर कदम रखा है और सितारों पर कमंद डाल रहा है। इटली की वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी ने भी दोनों मुल्कों के अवाम के लिए नए मौके पैदा करने की गरज से वजीर आजम मोदी के साथ काम करने पर आमादगी जाहिर की है। कुब्रुस के सदर निकोस क्रिस्टोडेलॉइड्स ने कहा कि इस संगे मील से वजीर आजम मोदी की फर्ज शिनासी के साथ खिदमत और क्यादत का इजहार होता है। डेनमार्क के वजीर आजम मेड फ्रेडरिसकिन ने जनाब मोदी को मुबारकबाद दी है और दो

वाले 20 ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम GNSS जैमर्स की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत किए हैं। नई दिल्ली में इस माहदे पर दस्तखत के दौरान डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह मौजूद थे। इस निज़ाम की शमूलियत से कसीर खतरा जात वाले माहौल में भारतीय बहरिया के जहाज़ों की ऑपरेशनल सेफ्टी में इजाफा होगा। बैडमिंटन में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट के खवातीन के सिंगल्स मुकाबले के दूसरे राउंड में पहुंच गई हैं। ओलंपिक में दो बार तमगा जीतने वाली सिंधु ने पेरू की खिलाड़ी को टूर्नामेंट के पहले राउंड में 21-13, 21-11 से हरा दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला हमवतन खिलाड़ी ईशा रानी बरुआ से होगा। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यकीन दिलाया है कि 140 करोड़ भारतीयों की आरजुएं जरूर पूरी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि विकसित भारत हर एक शख्स का ख्वाब होना चाहिए। कौमी जमहूरी इत्तेहाद NDA ने भारत के सबसे तवील अरसे तक फराइज अंजाम देने वाले मुंतखबा वज़ीर-ए-आज़म बनने पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी की सताइश की है। मरकजी काबीना ने अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दूसरे मरहले को मंजूरी दी है। काबीना ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों को भी मंजूर किया है। हुकूमत ने टेक्सटाइल्स के लिए PLI स्कीम के तीसरे दौर के तहत 96 कंपनियों को मंजूरी दी है। इस दौरान तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का वादा किया गया। और बैडमिंटन में ऑस्ट्रेलियन ओपन में खवातीन के सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा दूसरे दौर में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।

0: है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की अर्थशेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण।

0: यार और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत UN जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट भारत आए। और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका के विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं, और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे, तो मैं इसमें 2-3 महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांध कर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था, उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें CDS जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है। यह मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने यहाँ, आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है। और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है, उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है, 26 जनवरी में तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूल चूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे, वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे, अभी परसों ही हमने देखा

0: कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शेखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, या फिर जो ड्रोन तकनीक है, जो नमो ड्रोन दीदी जैसी योजनाएं हैं, उसे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली है, कितना बदलता हुआ किसान को आप देखते हैं पिछले 12 वर्षों में, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलाव को?
2: देखिए, जो केंद्र सरकार की जो ये रवैया रही है किसान को लेकर, कैसे धीरे धीरे करके अपने किसान को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कोशिश है, उसी का एक अच्छा कह सकते हैं कि इनिशिएटिव जो रहा है, यानी सरकार की जो पॉलिसी, प्राइम मिनिस्टर की जो पॉलिसी रही है, बीज से लेकर मार्केट तक जो शुरू होती है, सीड मार्केट से लेकर, मतलब कैसे बीज से लेकर, तो उसके बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू, अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का, यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा ये रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जिन्हें आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेके चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी, सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है, वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो, उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
0: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं भी। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बजट

0: यार जिसको कहते हैं, वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी यूपीआई पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव गांव तक यूपीआई पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में यूपीआई और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ भारत में। आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है। आज डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड राशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, ना जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल, इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूँ। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एक्सप्रेसवे, कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है। आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई, उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सबसे बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते हैं, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है। आज भारत ऊर्जा जितनी इम्पोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यदि कच्चा तेल

0: भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनरी कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है। इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारी चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है, जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है। और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले। और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है, वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है। उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है। आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में, कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुमकिन है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है। ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर, किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेगा एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था, भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के, एकजुट होके, सरकार और नागरिक और देश प्रथम, ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो, या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
2: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया, अभी अगले हफ्ते ही जल्दी ही हमारे

बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक

0: जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्राधिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है, पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं, आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे, लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है, हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी, तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे, जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है हमको जो है हमने देखा कि राजपथ को जो है हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भारत, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात देवानंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारतीय भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
1: चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। दोस्तों लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम सुकून की तलाश में आपका हार्दिक स्वागत है। जिंदगी की आपाधापी में हम सब कहीं ना कहीं सुकून की तलाश करते हैं। कभी ये सुकून किसी अपने के साथ बिताए पलों में मिलता है तो कभी यादों की छांव में। दोस्तों सुकून की परिभाषा बहुत बड़ी भी है और बहुत छोटी भी है। हमारा घर, बच्चे, जीवन साथी, माता पिता, भाई बहन, परिवार, इनकी छांव, इनका साथ हमारे जिंदगी का सबसे अनमोल सुकून है। जब हम अपने घर में पहुंचते हैं और अपने घर में अपने माता पिता, अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को हंसता खेलता देखते हैं, उनके चेहरे की वो मुस्कान जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। जब बच्चे आकर पूछते हैं, मम्मा कैसी हो, अपनी तरक्की के विषय में बताते हैं, तो वो भी जीवन का एक बहुत ही अनमोल सुख होता है। जब माता पिता का आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे, वो जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है। जब हम ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो उनकी प्रार्थना में मिलने वाला सुकून बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है। प्रभु का आशीर्वाद हमेशा हम सब के ऊपर बना रहे। दोस्तों सुकून कोई जगह नहीं, एक एहसास है जो कभी किसी की मुस्कान में मिलता है तो कभी किसी की यादों में बस जाता है। जब जीवन साथी कहता है, छोड़ो ना, बहुत थक गई होगी, बहुत काम कर लिया, आओ ना थोड़ी देर साथ बैठो, कुछ बातें करते हैं,

मिला ना सुकून अपने जीवन साथी के साथ बैठकर इस गाने को सुनकर, कितना प्यारा एहसास है। दोस्तों, जब कोई खास इंसान हमारी जिंदगी में आता है तो सिर्फ जिंदगी नहीं बदलती, नजरिया भी बदल जाता है। अंधेरों में भी रोशनी नजर आने लगती है। दोस्तों, बात हो रही है सुकून की, तो सुकून तो हमें हमारे दोस्तों के साथ भी मिलता है। हमारे पुराने दोस्त, स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, जिनसे हम कितना कितना टाइम हो जाता है कि मिले नहीं रहते। दोस्तों, बुलाइए उन्हें, उनका साथ, उनका एहसास, वो पुरानी यादें ताज़ा करिए। इतना सुकून मिलेगा, यकीन मानिए, इतना सुकून मिलेगा कि आपको लगेगा कि वाह, कमाल है। ये सुख भी बहुत अनमोल है। दोस्तों के साथ घूमना, हंसना, बोलना, एंजॉय करना, फिर से उन्हीं गलियों में पहुंच जाना, फिर से वही स्कूल की पुरानी यादों में खो जाना, कॉलेज की पुरानी बातों में खो जाना, इन सब में कितना सुकून है। अब आप लोग ज़रूर से ये काम करिए कि अपने फ़ोन को उठाइए और अपने दोस्तों को मिलाइए और उनसे कहिए, यार बहुत दिन हो गया, आओ ना साथ में बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप्पे मारते हैं, पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं। ज़रूर से अपने दोस्तों को पहले से फ़ोन मिलाइए और उनसे जी भर के बातें कीजिए। देखिए, आपको बहुत सुकून मिलेगा। तेरी मौजूदगी से रोशन है मेरी दुनिया सारी, तेरी मौजूदगी से रोशन है मेरी दुनिया सारी, वरना हर तरफ फैली थी तन्हाई और बेकरारी।

अरिजीत सिंह की आवाज़ में छिछोरे फिल्म का ये गाना था, संगीत प्रीतम का, शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की। दोस्तों, जब कोई ख़ास इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है तो सिर्फ ज़िंदगी नहीं बदलती बल्कि नज़रिया भी बदल जाता है। बिल्कुल सही बात। बचपन की गलियां, अपनों का साथ और बेफिक्र दिन, समय बीत जाता है लेकिन उनका सुकून हमेशा दिल में बसा रहता है। दोस्तों, सच में जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं ना, खेलना कूदना, अपनी पसंद की चीज़ें करना, डांस करना, इंजॉय करना, गाना सुनना, सब कुछ धीरे धीरे पीछे छोड़ते चले जाते हैं। बिल्कुल नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें खूब अच्छे से खेलना है, अपनी मनपसंद का गाना भी सुनना है और बहुत इंजॉय करना है, बहुत डांस करना है, बहुत ही मस्ती करनी है। क्यों? क्योंकि दिल तो बच्चा है ना, इसे जिंदा भी रखना है। इससे हमें जो सुकून मिलेगा, हमें मानसिक सुकून जो मिलेगा ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, जितना हम ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा कठिन अगर बनाते चले जाएंगे ना, तो जीना मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ज़िंदगी को आगे बढ़ाना, चीज़ों को मैनेज करना। इसलिए हमेशा अपनी पसंद का भी काम कीजिए। जो गेम आपको पसंद हो, जो खेल आपको पसंद हो, उसे ज़रूर खेलिए। उसके लिए समय निकालिए, अपने ऑफिस से, अपने काम से, अपनी बाकी सारी चीज़ों में, अपनी दिनचर्या में इसे भी शामिल कीजिए। क्योंकि खेलना कूदना हमारा भी अधिकार है। बड़े हो गए हैं तो क्या हुआ, खेलेंगे नहीं? अपने मानसिक सुकून के लिए खेलेंगे। इसी सुकून की तलाश तो कर रहे हैं, जहाँ पे एक खूबसूरत सा गाना जो कि हमें पसंद है, जो कि मुझे पसंद है, उसे मैं सुनूंगी, उसे मैं चलाऊंगी और बिल्कुल उस गाने को एंजॉय करूंगी। बहुत अच्छा डांस करूंगी, आए चाहे ना आए, डांस तो करना ही करना है। दोस्तों, डांस एक ऐसी चीज़ है ना कि बिल्कुल तरोताज़ा कर देता है, दिमाग को, शरीर को एकदम मतलब बच्चा बना देता है इंसान को। दोस्तों, भागती हुई इस दुनिया में दिल अक्सर ठहरना चाहता है, कुछ पुराने लम्हों की छांव में बैठकर फिर से सुकून पाना चाहता है।

अगर तुम साथ हो, बिल्कुल ये शब्द, ये एहसास दिल को कितना सुकून देते हैं ना दोस्तों। सफ़र कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते आसान लगने लगते हैं जब किसी अपने का हाथ, अपने का साथ हो, तो दर्द भी मेहमान लगने लगते हैं। सुकून हमेशा खुशियों में नहीं मिलता, बल्कि किसी ऐसे साथी के साथ में भी मिलता है जो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा हो, उसका प्यार और विश्वास हमारे साथ हमेशा हो। किसी अपने की सलामती की खबर मिल जाए तो दिल को जो राहत मिलती है वही असली सुकून है। दोस्तों, सुकून तो कहीं कोई ऐसी जगह जो आपको पसंद है और आप वहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ घूमने के लिए जाना चाहते हैं, मगर नहीं जा पा रहे हैं, समय निकालिए और ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ जाके आपको जो सुकून मिलेगा ना, वो इंतज़ार में नहीं होगा। कोई ऐसी ड्रेस जो आपको बहुत पसंद है, उसे ज़रूर खरीदिए, उसे पहनिए, क्योंकि वो पहन के आप खुद को खुश रख पाएंगे। कुछ खाने का मन करे, ज़रूर खाइए, बिल्कुल खूब अच्छे से बनाइए, अपनों के लिए जिए, अपने लिए भी जिए। दोस्तों, कभी कभी होता है ना कि हम सबके लिए जीते जीते खुद को भूल जाते हैं और कहीं ना कहीं उससे हम परेशान होने लगते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमें सबके साथ जीना है, सबके लिए जीना है और साथ में अपने लिए भी जीना है, अपना भी ध्यान रखना है, अपने भी मानसिक सुकून को बहुत ही खूबसूरती से बनाए रखना है, अपने जीवन साथी के साथ, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने भाई बहन के साथ हमेशा खुश रहना है। फासले चाहे कितने भी बढ़ जाएं, मोहब्बत कम नहीं होती। जिसकी खैरियत की फिक्र हो दिल को, उससे दूरी भी जुदाई नहीं होती।

सुकून की तलाश में निकले थे हम, कभी यादों में कभी ख्वाबों में, फिर जाना कि सुकून तो वही मिलता है जहां अपने हो, प्यार हो और दिल में उम्मीदों की रोशनी हो। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है।

मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। उप शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए सुनिए विदुषी अनीता सेन का राग खमाज में ठुमरी और दादरा। सबसे पहले इनकी आवाज में लीजिए सुनिए खमाज में ठुमरी।

उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने सुना खमाज में ठुमरी, विदुषी अनीता सेन का उपशास्त्रीय गायन। इन्हीं की आवाज में लीजिए अब सुनिए खमाज में दादरा।

0: खमाज में दादरा उपशास्त्रीय गायन। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यही समाप्त होता है। मीडियम वेव 292.4 मीटर यानी 1026 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का प्रयागराज केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के 4398 दिनों के निरंतर कार्यकाल के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वे आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहे हैं। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के वास्ते प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत हो गए। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए का अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिली